सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 30 दिवसीय योग शिविर में हम हर बार हर रोज एक नए शब्द के साथ एक नए आसन को लेकर के आ रहे हैं और हम सभी मिलकर के साथ में कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज भी एक नया शब्द लेकर के आए हैं एक नए आसन के साथ में, जो कि है प्रशस्त। प्रशस्त चक्की आसन। प्रशस्त का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है उपासना, जीतना, किसी की सराहना करना, लेकिन हम योग की भाषा में अगर जाएं तो हमें योग से प्रशस्त की उपासना और सराहना करना हमें बहुत सारे ऐसे योग आसन के साथ में जोड़ता है। तो आज हम जिस शब्द के साथ प्रशस्त को जोड़ने जा रहे हैं वो है चक्की आसन, जो कि हमारे संपूर्ण शरीर को सुव्यवस्थित और संचालन करने में सहायक सिद्ध होता है। प्रशस्त, जैसा कि बताया कि हम चक्की आसन के साथ साथ हम कई ऐसे आसनों की उपाधि में हम प्रशस्त को लगा सकते हैं, जैसे वृक्षासन, मंडूक आसन, और जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं चक्रासन में। तो ऐसे ही नए नए आसन और नए नए प्राणायामों के साथ जोड़ करके प्रशस्त की एक नई प्रस्तुति कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रशस्त है क्या। प्रशस्त का शाब्दिक अर्थ जैसा बताया कि एक संस्कृत शब्द है प्रशंसा करना। एक विशेष शेखालेखों से भी अधिक जानकारी की गई है और उसमें भी इस शब्द का बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है। आसन के साथ प्राणायाम उपसर्ग जब हम इसे यूज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम आसन प्राणायाम को तो कर लेते हैं लेकिन हम उनके बारे में उचित जानकारी नहीं ले पाते हैं। प्रशस्त उपासना, प्रशंसा करना और एक नए आसन के साथ में एक नए शब्द की उत्पत्ति को जोड़ना यह एक नया रूप है। चक्की चलाना, जिस तरीके से हमने आपको बताने जाएंगे आज हम आपको, क्योंकि जब हम किसी आसन किसी प्राणायाम को करते हैं तो हम देखते हैं कि एक नए रूप के साथ साथ हम एक नई ओर चले जा रहे हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न एक्सरसाइजेस, विभिन्न प्राणायाम, विभिन्न कसरतें हर एक के लिए अलग अलग होती हैं। कुछ को कहा जा सकता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तो हम कई बार कई आसन प्राणायाम कसरत हम नहीं करते हैं और विशेषज्ञ भी हमें यही सलाह देते हैं कि हम उन्हें ना करवाएं या ना करने दें। लेकिन चक्की आसन अपने आप में एक ऐसा आसन है जो कि सभी के लिए और सभी वर्ग के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चक्की आसन को हम कह सकते हैं बटरफ्लाई इसका दूसरा नाम, क्योंकि ये उसी प्रारूप में उसी आकार में होता है। प्रशस्त नाम क्यों जोड़ा गया चक्की आसन के लिए, क्योंकि यह अपने आप में एक प्रशंसा का विषय है, एक उपासना का विषय है। वो इसलिए क्योंकि यदि जब हम भगवान

के पास मंदिर में जाते हैं उपासना करने के लिए, तो हम बिना सोचे समझे, बिना किसी वैर भाव और अपने मन को शुद्ध करते हुए हम उपासना और उनके साथ में बैठ करके हम उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक वैसे ही चक्की आसन के आगे प्रशस्त नाम को जोड़ा गया है। वो इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि चक्की आसन एक संपूर्ण आसन है। तो आइए हम सभी मिलकर के अब करने जा रहे हैं चक्की आसन। चक्की आसन को बटरफ्लाई भी कहा गया है, यानी कि जैसे बटरफ्लाई इंग्लिश वर्ड है, हिंदी का जैसे तितली आसन। तितली के आकार में हमें बैठना है। किस तरीके से, क्या विधि है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस किस को यह आसन किस अवस्था में नहीं करना चाहिए, हम ये सब जानकारी आज आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, यानी कि हम किसी स्वच्छ वातावरण में और शांत वातावरण में एकाग्रचित होकर के बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण होता है आसन प्राणायाम कसरत के लिए कि हमें उचित वातावरण मिले और हम अपने मन को शांत कर सकें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बाहरी ऐसी गतिविधियों के कारण से मन चंचल हो उठता है। कई बार ये भी देखा गया है कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है बाह्य गतिविधियों को देखते हुए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाह्य गतिविधियां हमारे मन को विचलित कैसे करेंगी, हम तो प्राणायाम कर रहे हैं, हमारा तो आसन आरंभ है, लेकिन मन हमारा नहीं लग रहा है। मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहले हम 1 से 1.5 मिनट के लिए एकाग्रचित हो जाएंगे ताकि हमारा मन स्थिर हो जाए। कहा जाता है, और आप में से सभी लोगों ने यह एक लाइन सुनी होगी कि मन इतनी तीव्र गति से दौड़ता है जो कि एक घोड़े की वेग से भी बहुत ही तीव्र होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इसलिए मन को एकाग्र करना सबसे प्रथम और पहली सीढ़ी है आसन प्राणायाम की। तो आइए हम सभी मिलकर के 1 से 1.5 मिनट तक पहले मन की गति को स्थिर करते हैं, यानी कि ध्यान करते हैं, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे आज का आसन, आज का प्राणायाम प्रशस्त चक्की आसन। तो हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे कुछ इस तरह।

श्वास भरने के बाद में जब श्वास खाली होती है तो उस श्वास को थोड़ी तीव्र गति से या फिर हम ये कह सकते हैं कि लंबी रफ्तार से हम श्वास को छोड़ेंगे। उसका कारण सिर्फ यही है कि श्वास जब तक टूटे हमें ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि अंत तक ला करके ही रहनी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम ओम को एक लंबी स्वर में लेकर के जाते हैं तो हमारी नस नाड़ियों में, हमारी श्वास की गतियों में बहुत ही आराम मिलता है। तो आइए हम सीधे चलते हैं अब आसन की ओर। आसन के लिए हमारा मन बिल्कुल एकाग्रचित हो चुका है। साफ चद्दर या हम योगा मैट बिछा लेंगे। उसके बाद में हम पद्मासन की स्थिति में बैठते हुए मुद्रा आसन करेंगे। हम अपनी अनामिका उंगली को मोड़ते हुए अंगूठे के नीचे, यानी कि अनामिका उंगली और अंगूठा ऊपर, और एक से दो बार ओम का उच्चारण करते हुए मन की एकाग्र शक्ति को बढ़ाते हुए चक्की आसन शुरू करते हैं। पद्मासन की स्थिति में बैठने के बाद में दोनों पैर को, यानी दोनों पैर के पंजों को आगे की तरफ लाना है, जिस तरीके से एक तितली का आकार होता है। उसके बाद में हम अपने हाथों से, यानी कि हम अपने हाथों की हथेली से पैर के पंजों को पकड़ लेंगे और अंगूठा ऊपर, हाथ की हथेलियां नीचे। घुटने के बल और जांघों के बल से हम अपने पैर को चलाएंगे और हाथ से पैर के पंजों को पकड़े रहेंगे। घुटना और जांघ हमारे दोनों इस तरीके से चलेंगे जैसे एक तितली अपने पंख खोलती है और बंद करती है। श्वास लेंगे मध्यम गति से, आती जाती रहेगी, और ओम का उच्चारण यदि आप चाहें अपने मन को एकाग्र करने के लिए तो आंखें बंद करके ओम का उच्चारण या भवरे का गुंजन कुछ ऐसे चलता रहेगा। ये है भवरे का गुंजन। यदि ओम का उच्चारण आप नहीं करना चाहते हैं तो आप भवरे का गुंजन इस तरीके से करें और चक्की आसन को कम से कम ढाई बार, यानी कि ढाई बार हम लोगों की योग भाषा में कहा जाता है ढाई सेत। ढाई सेत का मतलब होता है कि आप इसको एक से ढाई मिनट तक आप इसको स्टार्टिंग की प्रारंभिक अवस्था में हम इसको कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में एक से ढाई मिनट तक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नए आसन, नए प्राणायामों को हम अभी सीखते और समझते होते हैं। जब हम सीखते और समझते हैं तो हमें कोई भी प्राणायाम करने के लिए उचित समय का उपयोग करना चाहिए। अब हम सीधे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। दोनों पैर आगे की तरफ खोल लें और हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए घुटना चलाते हुए, यानी पैर दोनों बिल्कुल सीधे और दोनों हाथ आपके घुटनों पर और घुटना अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन करके इस तरीके से अंतिम स्थिति पर आएंगे, यानी चार से पांच बार करके हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। प्रारंभिक अवस्था में आ जाने के बाद में हम देखेंगे कि हमें इसका पूर्ण लाभ तुरंत ही मिलने लगेगा। आइए अब हम चक्की आसन के फायदे जानते हैं। चक्की आसन के वैसे तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। कमर के लिए, हिप्स के लिए, जांघ के लिए, घुटनों के लिए सबसे ज्यादा, और हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए तो ये सर्वप्रथम एक औषधि का काम करता है। आपने सुना होगा कि आयुर्वेदिक की दवाइयों में असर जो है, सभी लोग कहते हैं कि अगर हम उस दवाइयों का सेवन करते हैं तो वो फायदा अगर थोड़ी देर से करती है लेकिन वह नुकसान बिल्कुल नहीं करती है। हमारी योग की भाषा में भी यही कहा गया है कि आप अगर योग से जुड़े हैं तो योग आपको फायदा अगर नहीं होगा तो नुकसान की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। चक्की आसन आप सभी वर्ग के लोगों के लिए, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सभी वर्ग के लोग इसे बहुत ही आराम से और इसका जो लाभ है वो पर्याप्त रूप में पा सकते हैं। पहला पॉइंट जैसा कि बताया कि रीढ़ की हड्डी के लिए, दूसरा घुटनों के लिए, तीसरा जांघों के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और चाहते हैं कि हम स्लिम ट्रिम, आजकल जैसा कि ट्रेंड है कि सभी लोगों को लगता है कि हम एक्सरसाइज करें हम थोड़े पतले हो जाएं,
तो मात्र एक चक्की आसन ऐसा है कि आपकी बेली फैट यानी कि पेट के जो ऊपरी हिस्से को होता है निचले हिस्से को कम करने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। मात्र एक चक्की आसन ऐसा है जो कि आपकी पेट, रीढ़ की हड्डी, जांग, घुटने, पैर के तलवे, हाथ की हथेलियां, घुटने, कंधे, इन सभी के लिए एकमात्र है चक्की आसन जो अपने में पर्याप्त है, तो सभी को करना चाहिए। आइए हम कुछ बता देते हैं सावधानियां। सर्वप्रथम सावधानियां ये हैं कि जिन्हें रीढ़ की हड्डी में पहले से ही कुछ दर्द हो तो यह आसन आराम से करें, यानी कि आप सबसे पहले 30 सेकंड तक करें। 30 सेकंड में अगर आपको कोई भी इसका दुष्परिणाम लग रहा है, यानी कि आसन करने के बाद में पूरे दिन में आपको अगर उसमें दर्द हो रहा है तो अगले दिन से आप थोड़ा सा इसको रोक दें। रीढ़ की हड्डी में जिन्हें दर्द है वो थोड़ा सा आराम करके करेंगे। जिन्होंने घुटने में दर्द है उन्हें घुटने मोड़ने की बजाय सीधे रख करके और 2.5 मिनट की जगह पर 1 से 1.5 मिनट से शुरू करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घुटनों का दर्द भी इससे जाता रहेगा। तीसरी सावधानी ये है कि जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना है, क्योंकि यह आसन बहुत ही प्रेशर देकर के करना होता है, तो महिलाएं इसे कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें और इसे इस आसन को ना करें। चौथी व महत्वपूर्ण स्थिति होती है सभी बालिकाओं और महिलाओं के लिए, जो कि है पीरियड की अवस्था। उसमें भी इस आसन को ना करें, कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें और उसके बाद पुनः हम इस आसन को कर सकते हैं। बाकी यह हर वर्ग के लिए हर समय आप जिस भी समय लगे कि आपने यह आसन करना है, बस खाना खाने के 5-6 घंटे पूर्व यह आसन आपको करना है। खाना खाने के बाद में यह आसन नहीं करना है, चाहे वो शाम को कर सकते हैं चाहे आप इसे प्रातःकालीन कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रशस्त चक्की आसन, जो कि अपने में महत्वपूर्ण होते हुए संपूर्ण शरीर के लिए आवश्यक है और संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सहायक सिद्ध है। तो इसी तरह हम कल फिर मिलेंगे एक नए शब्द, एक नए आसन की ओर। हर बार की तरीके से 30 दिवसीय जो कि योग शिविर है उसमें हम एक नए नए शब्द के साथ आते हैं, तो आप भी जुड़िए एक नए शब्द, एक नए आसन की ओर। तो इसीलिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय गर्मियाँ प्रचंड रूप में आ गई हैं। कहा जाता है इस गर्मियों में हम अगर अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो अपने आप को किस तरीके से हम महफूज कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी मानना जरूरी है कि अगर हम इन गर्मियों में अपनी और अपने सभी की सुरक्षा करना भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। पानी का त्वचा के लिए कई तरह से उपयोग किया जाता है। नियमित रूप से पानी पीना त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन के बारे में। हमारी त्वचा एक पतली सी झिल्ली की तरह होती है, जो कि जैसे कहते हैं ना कि अगर एक फूल को हम यूं ही तोड़ करके रख देते हैं तो वो अमूमन 1 से 2 दिन सही सलामत रहता है, लेकिन उसके बाद वो मुरझाने लगता है, उसकी पत्तियां अलग अलग होने लगती हैं, पत्तियों में सिलवट सी आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि अंकुरित बीज भी बिना पानी के यूं ही खराब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी स्किन की जो पतली झिल्ली होती है वो भी पानी से निर्मित बनी होती है। पानी हमारी स्किन के लिए इतना उपयोगी होता है जैसे एक मछली जल में रहती है और अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वह मर जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए ही नहीं जबकि हमारी स्किन के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक दिन पानी ना पिए और उसके बाद अगर हम पानी को उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्किन में एक कालापन सा आने लगा है, एक मुरझाहट सी आने लगी है। त्वचा में एक निखार जो हमारा एक दिन पहले बना होता है ठीक बिल्कुल वैसे ही जर से नीचे हो जाता है। उसका कारण आपको पता है? क्योंकि पानी हमारे लिए स्किन में हाइड्रेट का काम करता है। जैसे पौधों में पत्तियों में एक पानी की अगर हम छिनकार भी कर देते हैं तो फिर से वो जीवित हो उठते हैं, ठीक वैसे ही हमारी स्किन में पानी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। आपने कभी देखा है कि जब हम
पानी से अपना मुंह धुलते हैं तो हमारा चेहरा पहले से खिल उठता है। ठीक वैसे ही एक अगर पौधे की हम जांच पर रख करें तो मैं आपको परीक्षण बताती हूँ। अगर आपने एक पौधा यानी कि एक फूल आप कहीं से लेकर के आए हैं और आपको चाहिए कि यह सुबह तक मुरझाए नहीं, आपने एक गिलास लिया जिसमें वो डंठल सहित उस गिलास में डाल के आपने रखा। बचपन में ये परीक्षण हम लोगों ने बहुत किया है, लेकिन आज इस परीक्षण को हम अपनी त्वचा से तुलना करके बताते हैं। और दूसरे गिलास में सिर्फ और सिर्फ आपने वो फूल रख दिया है। सुबह उठते ही आपने यह परीक्षण देखा कि जिसमें जो डंडी पानी में पूरी रात थी वह ऊपर ही ऊपर उसका फूल खिला हुआ मिलता है, लेकिन जिस गिलास में पानी नहीं था वह फूल बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता है। ठीक वैसे ही हमारे स्किन में यदि पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं होता है तो हमारी स्किन की सभी कोशिकाएं मृत होती जाती हैं। फिर हम उसके बाद जितनी भी कॉस्मेटिक की क्रीम लगा लें, महंगी महंगी फेशियल या कई चीजों का उपयोग क्यों ना कर लें, पानी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आप सोच रहे होंगे कि आज योगिनी सप्ता ने ये टॉपिक क्यों उठाया है, तो मैं आपको बता दूं कि अमूमन सभी को इसकी जरूरत पड़ती है। हम कहीं ना कहीं छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन के लिए मैं कहीं बाहर गई और पानी की कमी को महसूस किया। शाम होते होते मेरी स्किन पे वो कमी दिखने लगी। पानी, क्योंकि हम इधर उधर दौड़ धूप में घूमने फिरने में पानी की मात्रा हमने कम कर दी। शाम तक देखे तो हमारा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। फिर हमने पानी पीना शुरू किया और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह हमारा जैसा चेहरा था वैसा ही हो गया। फिर मैंने ये परीक्षण किया कि आपने देखा कि एक दिन आधे दिन यदि आपने पानी नहीं पिया है तो आपका चेहरा किस तरीके से मुरझा सकता है। चेहरे की कई कोशिकाएं होती हैं, कई नस नाड़ियां होती हैं, जिसमें हमें पानी को पहुंचाना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक वैसे ही सर्दियों में हम पानी की मात्रा को कम कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की मात्रा वही बनी रहती है, लेकिन काफी लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं। लेकिन अगर हम गर्मियों में पूर्ण रूप से मात्रा पानी की बना लें, तो हमें वही गर्मियों में पानी की मात्रा हमारे चेहरे के लिए, हमारी स्किन के लिए पर्याप्त हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कंगारू और ऊंट के बारे में जानते होंगे, वह अपने अंदर पानी का एक स्टोर कर लेता है ताकि कई घंटों तक पैदल चलने तक उसे प्यास भी नहीं लगती है और वह पानी उसे थोड़ी थोड़ी देर में पर्याप्त होता रहता है। कंगारू के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि वह अपना बच्चा पेट के नीचे झिल्ली में हमेशा से बचाए रखता है। बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी, लेकिन वह बच्चा उसके पेट के निचले हिस्से में बिल्कुल महफूज रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारी जो ये एक महफूज जगह है उसे वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। स्किन और पानी का भी कुछ ऐसा ही तालमेल है। यदि स्किन को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पानी की प्रचुर मात्रा को हम अपने आप में बरकरार रख सकते हैं। तो आइए स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, जिससे त्वचा की लोच और चमक बढ़ती है। इसके अलावा पानी चेहरे पर होने वाले धब्बे, झुर्रियां, फाइन लाइंस को कम करने में मदद करता है। पानी पीने के लिए त्वचा के जो लाभ हैं, आइए हम उस पे भी बता देते हैं। हाइड्रेशन, सभी को पता है कि स्किन को हाइड्रेट करने के लिए गर्मियों में बहुत सारे ऐसे फल आते हैं जो हम खाते हैं और जिससे हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहती है। कारण जानते हैं क्यों? बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने खीरा खाया उसमें भी पानी की प्रचुर मात्रा होती है, खरबूजा खाया उसमें भी पानी की प्रचुर मात्रा होती है, तरबूज को खाया उसमें भी पानी की प्रचुर मात्रा होती है, साथ ही साथ यदि हम लीची का सेवन करते हैं उसमें भी मिठास के साथ साथ पानी प्रचुर मात्रा में होता है। क्यों कहा जाता है कि गर्मियों में खीरे का सेवन ज्यादा करना चाहिए? क्योंकि जो लोग पानी को कम पीते हैं यह पानी की कमी को पूरा कर देता है और हमारी त्वचा में फिर से वह निखार और एक नयापन सा दिखने लगता है, जिसे हम हाइड्रेट कहते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना त्वचा को हाइड्रेट रखता है, जिससे त्वचा में एक नमी बनी रहती है।
लोच, पानी त्वचा की लोच को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे त्वचा जवान और तरोताजा दिखती है। पानी त्वचा को नमी प्रदान करके झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करता है, जिन्होंने पानी को अपने जीवन का एक आधार माना है। यानी कि एक दिन में, हम गर्मियों में तो ये नहीं कह सकते हैं कि 10-12 ग्लास से ज्यादा ही हो जाता है, पानी की मात्रा को बढ़ाते रहना चाहिए। पानी शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे चेहरे पर दाग धब्बों और पिंपल्स की संभावना कम हो जाती है। पानी पीने से त्वचा को अंदर से पोषण मिलता है, जिससे त्वचा में चमक आती है। पानी पीने में आपको कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर जिसको भी अपनी स्किन पर ग्लो चाहिए, एक पोषक तत्व का ग्लो, यानी अंदर से ग्लो, जिससे आपकी सही उम्र भी पता करने के लिए लोगों को ढूंढते रहना पड़ेगा, तो पानी की मात्रा को बढ़ा देना ही आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। पानी त्वचा में सूजन को कम करने में मदद करता है। पानी त्वचा की हीलिंग प्रक्रिया को तेज करता है, खासकर टैनिंग, सनबर्न के मामले में। बहुत सारी विमेंस को देखा होगा कि स्किन में सनबर्न हो जाता है, टैनिंग हो जाती है। ये उनमें अधिकतर ज्यादातर इसलिए पाई जाती है जो लोग पानी को कम मात्रा में लेते हैं। पोर्स, यानी कि पानी छिद्रों को छोटा करने में मदद करता है, जिससे वो बंद होने पर दाने निकलने की संभावना हो जाती है और जिससे पिंपल्स हो जाते हैं। तो पानी अगर हम प्रचुर मात्रा में लेंगे तो रोम छिद्रों को छोटा कर देता है, जिससे दाने कम निकलते हैं। पानी के अलावा त्वचा के लिए अन्य तरीकों से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चेहरे पर बर्फ का पानी। बर्फ के पानी से चेहरा धोने से त्वचा में चमक आती है और डार्क सर्कल्स कम होते हैं। चावल का पानी, जौ का पानी, धनिये और बीज का पानी, गुनगुना पानी। तो आपने इसी तरीके से सुना कि पानी हमारे चेहरे के कोशिकाओं के लिए ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए हमेशा से यह सलाह दी जाती है कि 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी होता है। हालांकि पानी की मात्रा व्यक्ति की जरूरत और गतिविधि पर इस तरह काम करता है। यदि कोई हार्ड वर्क पे है तो पानी 12-13 गिलास 14 गिलास भी हम पी सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर को नुकसान भी हो सकता है। अमूमन एक महिला को गर्मियों में 13-14 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक वही पुरुषों में भी 15 के अंदर ही पुरुषों को ये पानी लेना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से पानी हमारी स्किन के लिए इतना ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ एक छोटा सा उपयोग बता रही हूँ, जो कि हम लोगों ने हमेशा से देखा है कि एज फैक्टर होने के कारण से फाइन लाइंस हो जाती हैं। हमारा चेहरा ग्लो तो करता है, लेकिन वो पिचक सा जाता है। जो गाल अगर भरे नहीं होते हैं तो वो भी दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। पानी की मात्रा के साथ साथ आज एक छोटा सा उपयोग जो हम सभी

नमस्कार श्रोताओं, सुबह की भोरी भोरी की पहली किरण के साथ मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा हाजिर हूँ आपके आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण में। आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन है, कारण आज है सीता नवमी, यानी वो दिन जिस दिन माता सीता का इस धरती पर अवतरण हुआ था। सीता हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी और महाकाव्य रामायण की नायिका है, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार और राम की पत्नी माना जाता है। राजा जनक की पुत्री सीता साहस, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन में 14 वर्ष का वनवास, रावण द्वारा अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी चीजें शामिल हैं। तो बहुत कुछ है जो हम इनके जीवन से शिक्षा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के जीवन और जीवन शैली पर चर्चा करेंगे आपके सुबह के कार्यक्रम यानी पहली किरण में। फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

जानकी, मैथिली और वैदेही, इन सभी नामों से जानी जाती हैं माता सीता। उन्हें पृथ्वी की संतान माना जाता है, जिन्हें राजा जनक ने एक हल्की नली में पाया था। ये एक आदर्श पत्नी और सद्गुणों की प्रतीक हैं, जिन्हें देवी रूप में पूजा जाता है, जो अपार कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करती हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी की पुत्री यानी धरा धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई, तो जिस तरह से जो सहन शक्ति हम माता धरती में देखते हैं, उसी तरह से इनके भीतर भी इनके पूरे जीवन काल में सहन शक्ति देखी जाती है, जो कि महाकाव्य यानी कि रामचरित के कई सारे दृश्यों में पढ़े जा सकते हैं। अब बात करेंगे रामायण की, जिसमें माता सीता के उस गुण की व्याख्या की गई है जिसे बोला गया है पवित्रता। यानी कि रामचरितमानस में माता सीता के सहन के गुण को ऊपर रखा गया, केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बनाया गया है। और वहीं जो कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित मानी जाती है, उसमें केंद्र बिंदु माता की पवित्रता को बनाया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कुछ कथाओं में माता सीता को माया सीता कहते हैं, यानी छाया या फिर भ्रमित सीता, ऐसे भी उल्लेख पाए जाते हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया था, जबकि वास्तविकता में सीता सुरक्षित रही। ये सारी चीजें किंवदंतियों में पाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और सीता नवमी और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों के साथ इन्हें विशेष रूप से रामानंदी संप्रदाय के भीतर सुंदरता और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और ये दिवस मनाया जाता है। और अगर माता सीता की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाभिमान नहीं छोड़ा इन्होंने। और इनसे लेने वाली शिक्षा की अगर बात करूं तो EQ यानी कि इमोशनल क्वांटिटी जो इनमें है, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, तो हमें अपनी भावनाएं समझने और संभालने की कला सिखाती हैं माता सीता। जैसे कि टॉक्सिक रिश्तों परिस्थितियों में सीमाएं तय कर पाना, हम इनके जीवन की अगर चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, इनकी चीजों को समझेंगे, तो वहां से हमें ये सीख प्राप्त होगी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है और निर्णय स्पष्ट किस प्रकार से रखना है, ये हम रामचरितमानस के माता सीता के पात्र से या फिर रामायण के माता सीता के पात्र से बखूबी सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं माता सीता की ध्यान की ओर, एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

पहली किरण में आज मैं लेके आई हूँ माता सीता की जीवन शैली और उनसे जुड़ी हुई कुछ कलाओं को, उनके कुछ गुणों को, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर आत्मसात करके अपने जीवन को और सरल और सुगम बना सकते हैं।

अगर इनके जीवन साथी की बात की जाए तो वो थे प्रभु श्री राम। इनके दो संतान थी लव और कुश। माता पिता की बात करें तो जनक जी इनके पिताजी थे और सुनैना इनकी माता थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीता रामायण के अनुसार मिथिला के नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री व अयोध्या के नरेश दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र यानी राम की भार्या थी, जिन्हें त्रेता में लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। रामायण के अनुसार राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक कलश से अटक गया था उनका हल। इन्हें उस कलश में पाया गया था। राजा जनक और रानी सुनैना ने गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया। उसके बाद सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला इनकी छोटी बहन थी और त्रेता युग में जब बहुत ही विकट समस्या सामने आई तो माना जाता है कि राक्षस लोग इस तरह उत्पात मचा रहे थे कि सभी देवताओं का वो मर्दन करते जा रहे थे और उससे उनके जो रक्त होते थे उसको भर भर के उन्होंने जनक की भूमि पर गिराया था, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था। उस वक्त जरूरत थी कुछ ऐसे चमत्कार की जिससे भूमि फिर से हरी भरी हो सके। तो फिर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने हल चलाया और वहां से उत्पत्ति हुई माता सीता की, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और उसके बाद हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा और जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को मिथिला में हुआ।

श्रोताओं, शो चल रहा है आपका भोरी भोरी का पहली किरण। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं माता सीता की। अभी हमने कुछ बातें की और अब बात करेंगे माता सीता के विवाह की। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाकर भंग किया। इस तरह माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह होना निश्चित हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, और मांडवी जो कि माता सीता की बहन थी का विवाह भरत से। साथ ही साथ श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से होना निश्चय हुआ। विवाह उपरांत सीता अयोध्या आई व उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। सीता की रीति से अगर कुछ सीखने की बात करें तो कर्तव्य निष्ठा इन्होंने बखूबी निभाया है अपनी लाइफ में। परिवार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी यानी भरोसेमंद व्यक्तित्व, टीम में सम्मान और दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता, ऐसे गुण अगर आपको सीखना है तो माता सीता के जीवन से बखूबी आप सीख सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने जाना माता सीता के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके विवाह के बारे में। अब बारी आती है उस पल की जब 14 वर्ष का वनवास आया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ माता सीता चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर वनवास के लिए गईं। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में इन्होंने वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले गया और उनकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों की उपस्थिति में इनकी देखरेख की गई।

यहाँ पर अगर मैं आपसे माता सीता के जीवन से कुछ गुण सीखने की बात करूंगी तो वो है धैर्य। आजकल के लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो यहाँ से हम सीख सकते हैं। अशोक वाटिका में अटूट धैर्य की आवश्यकता थी जो माता सीता ने दिखाई। माइंडफुलनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक माता सीता के जीवन से हम सीख सकते हैं। दबाव में भी शांति और केंद्रित कैसे रहते हैं ये हम माता सीता के जीवन से सीखते हैं। पढ़ाई काम में निरंतरता और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए माता सीता का अनुसरण करें। चलिए फिर चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, अभी हम चलेंगे उस ओर जब एंट्री होती है हमारे महाबली की यानी कि हनुमान जी की। जी हाँ, हमने जाना कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे रहा, फिर उनका विवाह, फिर 14 वर्षों का वनवास, उसके बाद में रावण द्वारा इनका अपहरण, और अब बारी आती है हनुमान जी से इनके भेंट की। जैसा कि रामचरितमानस में और रामायण में पढ़ने पे प्राप्त होता है कि सीता जी की वन वन खोज करते राम जटायु तक पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण द्वारा दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना दी। राम लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलकर वे हनुमान जी से मिले, जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम जी संग मैत्री के बाद में सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला, जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता माता लंका स्थित एक वाटिका में है।

श्रोताओं, इस प्रकार हनुमान जी को जामुन जी द्वारा उनकी शक्ति का भान कराया गया। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारियों की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है, राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है, रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इस घटना से निराश रावण ने राम को लंका आकर माता सीता को मुक्त कराने के लिए 2 माह की अवधि दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर श्री राम 2 माह की अवधि तक नहीं आए तो उसके उपरांत रावण व सीता का विवाह होना निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज धराया माता सीता को और कहा, श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। चलिए फिलहाल हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन जो कि श्री राम जी को अर्पित है।

त्रिजटा राक्षसी के धीरज धराने के उपरांत हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन किया और अपने लंका आने के कारण को बताया। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचार करने लगी। श्री राम जी की मुद्रिका देकर हनुमान जी कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती हैं कि नहीं, ये अनुचित है, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हें भले ही पुत्र मानती हूँ पुत्र, पर समाज की नजरों के लिए ये उचित नहीं है। रावण ने मेरा हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से अगर कोई मुझे मुक्त कराएगा तो वो मेरे प्रभु श्री राम ही होंगे, और ये उनका कर्तव्य भी है। विशेषता रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करते हुए माता सीता ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति ले महाबली अपने यात्रा की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार हनुमान जी सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना को अपने साथ लेकर हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे, माता सीता की चूड़ामणि दी और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। तो श्रोताओं, ये थी रामचरितमानस और रामायण में उल्लेखित वो कथा जो कि माता सीता के जीवन पर आधारित थी। इसके अलावा अगर आज की लाइफस्टाइल और उस समय की यानी कि त्रेता युग की बात करें, तो अगर हम माता सीता से सीखने की बात करें तो हर परिस्थिति में करुणा और संवेदनशीलता कैसे सीखनी है, ये हम इनके जीवन से जान सकते हैं। रिश्तों में मजबूती और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप में वृद्धि के लिए भी हम माता सीता के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें स्वाभिमान, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना, समानता, अधिकार और न्याय की समझ, इन सभी को भी हम माता सीता के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। सम्मानजनक समाज का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, लड़कियों में आत्मविश्वास और लड़कों में संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, तो माता सीता से ये हम सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से गहरा संबंध, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार हम निर्वहित कर सकते हैं, ये भी हम माता सीता के जीवन से सीख सकते हैं। संस्कार और वैल्यू एजुकेशन, ये सीखना हो तो हमें लवकुश के श्रेष्ठ संस्कारों की ओर चलना चाहिए। कहा जाता है लवकुश बहुत ही छोटे थे उम्र में, तभी से इन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया था, सारी कठोरताओं को सीखते हुए ये बड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे माने तो कम वर्ष में राजा बनना था उन्हें, इसलिए कहीं ना कहीं प्रकृति उन्हें सिखा रही थी, प्रकृति यानी माता सीता स्वयं। और जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं तो हम उनके साथ कठोरता नहीं करते हैं, हम उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगली पीढ़ी में नैतिकता और अनुशासन डालना बेहद जरूरी है, परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं इससे, इसलिए न्यू अगर डालनी है तो हमें संस्कार डालने होंगे बच्चों में। और ये भी अगर हम सीखने की बात करें तो हम माता सीता के जीवन से बखूबी सीख सकते हैं।

प्रोटागन जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण झांकी देखिए।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
2: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ,

0: आंखों में ही रहना।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286098197। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान. आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. फिलहाल आज है दिन मंगलवार का, सुबह का वक्त है और जिस तरह की आज शुरुआत हुई है ऐसा लग रहा था या तो बारिश होने वाली है और या तो फिर बदली रहने वाली है. सो फिलहाल बदली चुन लिया है मौसम ने और बदली है पूरे इस हमारे गोंडा शहर पर. सो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि जब इतना खूबसूरत सा मौसम होता है तो सुबह की शुरुआत और भी ज़्यादा ख़ास लगने लग जाती है. फिलहाल आज मॉर्निंग में उठते ही आपने ख़ास कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा, मुझे ऐसा यकीन लग रहा है, ऐसी वाइब सी आ रही है. फिलहाल आइए आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताएंगे कि भाई आपका आज का मॉर्निंग स्पेशल वाला थॉट ऑफ द डे क्या है. दिन हमारी जो शुरू होता है वो थॉट ऑफ द डे के साथ और हम समझते हैं कि भाई थॉट जो है ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू को ऐड करता है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह की गई बातें या समझी गई जो बातें होती हैं वो जहन में काफ़ी लंबे वक्त तक के लिए चली जाती हैं और जब बात शुरुआत की हो तो फिर क्या होता है, वाह फिर तो बात ही अलग हो जाती है. यानी शुरुआत की बात अगर होती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन शुरुआत होती है. एक बार शुरू हो जाता है तो उसके बाद आगे चलना बढ़ना ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं, है ना. तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो थॉट्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं. और ये जब आ जाते हैं मॉर्निंग वाले टाइम में तो थोड़ा सा ख़ासियत इनकी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो चलिए क्यों ना चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है. क्योंकि रोज़ का थॉट ऑफ द डे हमको हमारे अंदर एक नई स्किल, एक नई खूबी, एक नई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है ना. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये जो थॉट है ये कोशिश कर रहा हमारे अंदर कुछ नई चीज़ों को लाने की और ये बहुत अच्छी बात है. ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ पा रहे होते हैं, करने की कोशिश कर रहे होते हैं. और यही कोशिश हमें लगता है कि ये छोटी छोटी जो की गई कोशिशें हैं यही आगे जा कर के काफ़ी बड़ी बनती है. और जब ये बड़ी बनती है तो हमारी लाइफ में इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं नज़र साफ आने लगता है. तो चलिए अच्छी बात है. और इसी कड़ी में चूँकि आज दिन जो है वो मंगलवार का है यानी ट्यूसडे का है और आज तारीख जो है वो 18 अगस्त देखते ही देखते हो गई, ऐसा लगता है जैसे वक्त कितनी जल्दी से गुज़र रहा है, वक्त के पहिए जो है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहे हैं. सो ये ज़िंदगी कहने का मतलब ये कि बहुत तेज़ी से चल रही है और जो कुछ भी करने का है वो आज ही के दिन होता है. ये कल वाली जो लाइफ है मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम होता है. सो इसलिए जो कुछ भी हम मॉर्निंग वाले टाइम में जाने की कोशिश करते हैं वो मुझे लगता है कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़ास होती है. और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, इन चीज़ों को लेकर के आगे चलना, लाइफ में कुछ नई चीज़ों को लेकर के चला आता है. और ये नई चीज़ें मुझे लगता है कि लाइफ को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं. तो क्या आप रेडी हैं आज के इस थॉट ऑफ द डे की तरफ जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाने वाला है? ऑब्वियस सी बात है आप कहने वाले हैं और क्या भाई, इसी का तो इंतज़ार रहता है स्पेशली. तो चलिए आपके इंतज़ार को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या बताना चाहता है आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में.
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो क्या कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे? थॉट कह रहा है कि आप कल्पना कीजिए, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और आपके पास पिछले पेज पलटने का ऑप्शन ही ना हो। इमेजिन करिए कि अगर आप कोई एक किताब पढ़ रहे हैं और आपको पिछला पेज पलटने का कोई ऑप्शन ही ना हो, तो आप उस किताब को कितनी सावधानी से पढ़ेंगे? आप उसमें लिखे हर एक शब्द, हर एक वाक्य, हर एक क्षण का कितना ज्यादा आनंद लेना चाहेंगे? जरा सोचिए, एक ऐसी किताब जिसको वापस पीछे पेजेस पलटने का देयर इज नो ऑप्शन, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उस बुक को, उस किताब को आप कितनी ज्यादा सावधानी से पढ़ने वाले हैं? जस्ट इमेजिन, कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसको वापस पीछे जाके आप पलट नहीं सकते। अब ये सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेगी और बढ़ती ही जाएगी। तो जरा सोचिए कि उस किताब के हर एक पेजेस को, एक एक वर्ड्स को, एक एक सेंटेंसेस को और उसमें मौजूद एक एक लम्हे को कितनी ज़्यादा सावधानी और कितने ज़्यादा मज़े के साथ, कितने ज़्यादा आप आनंद के साथ पढ़ेंगे, कितना आनंद आएगा। बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया। दरअसल ऐसी ही लाइफ है, ये लाइफ वापस से एक पेज भी नहीं पलटने वाली, एक मोमेंट पीछे भी नहीं जाने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ आगे जा रही है। तो अब ज़रा सोचिए कि ये गुजरते हुए लम्हे, ये जो डेट्स हैं, आज 18 है, कल मैंने 17 बताई थी, फिर 16, उससे पहले हम लोगों ने 15th of August सेलिब्रेट किया था, उससे पहले 14 थी, 13 थी। सो ये जो दिन गुज़र रहे हैं, ये जो वक्त गुज़र रहा है, अभी मॉर्निंग 5 था, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 बज के अब 5 मिनट हो रहा है। ऐसे ये लम्हे गुज़रते जाएंगे और ये वापस एक मोमेंट भी नहीं पलटेंगे, सिंगल मोमेंट भी नहीं पलटने वाले। अब ज़रा सोचिए कि इतनी कीमती किताब को हमने कितनी आसानी से छोड़ रखा है कल के ऊपर, कुछ लाइफ में हो नहीं रहा। भाई साहब, ये लाइफ, ये मोमेंट दोबारा आने ही वाले नहीं है, पीछे पलटने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इस बात को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये वही किताब है जिसको एक भी पेज हम पीछे नहीं पलट सकते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना। तो अब ज़रा सोचिए कि इस बुक में, यानी ज़िंदगी में, वो जो शब्द हैं, वो जो वाक्य हैं और वो जो सुकून है, वो जो मोमेंट है, वो आखिर आप किस तरह से और कितना ज़्यादा इसको आप महसूस करने वाले हैं? ज़रा सोचिए, ये वही लाइफ है, ये वही किताब है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये शायद आप भी अब इस बात को समझ पा रहे हैं, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई, ये जो बुक है ज़िंदगी की, ये सच में वापस से नहीं पलटने वाली, ये बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती है, इसको बस समझने की देरी है। और जिस लम्हे ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद से कोई देरी नहीं होने वाली है, कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करने वाले हैं और हर एक मोमेंट का हम कहीं ना कहीं अधिक आनंद उठाने वाले हैं और ज़्यादा शुक्रगुजार होने वाले हैं इस लाइफ का। ये बात बिल्कुल सच है। सो, अगर कहीं ना कहीं आपको भी ये बात लगती है कि हाँ, ये बिल्कुल बात सच है, तो ये एकदम सच बात है, यही हो रहा है। ये लाइफ जो है, ये दोबारा नहीं मिलने वाली है, इसके हर एक शब्द, हर एक गुजरते लम्हे जो है, इसके मोमेंट्स जो हैं, लोगों से मिलना, रहना, जो कुछ भी हो रहा है, ये बस पहली और आखिरी बार आपका हर रोज़ हो रहा है। क्योंकि हर रोज़ फिर ज़िंदगी आगे बढ़ जा रही है, हर घंटे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, हर सेकंड्स में ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। इसलिए शायद इस बात को हम समझ ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? तो चलिए भाई, आपको आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लगा? मुझे लगता है कि ये जो थॉट है, इसको एक्सप्लेन ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही बता दे रही है कि आखिर लाइफ क्या है और क्या फ़िलहाल करना है। क्योंकि जिस तरह से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हमको लगता है कि भैया, ये बात बिल्कुल समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये लाइफ हमें क्या दे रही है और कैसे हमको समझाने की कोशिश कर रही है। सो आई होप कि भाई,
आपको भी ये बात समझ में ज़रूर आ रही होगी। फिलहाल वक्त है आगे बढ़ने का एक छोटे से शॉर्ट से म्यूज़िकल ब्रेक के लिए, तो चलिए भाई एक ब्रेक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा।

0: अरे भाई, शोला भड़क चुका है इस मॉर्निंग की शुरुआत का। और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई, आपने इस वक्त ट्यून किया हुआ है 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम से। 9:12 हो गए हैं और देखिए ना, कुछ मैसेजेस चैट पर आ गए हैं। तो चलिए भाई, हम देखते हैं चैट पर क्या कुछ लिख भेजा है आपने।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए अब बताने का वक्त आ गया है। कुछ मैसेजेस आए हुए हैं जो कि चैट बॉक्स पर है। सबसे पहले जो है वो आशु जी का है। सुप्रभात सर जी, फूलों की वादियों में हो बसेरा तेरा, सितारों के आंगन में हो घर तेरा, दुआ है एक दोस्त की एक दोस्त को कि तुझे भी खूबसूरत हो सवेरा तेरा। क्या बात है, वाओ, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपको भी सुप्रभात। और हमारे कमल नयन जी भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग स्पेशल शो में। दीपक जी हैं हथिया गढ़ गोंडा से। गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीपक, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग स्पेशल शो में। प्रीति जी बहराइच से हैं। सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है। आशु जी बोल रही सर जी, लखनऊ में 3 दिन से बारिश हो रही है। ओहो हो हो हो, चलिए बारिश होने दीजिए, शायद आज हमारे पहुँचते ही कम सी हो जाए। महेंद्र देपन है फ्रॉम राजस्थान। गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग महेंद्र, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग स्पेशल शो में। और साथ ही साथ प्रीति जी ने बोला है, वो किताब तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह जहां में ना उतर जाए। वाह वाह वाह वाह, मतलब आप जहन में पूरा उतारना चाहते हैं। सो लाइफ से रिलेट करता हुआ ऑसम थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आया। और मुझे बताया कि भाई एक मोमेंट, एक वर्ड कहां आपकी चीज़ों से अगर ये मिल जाता है तो आप उसको कितनी खूबसूरती से समझ पाते हैं। थैंक यू नव्या, गुड मॉर्निंग। आशु जी लिखती हैं, जिंदगी सिर्फ सांसों का सिलसिला नहीं, हर गिरकर फिर संभल जाने का हौसला है, हार में जो भी मुस्कुरा दे वही असली इंसान है, मुश्किलों से लड़ते रहना जिंदगी जीने का नाम है, कल के फिक्र में आज को मत खो देना, हर पल को मोहब्बत से संजो लेना, रिश्तों की गर्माहट अपनों का एहसास, यही तो जीवन का सबसे अनमोल विश्वास, दर्द आए तो सबक समझ कर गले लगा लेना, खुशियां आए तो सबके संग बांट लेना, वक्त बदलता है मंजिल भी मिल जाती है, जो उम्मीद नहीं छोड़ते उनकी किस्मत भी मुस्कुराती है। वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आई होप कि भाई आप सभी लोगों को ये थॉट आज का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। लेकिन सच्ची बात तो ये कि भाई इस थॉट को जितना हम लाइफ में देखेंगे करते हुए उतना ज़्यादा ये हमको फील होने वाला है। फिलहाल वक्त है इस ज़बरदस्त धड़कन को बढ़ा देने वाले सॉन्ग को मॉर्निंग वाले शो पे सुनने का।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: और एक धुआंधार धांसुई बादाम आपको बता दें, अगर आप भी वर्कआउट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मॉर्निंग टाइम है और इस बात को आपसे कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्कआउट के जो तुरंत बाद लोग ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, तो क्या ये सही है ब्लैक कॉफ़ी पीना? हालांकि ये वैसे तो बताया जाता है कि भाई ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, पर क्या एक्सरसाइज के फौरन बाद ब्लैक कॉफ़ी लेना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? आइए अब आपको बताते हैं, क्योंकि आप भी हेल्थ जो है वो अपनी बेहतर रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है इस आदत से आप भी अपना रहे हो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

सो अगर आपको भी आदत है कि भाई वर्कआउट के फौरन बाद आप भी कॉफ़ी यानी ब्लैक कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं तो रुक जाइए, ज़रा इस बात को समझ लीजिए, उसके बाद फिर तय करिए कि क्या करना है। देखिए, वर्कआउट के फौरन बाद जो है ब्लैक कॉफ़ी पीने की भूल अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसका सही नियम जानना ही चाहिए। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें बहुत छोटी छोटी सी दिखने वाली आदतें जो है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा असर लेकर आती है, इसलिए इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि हम जो ब्लैक कॉफ़ी का सेवन करते हैं वो दरअसल उसके नियम क्या है, सही वक्त क्या है। देखिए, तुरंत पीने के नुकसान क्या होते हैं पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर कोई ब्लैक कॉफ़ी फौरन पीता है एक्सरसाइज के फौरन बाद यानी वर्कआउट के फौरन बाद तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन और एसिडिटी। सो पसीने से जो बॉडी में पानी की कमी होती है, ऊपर से ब्लैक कॉफ़ी पेट में जलन बढ़ा सकती है। एक तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो जाहिर है कि स्वेटिंग होती है, बॉडी से पसीना जो है वो निकलता है, उससे पानी की कमी होती है और उसी में अगर ब्लैक कॉफ़ी आप पीते हैं तो वो पेट में जा कर के जलन को बढ़ा सकती है। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, सो कसरत के बाद कार्टिसोल बढ़ा हुआ होता है और कैफीन इसे और भी ज़्यादा इम्बैलेंस कर सकती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं तो उसके बाद जो कार्टिसोल हार्मोन है वो बढ़ा हुआ उस वक्त होता है और कैफीन जो होती है कॉफ़ी में, ब्लैक कॉफ़ी में, इसे जो है वो इम्बैलेंस कर सकती है। दूसरा है सही वक्त और तरीका। जी हाँ, 30 से 60 मिनट का जो है वो वेट करना होता है यानी वर्कआउट के कम से कम आधे से एक घंटे बाद ही ब्लैक कॉफ़ी पीना होता है, पहले पानी और उसके बाद कार्ब्स। सो कॉफ़ी से पहले सादा पानी पीना होता है और साथ में प्रोटीन और कार्ब्स भी लेना होता है। सो जैसा कि आपने जान लिया, वर्कआउट अगर आप कर चुके हैं तो कम से कम आधे से एक घंटे बाद ही आपको ब्लैक कॉफ़ी लेना है, फौरन बाद आपको ब्लैक कॉफ़ी नहीं लेनी है। सो पहले पानी और कार्ब्स का लेना है। सो कॉफ़ी से भी पहले क्या करना है कि सादा पानी पीना है और साथ में प्रोटीन या फिर और कार्ब्स लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा सही वक्त पर पीने के फ़ायदे क्या है, मसल्स रिकवरी होती है। अब ज़रा सोचिए और सुनिए, जिस वजह से आप पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी उसका फ़ायदा क्या होता है, मसल्स की रिकवरी होती है यानी सही वक्त पर कार्ब्स के साथ पीने से जो मांसपेशियां हैं उसकी रिकवरी तेज़ी से होती है। दूसरा ये है कि दर्द और थकान कम होता है, कसरत के बाद होने वाले मसल्स पेन और सुस्ती से राहत मिलती है। तो सही वक्त पर ब्लैक कॉफ़ी पीने का ये दो फ़ायदा है कि मसल्स की रिकवरी होती है, दर्द और थकान कम होती है। लेकिन वक्त हमने बताया 30 से 60 मिनट के बाद, उसके बाद ही आप पी सकते हैं ब्लैक कॉफ़ी और उससे पहले आपको पीना होता है पहले सादा पानी और प्रोटीन कार्ब्स साथ में लेना होता है। सो ये सही नियम है और इसके बाद ही आपको इसका फ़ायदा मिलता है। मुझे पता है कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं या ऐसे भी लोग हैं जो जिम नहीं जा रहे हैं लेकिन ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। सो उनके लिए ये ख़ास तौर पर बताया क्योंकि आपको सही नियम इसका जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी सी आदत हमको लग सकती है कि कोई बात नहीं फ़ौरन पी लेते हैं, लेकिन ये नुकसानदायक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है और ये नुकसान एक दिन में नज़र नहीं आते, ये एक साथ होते हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप देखिए ना, कितनी ज़्यादा अहम बात थी, छोटी सी ही बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताया कि हाँ यार, ये गलती हो जाती है। कई ऐसे जिम गोइंग पर्सन हैं जो फौरन एक्सरसाइज के फौरन बाद जो है ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं। हालांकि इसका मैंने बताया सही तरीक़ा क्या है। सही तरीक़ा है कि आप कम से कम आधे से एक घंटे बाद आप उसको लें, लेकिन उससे भी पहले आपको सादा पानी, प्रोटीन और कार्ब्स आप ले चुके हों, देन आप लेंगे तो आपके मसल्स की रिकवरी और आपके दर्द को कम करने का काम करेगी ब्लैक कॉफ़ी। और अगर आप वक्त से पहले लेंगे तो फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान पहुँचाएगी। ऐसी कई चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में भी जो कई बार वक्त के हिसाब से ही चीज़ों को करना पड़ता है, क्योंकि एक ही शख्स कभी हमारे लिए अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। समझना होता है कि कहाँ कितना, किसको कितना रखना है अपने पास और कितना नहीं रखना है, कहाँ कितनी बातें बतानी और कहाँ कितनी नहीं बतानी है, कहाँ किसको कितना एक्सेस देना है और कहाँ कितना नहीं देना है। ये सब कुछ अगर पता होता है तो शायद हमारी चीज़ें जो है वो उतनी भी नहीं बिगड़ती है, राइट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब इसी कड़ी में हम बढ़ने वाले हैं अगले एक बेहतरीन से सॉन्ग की तरफ। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो पर, जो कि आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर। आइए सॉन्ग को मिलकर करते हैं एंजॉय।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर A सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9286-9976-9816-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली।

0: लखनऊ में एक ऐसी बात, एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो था जेन अल्फा का अपने विद्यालय के लिए, अपने स्कूल के लिए कुछ बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना। हालांकि सुनने के बाद बड़ा अजीब सा लगा कि भाई इतने छोटे बच्चे आखिर आ गए, लेकिन देखा जाए तो बड़ी गहरी बात थी। कहीं ना कहीं उन बच्चों को, उन व्यवस्थाओं को लेकर के जो जिसके हकदार वो हैं, वो नहीं मिलने पर आखिर बच्चों ने खुद से आवाज़ बुलंद की और पूरे देश का, दुनिया के कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सो जेन अल्फा का प्रदर्शन हुआ और कहीं ना कहीं जो टीचर्स की कमी है उसको लेकर के सड़क पर उतरी लड़कियां, बच्चियां, और बारिश में भी ये बच्चे डटे रहे। सो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि जब बदलाव आना होता है तो फिर उम्र मायने नहीं रखती है, और वो चीज़ें जिनकी बुनियादी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए उनमें अगर कमी हो तो फिर ऐसे बच्चे जब सामने आते हैं तो रियलाइज़ कराते हैं कि देखो अपने हक के लिए किस तरह से ये बच्चे सड़क तक उतर आए। आइए पूरी बात बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

सो राजधानी में मौजूद पारा में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में जो सुविधाएं उसकी बदहाली को लेकर के शुरू हुआ स्टूडेंट्स का गुस्सा जो है फिलहाल वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फ्राइडे को जो है स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन के बाद मंडे को भी जो स्कूल की छात्राएं हैं उन्होंने बदहाली और अव्यवस्थाओं के खिलाफ पर सड़क पर उतर आई। सो स्टूडेंट्स ने बालागंज चौराहे पर घेरा बना करके मेन रास्ते को जाम कर दिया जिससे घंटों तक आवागमन जो है वो बाधित रहा। मंडे की मॉर्निंग स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं वो परिसर से बाहर निकल आईं और अव्यवस्थाओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए

प्रदर्शन शुरू कर दिया। सो पहले छात्राएं दुबग्गा बाईपास पहुंची और वहां विरोध जताया। इसके बाद जुलूस के रूप में बालागंज चौराहे के पहुंची और सड़क के बीचों बीच घेरा बना करके बैठ गई। छात्राओं के जोरदार प्रदर्शन और हाय हाय के नारों से पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा था। चूंकि सड़क जाम थी, इस वजह से चौराहे के चारों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई और आम जनता वहीं रुक गई। सो मुद्दा क्या था? मुद्दा था शिक्षकों की कमी। स्टूडेंट्स का आरोप है कि विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री सहित कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके टीचर्स ही नहीं हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम की तैयारियां जो है वो अफेक्टेड हो रही है। सो स्टूडेंट्स ने खराब भोजन जो खाना मिलता है, बीमार पड़ने पर वक्त पर इलाज नहीं मिलने जैसी बुनियादी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका मुद्दा उठाया कि भाई उनको बीमार होने पर इलाज नहीं मिलता है, खाना जो मिलता है वो खराब मिलता है और साथ ही साथ टीचर्स भी प्रॉपर हैं ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे किस तरह से स्कोर पर कर पाएंगे उस सब्जेक्ट में जब वो बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे। सो फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद जो है प्रदर्शन खत्म कराया गया था। सो जानकारी होने पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और अधिकारियों ने छात्राओं को जो है वो समझा बुझा करके उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया था। सो पुलिस ने दुबग्गा चौराहे से प्रदर्शन खत्म कराया। इसके बाद छात्राओं ने सीएम आवास की तरफ जाने के लिए कूच किया। इस पर उन्हें बालागंज चौराहे पर रोक करके वापस कर दिया गया। तकरीबन 10 बजे अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद जो हैं वो स्टूडेंट्स शांत हुए और धरना खत्म किया, जिसके बाद वापस से यातायात को चलाया गया। सो बता दें कि भाई 3 दिन पहले मंत्री जो हैं असीम अरुण ने कराया था स्टूडेंट्स का प्रदर्शन खत्म। इससे पहले जो है फ्राइडे को इसी सर्वोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स ने पारा इलाके में अव्यवस्थाओं को लेकर के जोरदार हंगामा किया था। उस दौरान कन्नौज जा रहे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और विभाग के जो निदेशक हैं अनुराग यादव ने खुद मौके पर पहुंच करके स्टूडेंट से बातचीत की थी और जल्द ही व्यवस्थाएं सुधारने का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया था। हालांकि इसके बावजूद प्रॉब्लम्स का निस्तारण नहीं होने से नाराज होकर के सोमवार को छात्राओं ने वापस से उनको सड़क पर उतरना पड़ा था। सो फिलहाल ये तो एक बात है, एक देखा जाए खबर है, लेकिन ये एक बदलाव की खबर है जहां बच्चे खुद इस बात को समझे कि भाई उनका हक क्या है और उनके लिए किन चीज़ों की बुनियादी ज़रूरतें हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि हमको अपनी ज़रूरतों के लिए हमारी जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, जिसका हमारा राइट है, उसके लिए हमको कहना पड़ता है। और फिलहाल ये बच्चे सामने आए हैं, इनके सामने आने से इनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अभी फ़िलहाल मिला हो या ना मिला हो, लेकिन एक बात तो इन्होंने ज़रूर हम सबको सिखा दी कि भाई हौसले अगर हो और आप सही हो तो आप अपनी मांगों को लेकर के दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल क्या आपने भी इस बात को सुना था? और अगर सुना है तो इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में आकर के हमको बता सकते हैं।

0: हाँ जी, फिलहाल एक सवाल अभी चैट बॉक्स पर आया है क्रिकेट लवर की तरफ से, और उन्होंने पूछा है कि होम गार्ड रनिंग डेट के बारे में, और साथ ही यूपीपी डीवीपीएसटी से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो बता दिया जाए। चलिए फिलहाल इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक फौरन का फौरन पहुंचा देते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो आपने पूछा है DVPST यानी दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानिक परीक्षण जो होता है इसके बारे में। सो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चूंकि ये सवाल आया है तो आपको बता दें कि DVPST जो प्रोसेस है वो 17 अगस्त यानी कल से शुरू हो चुका है, आज 18 है, और इसके एडमिट कार्ड जो है वो 10 अगस्त से ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होंगे। यानी आप 10 अगस्त से इसका जो एडमिट कार्ड है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है uppbpb.gov.in। जी हाँ, जो हमने बताया ना कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है uppbpb.gov.in पर अवेलेबल है, 10 अगस्त से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है यानी पेट रनिंग का जो आपने पूछा है, सो जो भी कैंडिडेट्स DVPST इस फेज़ में सफल होंगे उनकी दौड़ जो है उसको सितंबर में कराया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। चूंकि रनिंग की अभी सटीक तारीख को शेड्यूल में नहीं बताया गया, इसके लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा और अभी तक रनिंग का लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन आप जो है वो 10 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हैं। और चूंकि अभी 18 अगस्त हो गई है तो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो आप एडमिट कार्ड भी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट हमने मेंशन कर दी है uppbpb.gov.in पर, यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा, और बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो रनिंग से रिगार्डिंग है उसको लेकर के अलग से नोटिस जारी की जाएगी कि आखिर रनिंग कब कराई जा रही। संभावितता बताया गया है कि अगले महीने सितंबर को लेकर के बोला जा रहा है।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: सब लोग बैठ जाओ
1: बैठ जाओ। पहले हमारे एक सवाल का जवाब दो।
2: अच्छा पप्पू तुम बताओ।
0: हाँ सर।
2: ये बताओ मोटर साइकिल में कितने टायर होते हैं?
3: सर, छह।
2: अरे कैसे पता चला?

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 1130 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल अभी तक तो हमने सुना था असम के बारे में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी। लेकिन आपको हम बता दें कि फ़िलहाल बाढ़ का पानी जो है उससे घर डूब गए हैं, खेत, स्कूल, और ये हालात कहीं और नहीं बल्कि ओडिशा के हालात हैं। जी हाँ, ओडिशा में भी फ़िलहाल बाढ़ की वजह से खेत, तालाब, स्कूल्स जो हैं, घर, वो अच्छे खासे डूब चुके हैं। और बाढ़ का जो कहर है वो यहाँ पर भी आ रहा है। सो फिलहाल ओडिशा में भारी बारिश के बाद में जो है वो हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं, और लगातार जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे पूरे में हालात जो है वो पनप गए हैं। सो कहीं ना कहीं ज़रूरत है ओडिशा को भी हेल्प की, और ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उनके लिए हेल्प कर रही हो, या ऐसा कोई भी ऑथेंटिक सा ज़रिया जो पता हो आपको कि आपकी की गई हेल्प उन तक पहुँचे, तो मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में ज़रूर हेल्प करना चाहिए। जब एक बसा बसाया घर जो है वो पानी में पूरी की उसी जद में आ जाए, और आपके पास खाने को, पहनने को, कहीं जाने को कुछ भी ना बचे, तो सच में हालात ये जो हैं ये बड़े ही भयावह बन जाते हैं। सो आई होप कि भाई हम इस चीज़ को समझें, और हमसे जो कुछ हो सकता है हम ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं इन हालातों में जहाँ पे भी जो भी है, जैसे भी है और जिस तरह से भी है, वो ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करें। साथ ही वो इलाके जहाँ पे इस तरह की बाढ़ आने के ख़तरे रहते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और निकलने में, आने जाने में अपना और अपनों का ख्याल आप ज़रूर रखे रहें, क्योंकि ऐसी चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ़िलहाल मुझे ये बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई अभी काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपसे इसी शो में मुझे कहना है और आप तक पहुंचानी है वो सारी बातें, जो कि मुझे लगता है काफ़ी जल्दी पहुंचेगी भी, और जाहिर सी बात है लगातार पहुंच भी रही है। और इसी कड़ी में अब हम आपको आगे ले चलते हैं एक ऐसे सॉन्ग की तरफ जो आप पहले से काफ़ी ज़्यादा सुनते आ रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिलहाल ये गाना दोबारा से आप सुनने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

जाने वो कल कैसा होगा रे, जिसके बारे में आप इतना ज्यादा सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं अपनी प्रोग्रेस के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में, अपने सुनहरे कल के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो सवाल हैं जो खुद से पूछे जाएं तो उसका जवाब ढूंढने और उसका जवाब देने के लिए सच में हमारी लाइफ में प्रोग्रेस होंगी? आपको क्या लगता है वो कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसको खुद से अगर हम पूछें तो हमारी लाइफ जो है वो प्रोग्रेसिव हो जाएगी? अगर आपको अंदाज़ा है, यानी हैव यू एनी अंदाज़ा, सो यू कैन टेल मी। आप बता सकते हैं चैट बॉक्स पे आकर के, आखिर वो कौन से ऐसे सवाल हैं अगर हम खुद से पूछें तो हमारी तरक्की हम खुद से इंश्योर कर पाएंगे, हमारा सुनहरा कल हम खुद से इंश्योर कर पाएंगे, हमारी ड्रीम लाइफ हम खुद से इंश्योर कर पाएंगे? अगर आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि आखिर क्या हो सकता है तो आप ज़रा सोचिए और बताइए। और फिलहाल आपके इस जवाब को, जो आपको लगता है, उसको सुनने के लिए हम रेडी हैं। यानी आप बताइए कि ऐसे कौन से सवाल हम खुद से पूछ सकते हैं जिससे कि हम सच में अपनी खुद की तरक्की को इंश्योर कर सकते हैं। बहुत सिंपल से सवाल है, बहुत सिंपल से है।

0: नजर नजर ढूंढे उसे इस कदर। तो भाई ढूंढते ढूंढाते हमने आपसे एक सवाल किया था और मैंने कहा था कि ऐसा कौन सा सवाल है अगर हम अपनी प्रोग्रेस करनी है, तरक्की करनी है तो, और ख़ुद से वो सवाल किया जाए तो कहीं ना कहीं हम इंश्योर कर पाएंगे अपनी प्रोग्रेस को, जिसको लेकर के आपने जवाब दिए। आइए बताते हैं क्या जवाब है आपका।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

देखिए, पहली चीज तो कोई सवाल अगर ऐसा है जो लाइफ से जुड़ा है या प्रोग्रेस से या कुछ भी ऐसा है जो फीलिंग के साथ वाला है, दरअसल उसका कोई सटीक आंसर नहीं होता। सच तो ये है, तो आप जैसा जो सोचते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। फिलहाल इसको लेकर के जो पहला आंसर आया है वो महेंद्र का आया, राजस्थान से। इन्होंने बोला है कि मैं क्यों आया इस धरती पर, यही सवाल करता हूँ खुद से हर रोज़। बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई हम हैं क्यों आखिर इस ज़मीन पर। सही बात है। एंड धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास से लिखते हैं, मेरा नियम और कर्तव्य क्या है, मैं खुद को सोच सकूँ और आगे बढ़ सकूँ, मेरा तो यही मानना है। दैट्स वेरी ग्रेट। और आशु जी लिखती हैं, कुछ यादें रखना, कुछ बातें याद रखना, जीवन की राहों में हम साथ नहीं होंगे लेकिन हम कभी साथ थे, ये जीवन भर याद रखना। फिलहाल सवाल ये था कि भाई ऐसे कौन से सवाल है जो हम खुद से पूछ सकते हैं और खुद की तरक्की में उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा तीन ऐसा सवाल है जो अगर आप खुद से पूछते हैं तो अपनी तरक्की को आप खुद से इंश्योर कर पाते हैं। पहला सवाल, मैं कल क्या था या मैं कल क्या थी, ये पहला सवाल। दूसरा, मैं आज क्या हूँ, एंड ऑब्वियस सी बात है। तीसरा, आप समझ ही गए कि मैं कल क्या रहूँगा या रहूँगी। सो ये तीन ऐसे सवाल हैं जो बहुत अहम हैं। अगर हम ये पूछते हैं खुद से तो हमको आंसर मिलता जाता है कि हम कल क्या थे, यानी अपने गुजरे हुए दिनों में हम क्या थे, हम आज क्या हैं और हमें कल कैसा रहना है, हम कल कैसे खुद को देखना चाहते हैं। ये तीन सवाल ऐसे हैं जो आपको उन राहों पर लाते हैं जिस पर आप चलना चाहते हैं, उन राहों पर ले आते हैं जिन राहों पे आपको लगता है कि आपकी अपनी पर्सनल देखी गई मंजिल है, जो शायद आप सभी से शेयर भी नहीं करते लेकिन आपके अंदर हमेशा वो चीज़ जिंदा रहती है। तो ये तीन सवाल अगर हम खुद से पूछ रहे हैं कि मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूं और मैं कल क्या रहूंगा, तो हमारे लिए इजी हो जाता है उन चीजों को कर पाना जिन चीजों को करने के लिए शायद हमको लगता है कि हम इसी उद्देश्य से इस जहां में हैं, इस सरजमी पर हैं, इस आसमां के तले हैं। बहुत सिंपल सा सवाल मैंने कहा था ना, ये तीन सवाल करने हैं, और ये तीन सवाल अगर आप खुद से कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप को लेकर उम्मीद ये है कि आप फिर उन तरफ बढ़ेंगे, उन कोशिशों को करेंगे जिन कोशिशों को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेताब हैं, जहाँ लगता है कि आपको आपकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। एंड लिटरली यकीन मानिए, जिन लोगों ने कर दिखाया है उनको पता है कि हर चीज़ मुमकिन है, जो बैठे रह गए हैं वो सिर्फ यही बताएंगे कि भाई ये तो हाथों की लकीरों पर है, लेकिन जिन्होंने हाथों की लकीरों को भी बदला है वो जानते हैं कि लकीरें आखिर करने से बदल ही जाती है।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सो भैया, आप जो ऐड देखते हैं अक्सर हर जगह लगा रहता है जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े स्टार्स तंबाकू से जुड़े विज्ञापन करते हैं। फिलहाल FDA का नोटिस दिया गया है ऐसे बड़े स्टार्स को जो कहीं ना कहीं तंबाकू से जुड़ा हुआ, यस ऑफ कोर्स, तंबाकू से जुड़ा हुआ विज्ञापन करते हैं। सो ऐसे कौन कौन से स्टार्स है? ऑफकोर्स आपने कई बड़े बड़े स्टार्स का देखा होगा, जैसे अभी हमने तीन नाम बताया जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ शामिल है, क्योंकि इसको लेकर के फ़िलहाल FDA ने जो है वो नोटिस दिया है। FDA की तरफ से क्या नोटिस है, नोटिस में क्या है, ये आपको बताते हैं आपकी मॉर्निंग वाले शो में, आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

सो भाई, जब करोड़ों लोग किसी एक सेलिब्रिटी को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो उनके हर एंडोर्समेंट की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। सो फिलहाल महाराष्ट्र FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के जो विज्ञापन है इसको लेकर को शो कॉज नोटिस जारी किया है। FDA की आपत्ति है कि इलायची के नाम से दिखाया गया विज्ञापन विमल की वही ब्रांडिंग सामने लाता है जिससे इनडायरेक्ट रूप से पान मसाला का प्रचार हो सकता है। यानी विज्ञापन में सीधे पान मसाला खरीदने की बात नहीं कही जाती, लेकिन इलायची के जरिए विमल ब्रांड को लोगों की नज़रों में बनाए रखने को लेकर के सरोगेट प्रमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये शो कॉज नोटिस है, कोई आखिरी फैसला ये नहीं है। मामला आगे भी कार्रवाई संबंधित जवाब और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग के आधार पर हो सकता है, लेकिन एक सवाल ज़रूर बड़ा है, क्या सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे एंडोर्समेंट से पहले सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि उससे जुड़े ब्रांड और उससे संभावित सोशल इम्पैक्ट की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए ऐसे बड़े बड़े स्टार्स को? खैर, आपका क्या मानना है? आप भी बता सकते हैं कि क्या सेलिब्रिटीज़ को सच में ऐसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इसका इम्पैक्ट आखिर क्या पड़ने वाला है और क्या कुछ होने वाला है? फिलहाल आप सोचिए और बताइए। तब तक के लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे एक ऐसे लिसनर्स जिन्होंने कंटेंट भेजा है, और वो हैं प्रीति जी, बहराइच से किताबी सफ़र लिखती हैं। आइए क्या लिखती हैं बताते हैं आपको कि बड़ा सुहावना था हम लोगों का किताबी सफ़र वाला मतवाला दिन। बिसरा कर किताबी दौर को आजकल चौपट कर दिया मोबाइल ने बच्चों का दौर। सारा काम लेते मोबाइल से बड़े ही चाव से और किताब बन गया उनके लिए बोझ सा। मैं तो यही कहूंगी कि आज के बच्चे मोबाइल के साथ साथ किताब से भी अपना जुड़ाव रखें, क्योंकि किताब पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना बेहतरीन लिखा, और न सिर्फ लिखा बल्कि हम तक पहुंचाया भी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच प्रीति जी। एंड सुशील यादव जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। मिश्रा ऑप्टिकल से अजय जी हैं, आपका भी स्वागत है। क्रिकेट लवर, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और हमारे बाकी सभी लिसनर्स जो हमको फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, अब आपसे इजाज़त ले रहे हैं। फिलहाल आज का शो कैसा लगा हमको कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमको दीजिए इजाज़त।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: Hey, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो, या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी आरजे समता आ गई हूँ गांव की गूंज की टीम के साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के माध्यम से आप सभी से एक बेहद खास बात और यात्रा साझा करने। आज हम सभी यानी मैं और गांव की पूरी टीम यानी गांव की गूंज की पूरी टीम आपको ले चलेंगी एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मानबिंग लोंग की ओर। साथ ही आपके दिल यानी गोंडा के उस पन्ने को फिर से खोलेंगे जो कभी देश के सबसे गंदे शहर के रूप में दर्ज था, और फिर कैसे यहां के सभी लोगों ने आत्म मंथन और संकल्प से इसे यूपी का सबसे साफ टॉप 5 शहरों में बनाया।
7: हाँ समता, यही नहीं, आसपास के गांव जैसे कर्नल गंज, मनकापुर, नौबस्ता, बालपुर, कटरा, पड़री कृपाल, तिवारी पुरवा, पंडित पुरवा, केशवपुर पहाड़वा, इमिलिया आदि की जनता ने भी इस कार्य में भरपूर योगदान दिया है।
8: हाँ किरण दी और समता दी, सही कहा आपने, पर आज ये गीता दी कहाँ रह गईं? शायद पड़ोसन सरला और विमला को सफाई की हिदायत देने में रह गई होंगी, मैं देख कर आती हूँ। तब तक आप हम सबको एक गीत सुना दीजिए जिसके बोल हैं, शिव की धनुषिया को तोड़ दियो रे दशरथ के ललनवा।
9: हाँ भाई, अयोध्या की ओर चलते हैं और अवध की माटी से जुड़ते हैं, राम जी का और सीता जी का स्वयंवर याद करते हैं।
7: हाँ हाँ बिल्कुल, तो लो सुनो ये सॉन्ग।

0: कहा?
1: अरे कहाँ रह गई गीता दीदी भाई?
2: अरे हम सरलवा और बिमला का समझावत रहे कि गंदगी जौन है कचरा पेटी में डारा करो, बस सब सुनते नहीं।
1: तो आपने उन्हें एशिया के सबसे अच्छे गांव मावली नोंग के बारे में क्यों नहीं बताया?
2: ये कौन सी जगह है? अरे तनिक बढ़िया से बताओ।
3: मावलिंग नोंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, इसे भगवान का बगीचा भी कहते हैं।
4: पर समता दी, इस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव क्यों कहते हैं?
3: क्योंकि जया, यहां एक भी तुम्हें कूड़ा देखने को नहीं मिलेगा। ये गांव मावलिंग नोंग हिमालय की अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है, साथ ही पर्यटकों के आकर्षक केंद्र भी बना है। ऐसा क्यों है ये किरण दी बताएंगी, पर बाकी बातें मैं बता देती हूँ। मानविंग लोग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है, एक शांत और सुंदर स्थान है जिसका वातावरण किसी दिव्य उद्यान जैसा मनमोहक है। ये गांव और सपाटे के लिए आकर्षक तत्वों से अधिक प्रचलित है।
2: हाँ समता, अब हमहू का याद आवा, पिछले साल पड़ोस की जो मंजू है वो अपने पति के साथ वही गाँव में घूमे गयी रहा है। महुरिया गांव की जो मंजू देवी है एक प्रगतिशील किसान की पत्नी है। वो बतावत रही कि मावली नो माँ सड़क पर एक को पत्ता न पई हो, अतनी सफाई राहत है, सबके द्वार प्राकृतिक रूप वाले हैं, जानो कि नहीं। और जो लगत सड़क मट्टी से लीप दी गई हो, बहुत सुंदर गांव होए।
1: हाँ गीता जी, मावली नोंग में आस्था के प्रतीक भव्य गिरजाघर से लेकर सादगी से भरी आरामदायक जीवन शैली को दर्शाने वाले घर तक हैं।
4: हाँ दीदी, मैंने भी पढ़ा है कि यहाँ प्रकृति का भरपूर आनंद मिलता है, जिसका उदाहरण है अद्भुत लिविंग रूट ब्रिज, जहाँ प्राचीन वृक्षों की जड़ों का उपयोग करके पीढ़ियों से निर्मित एक इंजीनियरिंग चमत्कार को सजीव रूप दिया गया है।
1: हाँ, मावल्या नाग का आकर्षण केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, ये सच्ची मेहमान नवाजी और एक सरल शांतिपूर्ण जीवन शैली अपनाने का अवसर प्रदान करता है। ये गांव उत्तरी पूर्वी भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक गांव है। पता है जया, डिस्कवर इंडिया पत्रिका द्वारा इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव होने का खिताब भी मिला है।
2: अरे ये सब तो ठीक है, अतना बतिया लिया हो, अब हम कहीं तो तनिक गौना ही हुई जाए। ए किरण, कही दो बलमुआ से मोहे लई जाए, ये गाना हमें बहुत सुनने में नीक लागत है। तब तक हम सबका ये बताए दी कि एशिया के सबसे साफ सुंदर गांव मावली नोंग है।
5: अरे मोहे लई

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गांव की गूंज, वो गूंज जो मिट्टी से उठती है, वो आवाज जो हमें हमारे जड़ों की याद दिलाती है। आज हमारी टीम एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की ओर जाने को तैयार है। मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव मानविंगलोंग। जया, अगले हफ्ते की टिकट करा दी है ना सबकी?
1: हाँ समता दी, वैसे भी दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, वहाँ के गिरिजाघरों की रौनक तो देखने लायक होगी। बस गीता दी और सरला दी का टिकट अभी वेटिंग में है।
2: अरे बढ़िया है, दोनों जनी अब ज्ञान न दे हैं, बहुत बोलत रही।
3: छोटकी न नदिया जहर बोले राजा,

0: हम तो भाई बहुत परेशान हैं। पूछो का है? गोंडा और इके आसपास के गांवन का लेके बहुत गंदगी रहत है।
1: हाँ दी, मानवीन लोग में सड़कें कूड़े नहीं फूलों से सजती हैं। हर घर के बाहर डस्टबिन होता है, वो भी बांस का। यहाँ प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छता संस्कार में है, मजबूरी में नहीं। यहाँ के बच्चे सबसे पहले क ख ग के साथ सीखते हैं साफ रखना, सहेजना और सम्मान करना।
2: मतलब स्वच्छता प्लस साक्षरता यानी मजबूत गांव। मालवी नोंग हमें सिखाता है कि स्वच्छता और साक्षरता साथ साथ चलती है। जब गांव पढ़ा लिखा होता है तो वो गंदगी को आदत नहीं समस्या समझता है। यही वजह है कि ये गांव छोटा है परंतु यहाँ की सोच बहुत बड़ी है।
3: अच्छा सुनो सुनो सुनो सभी लोग, अब लौटते हैं अपने गोंडा की ओर और अब जरा आंखें बंद करें और सोचें। क्या सोचें? गांव के बारे में। देखिए, शुकुलपुरवा की गलियां, नौबस्ता की सुबह, नवाबगंज के खेत, बालपुर कटरा बाजार की हलचल, मोहरिया पुरैना की मिट्टी की खुशबू, इसी तरह से रोहिणपुरवा, देहरास, रामचेलापुर जिसे अब रामचेरापुर बुलाते हैं, भईसहा, पांडेपुरवा, पंडितपुरवा, सिसई, खमरौनी, मधईपुर, मछली गांव, दुल्हिन दुल्हापुर, खुरहसा, वजीरगंज, तरबगंज आदि की हरियाली। अरे भाई, मेहनती लोग और संस्कार और अपनापन, ये सब तो हमारे इन सभी गांव में भी है। बस अगर कमी है तो व्यवस्थित स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी की।
0: अच्छा बत कहियो बहुत जरूरी है, लेकिन तनिक कुछ गौनई हुई जाए तो उनका हर्ज है। चलो सोहर गा लिया जाए। बेटी मेरी सुकुमार जी,

0: सच कहें तो गांव और शहर अलग नहीं है, अंतर बस इतना है कि गांव में हरियाली ज्यादा है, हवा ज्यादा है, साफ है, रिश्ते ज्यादा सच्चे हैं, और शहर साफ सड़कों, कूड़ा प्रबंधन, जिम्मेदार नागरिकों की सीख गांव से ले ले और गांव तकनीक शिक्षा योजनाओं की सीख शहर से ले ले तो फर्क अपने आप मिट जाएगा।
1: तो ठीक है, युवा गांव की ओर लौटें, आज फिर इसकी जरूरत है। खेतों को सम्मान मिले, स्वच्छता को संस्कार बनाया जाए और साक्षरता को हथियार। शहर में रहकर गांव को मत भूलिए और गांव में रहकर खुद को पीछे मत समझो।
2: जिस गांव की गलियां साफ होती हैं, वहां सोच भी साफ होती है और जहां सोच साफ होती है वहीं भविष्य उज्जवल होता है।
0: तो श्रोताओं, साथियों, आज की गांव की गूंज में हमने सीखा मानवीर लोंग से प्रेरणा, गोंडा से उम्मीद और अपने गांव का भविष्य। तो आइए अपने गांव और शहर को एक जैसा सुंदर, एक जैसा स्वच्छ और एक जैसा सशक्त बनाएं। मैं हूं आपकी अपनी आज समता, तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी स्वर कोकिला किरण पांडे यानी हमारी प्यारी किरण दी के साथ में, आपकी प्यारी गीता दीदी और समझदार जया के साथ एक नई गांव की गूंज के नए एपिसोड के साथ।
3: पर समता दी, एक गीत सुनते चलें तो मजा आ जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। साथियों, गांव की गूंज फिर एक सफर पर चलेगी अगली बार। जाते जाते मैं ये गीत सही

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब
7: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9470931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
10: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
11: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
10: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
11: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
10: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
10: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
8: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
10: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
8: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
12: हुक्के से खेलन जेबो,

0: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस

0: ICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर।

हम वो नहीं जो बंद कमरों में खो जाएं, हम वो हैं जो सोए हुए ख्वाबों को जगाएं। हाथों में स्मार्टफोन आंखों में अंगारे हैं, हाथों में स्मार्टफोन आंखों में अंगारे हैं। हम आज के युवा हैं, बदलते हुए सितारे हैं। माना कि सोफे की बंदिशों में कुछ घेरा है, माना कि रील्स की स्क्रीनों पर थोड़ा अंधेरा है, पर जब उठकर खड़े होंगे तो इतिहास बदल देंगे। पर जब उठकर खड़े होंगे तो इतिहास बदल देंगे। इस सुस्त जीवन शैली को हम पल में कुचल देंगे, इस सुस्त जीवन शैली को हम पल में कुचल देंगे। हम आज के युवा हैं, बदलते हुए सितारे हैं, हम तो आसमां ही बदल देंगे। वेलकम वेलकम वेलकम अ वॉर्म वेलकम। आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला प्रोग्राम जो कि है ज्ञानश्री लाइव। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में। और आज के लिए ये शुरुआत क्यों, आप सोच रहे होंगे कि भाई आते ही बहुत ही लाइंस के साथ शुरुआत की है, तो बताऊंगी कि आते ही मैंने इन लाइंस के साथ शुरुआत क्यों की है। लेकिन उससे पहले भाई, दोस्ती जो होती है ना, उसमें मज़ा तब आता है जब दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं, और दोस्त बातें तब करते हैं जब वो आमने सामने होते हैं। तो भाई मैं तो आ गई हूँ, अब आना आपका बाकी है। आप सुन रहे हैं बेहद अपना पसंदीदा शो, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो फटाफट से आप भी आ जाइए और हमें सुने और हमें जवाब दें। अब चैट बॉक्स में मैसेजेस करें, बताएं कि आप सभी कैसे हैं। तो फटाफट से आ जाइए अपनी हाजिरी लगाने के लिए और अपना हाल चाल बताने के लिए। इसी के साथ जो भी हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान असली लाइव में। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई आज क्या है, आज आखिर क्या है अंशिका जी के पास। तो आज मेरे पास जो टॉपिक है ना, उससे कहीं ना कहीं हर यूथ, मतलब यूथ्स तो रिलेट करते ही करते होंगे, कहीं ना कहीं और भी उनके घर में जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो भी रिलेट करते होंगे, पर हमारे यूथ कुछ ज़्यादा रिलेट करते हैं। क्या है बता दिया जाए भाई, आपको तो पता है कि न्यूटन। अच्छा चलिए, बताने से पहले एक सवाल है और उस सवाल का आपको देना है जवाब। तो जानते हैं कि सवाल क्या है। तो सवाल यह है कि न्यूटन ने लॉ दिया था। मुझे आप लोग ये बताएं कि जो भी सुन रहे हैं कि न्यूटन का लॉ क्या कहता है, क्या है न्यूटन का लॉ। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूटन के लॉ के बारे में क्यों पूछा जा रहा है। तो भाई हर चीज़ का एक रीज़न होता है, और आपसे ये पूछने का मेरे पास भी आज तो एक रीज़न है ही है कि बताइए कि आखिर न्यूटन का लॉ है क्या, क्या कहता है न्यूटन का लॉ। फटाफट से सोचे, फटाफट से जवाब दे कि आखिर क्या कहता है न्यूटन का लॉ, क्या है न्यूटन का लॉ। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ कि न्यूटन का लॉ क्या है। न्यूटन का लॉ ये कहता है कि जो भी चीज़, जैसे हमने सुना था ना कि न्यूटन का लॉ कहता है कि जो भी चीज़ आप नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे आप करते हैं तो वो नीचे आ ही जाती है। मतलब न्यूटन का लॉ ये कहता है कि जब भी किसी चीज़ को हम ऊपर से उछालते हैं ऊपर की ओर, तो वो नीचे जो है धरती की तरफ आ ही जाती है। कुछ ऐसा ही रिश्ता हमारा भी होता है ना, हमारे प्यारे से एक बहुत ही अच्छे से जो घर में चीज़ है उसके साथ। लेकिन किसके साथ होता है, थोड़ा सा सोचिए कि हमारा ऐसा रिश्ता किसके साथ है कि जहाँ पे हम सीधा जाते हैं और बस उसके साथ में गिर जाते हैं। भाई हमारे घर में एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ होती है जिसका कि नाम है सोफ़ा, और हमारे यूथ्स मतलब पूरे पूरे दिन सिर्फ सोफे पे बैठना है। सिर्फ आपको अगर आपको ये ना कहा जाए ना कि सोफ़े से उठना है, तो हमें सोफ़े से नहीं उठना है भाई, सोफ़े से बहुत प्यार होता है। और न्यूटन का लॉ यहाँ बिल्कुल सही बैठता है कि सीधे जाके सोफ़े पे गिरना, मतलब अगर हम उठे हैं और हमें आराम करने का मन हो रहा है यार, तो सिर्फ सोफ़ा दिखता है कि बस गए और सोफ़े पे गिरे, और फिर तब तक नहीं उठना है। जैसे कहते हैं ना न्यूटन के लॉ में कि जो चीज़ एक बार गिर जाती है फिर वो तब तक नहीं उठती है जब तक कि उस पर बल ना लगाया जाए। ठीक उसी तरीके से कि हमें भी तब तक नहीं उठना है जब तक मम्मी ने डांट के नहीं कह दिया कि भैया उठोगे या नहीं उठोगे,
कि आज तुम्हारा पूरा दिन जो है वो सोफे पे ही जाने वाला है, तब तक हमें नहीं उठना है, हमें तो आराम करना है मम्मी, मत उठाओ ना, बहुत काम है, मुझे कुछ नहीं करना, ये सारे बहाने होते हैं। और फिर पूरा का पूरा दिन जो होता है ना वो सोफे पे ही बीते बैठे बैठे बीत जाता है। अगर छुट्टी का दिन होता है तो, अगर छुट्टी का दिन नहीं भी होता है तो हम अपने 3-4 घंटे तो बिता ही देते हैं, फिर धीरे धीरे टीवी देखते देखते देखते देखते हमारा मन होता है, फिर हम उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर अपने काम करते हैं और फिर आ करके सोफे पे ही बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ये लाइफस्टाइल आपकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाती है? बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाती है हमारी ये आदतें और हमारी लाइफस्टाइल हमारी हेल्थ को। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आगे भी आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए एक लाइन सभी के लिए कहना चाहूँगी कि सोफा छोड़ो, सेहत से नाता जोड़ो, जो कि आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि हम आपका नाता जो है ना वो अच्छी चीज़ों से जुड़वाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये जो आदत होती है हमारी वो हमारे लिए नुकसान करती है। तो वो सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन उससे पहले पहले पहले पहले भाई, अभी अभी हम आए हैं और अभी अभी हमने आपको सॉन्ग्स भी नहीं सुनाए और सीधे अपनी बात कह दी, तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। सॉन्ग सुनने का तो आपका भी मन होगा और आपको भी सुनना होगा, तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं और मिलते हैं सॉन्ग के उस पार बहुत ही एक प्यारी सी और अच्छी सी बात के साथ। हम अपनी टॉपिक को शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी ये आदत आपकी सेहत के लिए क्या नुकसान पहुंचाती है। तो आज हमारे पास सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ का इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग, मिलते हैं इस सॉन्ग के उस पार। आप सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, स्टे ट्यून्ड।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: बिल्कुल गोंडा शहर की धड़कन, और गोंडा शहर की धड़कन के साथ हम भी आ गए हैं दिल को धड़काने, कुछ बातें करने, कुछ बताने। भाई मुझे लगता है मेरी इतना कहने के बाद अब तक तो आप सभी अपने सोफे से उठ गए होंगे। मतलब कहने का ये कि जिन भी यूथ्स ने सुना होगा या जिन्होंने भी सुना होगा, उन्होंने सोचा होगा भाई सोफ़ा छोड़ना तो बनता है, क्योंकि मैम ने इतनी सारी चीज़ें बता दी सोफ़े को लेकर के। तो बिल्कुल छोड़ना बनता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ें थोड़ी सी बुरी नहीं कहेंगे बट हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोफ़ा यूज़ ही नहीं करना। आप सोच लो कि भाई अब तो कह दिया है तो अब हम यूज़ ही नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूज़ करना है, लेकिन बस थोड़ा सा कहते हैं ना कि प्रिकॉशन के साथ आपको यूज़ करना है। तो चलिए अब बताते हैं कि सीधे हमारा टॉपिक है क्या। तो आज हमारा टॉपिक है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का सीधा मतलब होता है कि एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें कि आप बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी जो होती है वो ना के बराबर होती है। हम दिन में ज़्यादातर टाइम जो बिताते हैं वो बैठकर बिताते हैं। अगर सीधे मैं आपको कहना चाहूँ तो सीधे का मतलब होता है कि होती है ना सुस्त वाली, थोड़ी सी आलस वाली लाइफस्टाइल। और हम यूथ्स की तो भाई होती भी है कि मम्मी रहने दो ना, ये काम करने का मन नहीं है, थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। और अगर सोफे पर बैठ के टीवी देख रहे हैं तो फिर तो भाई जब तक शो ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ना रिमोट मिलेगा और ना आपका सोफ़ा छूटने वाला है। मन में यही होता है, नहीं मम्मी अभी थोड़ी देर, अभी एक ब्रेक बाकी है ना, अभी 10 मिनट बाकी है ना, 10 मिनट देख लेने दो। होता है कि नहीं होता है, तो फटाफट से बताएं होता है या नहीं होता है। भाई मुझे तो होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टाइम देखती नहीं हूँ, मतलब मैं सोफे पे ही बैठी रहती हूँ, काम नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी कुछ होता है और अगर एक बार चले गए बैठने तो फिर तो यही मन करता है कि नहीं अब नहीं उठना है। तो ये जो हमारी हैबिट होती है ये धीरे धीरे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ हमें ले जाती है, जिसमें पूरे दिन, अगर पूरे दिन में मान लीजिए आप थोड़ी देर भी, जैसे थोड़ी देर कहने का मतलब है कि जिनकी एक सेट लाइफस्टाइल होती है कि सुबह उठे स्कूल चले गए, उनके लिए ये नहीं है। बट जैसे आप घर से कोई तैयारी कर रहे हैं और घर पे ही रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ रूटीन में ये आदत बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी डेली लाइफ रूटीन में ये आदत हो चुकी है, बट हो जाती है। सो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आप अपनी इस आदत को बदलें। तो आज जो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, तो सबसे पहले जो पॉइंट मेरे पास है वो है WHO। अगर हम बात करें WHO की, तो WHO के अकॉर्डिंग अगर आप हफ्ते में कम से कम 150 मिनट हल्की एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी को एक ऐसे स्लो मूवमेंट में लेकर के जाती है कि जहाँ पे हमें लगने लगता है कि देखिए आपने देखा होगा ना कि आजकल यूथ्स में बहुत सारी कहीं ना कहीं फिज़िकल जो हैं बीमारियाँ शुरू हो रही हैं, जैसे कि फैटी लीवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उन्हें लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर के साथ में कई सारी फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है। बोन में पेन होता है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, और फिर सुनने को मिलता है कि अरे अभी तो आप जवान हो ना, और अभी से ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ आप देख रहे हैं कि आजकल यूथ्स में हो जाती है, 20 साल के बच्चे हों या 25-26 साल 27 साल के हों, किसी भी एज में डायबिटीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारी जो डेली रूटीन, डेली लाइफ है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सेट तो है, लेकिन हमें अपनी हेल्थ के लिए जितना ध्यान देना चाहिए हम उतना नहीं दे पाते हैं। सो ये कैसे शुरू होती है आपकी लाइफ में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग भी 9 से 5 घंटे यानी 9 से 5 की डेस्क जॉब करते हैं, कहने का सेंस है कि ऑफिस में लगातार 8 से 9 घंटे आप कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, खाली समय में टहलने या एक्सरसाइज करने के बजाय हम घंटों फ़ोन पर रील स्क्रॉल करते हैं, गेम खेलते हैं या कुछ भी देखते हैं, आप कोई फिल्म देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जब आप फ़ोन चलाते हैं तो ऐसा नहीं होता है ना कि खाली समय में अगर हम फ़ोन चला रहे हैं तो हम टहलते हुए फ़ोन चला रहे हैं या बैठ कर फ़ोन चला रहे हैं, नॉर्मली यही होता है कि हम लेटे हुए हैं और फ़ोन चला रहे हैं। तो कहीं ये एक शुरुआत होती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की, जो धीरे धीरे ये आदतें हमारी रूटीन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि छोटी छोटी दूरियों के लिए भी, मतलब जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से मार्केट ही जाना है, जैसे अगर हम गोंडा की बात करें तो मान लीजिए मुझे अपने घर से चौक जाना है और मेरे घर से चौक बाज़ार जाने की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे मान लीजिए 10-12 मिनट लगेंगे और मैं यहाँ से चौक पहुँच जाऊँगी, या फिर मुझे अपने घर से अगर दुखरनाथ मंदिर आना है और दुखरनाथ मंदिर से मेरे घर की दूरी 10-20 मिनट के, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन छोटी छोटी दूरियों के लिए भी हम तुरंत से बस ऑटो कर लेते हैं, बाइक है तो बाइक ले लिया या कुछ भी, बट हम नहीं चाहते हैं कि हम पैदल जाएं। पैदल जाने को सबसे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिन में 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट भी आप पैदल चल लेते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कर लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए सबसे अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट है कि हम मॉल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें एक आदत पड़ जाती है ना कि लिफ्ट है तो लिफ्ट से चलो, क्यों स्टेयर्स से जाना, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, मॉल से ही गए हैं, तो आप क्यों लिफ्ट से जाइए, सीढ़ियों से जाइए, स्टेयर्स से जाइए, वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा है कि आजकल हम देखते हैं ना कि सारे ही सामान बस एक क्लिक में, हम कहते हैं ना पूरी दुनिया फ़ोन में आ गई है, भाई यार पूरी दुनिया फ़ोन में आ गई है, तुम क्या जानो, मम्मी आजकल तो आपको एक मिर्ची भी मंगानी है ना तो फ़ोन से यूँ मिल जाती है, तुम बस हुक्म करो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें सब मिलेगा। कुछ ऐसा ही हम अपनी मम्मी से कहते हैं ना, जब हमारी मम्मी कहती है बेटा ज़रा जाओ बाज़ार से सब्जी ले आओ, तो हम उनसे यही कहते हैं अरे मम्मी पूरी दुनिया फ़ोन पे आ गई है, आपको चाहिए क्या बताओ, तो बस यूँ आ जाएगा अभी चुटकियों में। लेकिन यूँ चुटकियों में ये जो आपके दरवाजे के सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को आसान तो कर दिया है, बट हमारी लाइफ को पैक कर दिया है बिल्कुल घर में ही। पहले क्या होता था, पहले छोटी से छोटी चीज़ें, फ्रूट्स लाना होता था, कुछ भी लाना होता था, तो हम जाते थे कि अरे नहीं चलो बाज़ार जाते हैं, नहीं सिमान एक चक्कर मार के आएंगे बाज़ार का। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब अरे मम्मी मैं फ़ोन कर देता हूँ ना अभी ऑनलाइन आ जाएगा, तो ठीक है अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि हम चलिए मान लीजिए हम कहीं बिज़ी हैं तो हमें आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप फ्री हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का सेंस ये है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बाहर जाना चाहिए। सोचिए अगर आप एक बार भी बाज़ार गए तो धीरे आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा ही हुआ ना, आपने फिज़िकल एक्टिविटी की, तो कहीं ना कहीं फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि ये कैसे शुरू होती है, हमें खुद के अंदर ये आदतें बिल्कुल नहीं आने देनी चाहिए, हमेशा फिट लाइफ की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इस ब्रेक के उस पार आऊँगी और बताऊँगी आपको कि किस तरीके से ये जो एक प्रॉब्लम होती है इसे ठीक किया जा सकता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आइए सुनाती हूँ आपको बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, सुनिए और बने रहिए, और हाँ सोफे पर बैठे बैठे नहीं, सोफे से उठकर चलते चलते सुनिए सॉन्ग को, सोचिए कि क्या आपके लाइफस्टाइल में भी ये आदतें हैं और आप इन्हें दूर करना चाहते हैं ना, तो ज़रूर दूर कीजिए और सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग, बस यूँ गए और यूँ आए। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो जो कि है ज्ञान असली लाइव। अ वार्म वेलकम अगेन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई अभी तक तो हमने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है ये भी आपको बता दिया। अब बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आखिर है क्या। तो सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आपको वॉक एंड टॉक वाली थेरेपी यूज़ करनी है, जो कि बहुत ही अच्छी थेरेपी है। वॉक एंड टॉक का मतलब है कि जब हम फ़ोन पे बातें करते हैं ना, तो हमेशा सोफे पे बैठ जाते हैं, लेकिन आपको बैठना नहीं है, आपको वॉक करते हुए बातें करनी है, वॉक एंड टॉक करना है, फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। दिन भर में कम से कम 30 मिनट्स तो आपको पैदल चलना ही चलना होगा। और साथ ही साथ में उनके लिए जिनकी की ऑफिस जॉब होती है, कि वो 9 to 5 ऑफिस जॉब करते हैं और वहाँ उन्हें बैठना ही पड़ता है, बैठकर ही काम करना पड़ता है, उनके लिए है कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर उठ के चलते रहिए। जैसे आपको रेगुलर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बीच में 10 मिनट आप 5 मिनट उठिए। इससे क्या होगा कि हम अगर रेगुलर नहीं बैठे रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपको नहीं होगी अगर आप रेगुलरली बैठे नहीं रहेंगे। थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कि आप ध्यान दें, रेगुलर ना बैठे रहें, और साथ ही साथ में थोड़ा सा अपनी डाइट में भी चेंज करना होगा। डाइट में ये चेंज करना होगा कि जो भी इस तरीके की लाइफस्टाइल को लेते हैं उन्हें अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए। डाइट चेंज करने का मतलब है कि हमेशा प्रोटीन युक्त सारी चीज़ें खानी चाहिए, एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। कभी भी ऐसी डाइट नहीं लेनी चाहिए जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या बहुत ज़्यादा बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए। हमेशा हेल्दी और सेफ लाइफस्टाइल लीजिए। इससे धीरे धीरे आपकी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक होगी और आप मस्त ज़बरदस्त हो जाएंगे। अब आते हैं कि भाई अभी तक हमने बात की हेल्थ की, लेकिन हेल्थ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन हेल्थ के साथ और भी एक चीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और जिसके लिए हमें बचपन में डांट भी बहुत पड़ती है, बहुत सुनना पड़ता है। मतलब इतना सुनना पड़ता है ना कि क्या ही कहना, पढ़ाई नहीं करोगे तुम, पढ़ाई मत करना। और अगर आपके पास मतलब आप यूथ हैं और आपके पास फ़ोन है और आप कॉलेज जाते हैं तो क्या सुनना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। दिन भर फ़ोन चलाओ, फ़ोन क्या दे दिया है, मतलब रील देखते हो 24 घंटे, पढ़ाई मत करना। ये नहीं होता है ना कि फ़ोन से आप पढ़ाई कर लें, लाओ कुछ पढ़ाई का देख लें। नहीं, पढ़ाई का क्यों देखोगे, रील देखो, दिन भर सोफे पे पड़े रहो, रील देखो, यही करो, पढ़ाई मत करना, यही सुनना पड़ता है ना। ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे ही कुछ शब्दों से हमें नवाजा जाता है कि पढ़ाई नहीं करोगे बाकी सारा काम करोगे। बट उन्हें क्या पता कि हम पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते भी हैं, समझते हैं ना। तो आज इसी पढ़ाई को और इसी एजुकेशन को लेकर के मेरे पास एक टॉपिक है जो कि मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं लाइफ में आशा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आशा यानी कि होप। अगर हमारी लाइफ में होप हो तो सब कुछ हो सकता है। कहते हैं ना कि अगर किसी के मन में उम्मीद है, आशा है, तो वो लड़ सकता है, लेकिन अगर किसी की उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है तो फिर वो लड़ता ही नहीं है। आज हमारे पास उनके लिए उम्मीद की एक किरण है, एक आशा है, जो अपनी उम्मीद कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए हार जाते हैं। हमारे ऐसे होनहार बच्चे, होनहार स्टूडेंट्स कि जिनके में पढ़ने की पूरी काबिलियत होती है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पाते और अपनी होप हार जाते हैं। आज हम उनके लिए लेकर आए हैं उम्मीद की एक नई किरण। क्या नाम है आपकी उम्मीद की इस किरण का, तो चलिए बताते हैं। जो कि उम्मीद की इस किरण का नाम है SBI फाउंडेशन आशा स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि यूथ्स के लिए है, यूथ्स फॉर इंडिया फेलोशिप के तहत 2026-27 देश के युवाओं के लिए ये सबसे बड़े और बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर शुरू की गई है, जिसमें कि आप स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप जो दी जाती है आशा स्कॉलरशिप 2026 और 27, ये ज़्यादातर देश के उन युवाओं को दी जाती है, होनहार युवाओं को जो कि पढ़ना चाहते हैं पर फाइनेंशियली थोड़े से कमज़ोर हैं और इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस साल ये स्कॉलरशिप क्लास 9 से लेकर के और UG PG जो कर रहे हैं उन सभी को दी गई है, और कहीं ना कहीं ये दी जाती है ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने सपनों की उड़ान को हासिल कर सके। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों को दी जाती है, UG PG करने वाले बच्चों को दी जाती है,
और साथ में उन्हें भी दी जाती है जो कि मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी अपनी पढ़ाई को अपने कोर्स को कम्प्लीट करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ एबिलिटीज़ हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप अपनी इससे पहले, जैसे मान लीजिए आप 10th में हैं और आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो आपके 9th में 75% मार्क्स होने चाहिए, 75% होने चाहिए। और आपकी जो फैमिली है यानी कि आपके जो फादर हैं, उनकी जो सालाना की आय है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स और कैटेगरी में आएंगे। इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए या 6 लाख होनी चाहिए। और मेन ये है कि इस स्कॉलरशिप में हमेशा 50% जो सीटें होती हैं, 50% सीटें होती हैं वो गर्ल्स के लिए होती हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए आरक्षित होती हैं। तो गर्ल्स ज़रूर से अप्लाई करें, 50% सीट उन्हीं के लिए आरक्षित होती है, सिर्फ 50% बाकी जो बचती हैं वही बॉयज़ के लिए होती हैं। और मैं बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आप सभी ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कि अपनी जो कि पिछली आपकी नेक्स्ट क्लास की मार्कशीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये ज़रूरी है आपके लिए। और साथ ही साथ में जो आपका अभी चल रहा है ईयर, उसके लिए आपने जो एडमिशन करवाया है वो एडमिशन की रसीद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात है कि आपकी फैमिली में आय प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, आपके फादर का हो आपका हो, आय प्रमाण पत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आय प्रमाण पत्र और उसी के साथ में स्टूडेंट्स की बैंक पासबुक, जो भी बैंक में जिसमें भी आपका अकाउंट है उसकी पासबुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार बता दूं मैं आपको कि क्या क्या ज़रूरी है, आपकी जो सेल्फ अरेस्टेड आपकी कॉपी ज़रूरी है मार्कशीट की, जो कि आपकी पिछली, जैसे कि आप अगर 10th में हैं और आप डाल रहे हैं तो 9th की मार्कशीट ज़रूरी है, आधार, पैन, वोटर आईडी बहुत ज़रूरी है, आपके जो ईयर चल रहा है उसके आपने जो एडमिशन करवाया उसकी रसीद बहुत ज़रूरी है, और साथ में आय प्रमाण पत्र, आपका आपके बैंक अकाउंट की पासबुक और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात और बता दूं कि SBI आशा स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फ्री फॉर्म आप वहां पे जाकर के भर सकते हैं। इसकी आधिकारिक लिंक आपको मिल जाएगी जो कि है SBI आशा स्कॉलरशिप पोर्टल, आप वहां पे जाएंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे तो आप भर सकते हैं। डेट्स निकलती रहती हैं, सो आपको नज़र रखनी है कि कब डेट निकल रही है। नज़र रखने के लिए मैं बता दूं कि आशा स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप चेक करते रहिए और जब भी फॉर्म की डेट आए तो फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि फॉर्म को भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सारे फॉर्म्स सही होंगे और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए वो सारे सही होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बता दूं कि इसके लिए एज जो है वो 21 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की हो, और आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप भारत के ही नागरिक हो, यानी कि इंडिया के ही आप नागरिक हो। और दूसरी ये है कि हमेशा जो एक टीम वर्क की भावना होती है वो आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, टीम वर्क की भावना हो तो बहुत ही अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको फॉर्म वहाँ भरना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कि है SBI यूथ फॉर इंडिया पोर्टल, आपको हमेशा नज़र रखनी है उस पर, जब भी फॉर्म आए तो आपको भरना है और फॉर्म को चेक करते रहना है कि फॉर्म कब आने वाला है। और इसी के साथ मैंने आपको बाकी सारी डिटेल्स भी बता दी हैं, सो ज़रूर जाएं फॉर्म भरें और इस स्कॉलरशिप को आप ज़रूर से लें, क्योंकि कहते हैं ना कि जिनके सपनों में उड़ान होती है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ खुद बनाते हैं। कहते हैं ना, मत कहो ख़राब है तकदीरें, खुद खींचो ना अपनी किस्मत की लकीरें। बिल्कुल, हमारी किस्मत हमारी हाथों में होती है, हम जैसे अपनी किस्मत की लकीरें खींचते हैं वो वैसी ही बनती जाती है। और फिर कहते हैं ना कि किस्मत तो बनाने वाले के हाथों में होती है, अगर बनाने वाले के हाथों में हुनर हो फिर किस्मत तो खुद ब खुद बन ही जाती है, बस बनाने वाले के हाथों में हुनर होना चाहिए। तो चलिए आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जो कि है ज्ञानश्री लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जो कि है ज्ञानस्थली लाइव। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए आप बात करते हैं कि एक बहुत ही प्यारी सी पोएट्री है जो कि है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कुछ ऐसा ही है कि आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये क्यों, अचानक से इसलिए क्योंकि आज है 18 अगस्त और आज के दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है वो बहुत ही प्यारा सा दिन जो कि है नेवर गिव अप डे। आज वर्ल्ड नेवर गिव अप डे है जो कि पूरे ही ऑल ओवर हम कह लें कि हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। नेवर गिव अप डे का मतलब होता है कि कभी भी आपने अगर अपने लिए कोई एम बनाया है या आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इस दिन की शुरुआत साल 2019 में एलन ने की थी, उनके थ्रू इसकी शुरुआत की गई थी और धीरे धीरे इसे बहुत एक बड़ी पहचान मिली और दुनिया भर में आज का दिन वर्ल्ड नेवर गिव अप डे के रूप में मनाया जाने लगा। आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उन लोगों को एक तरीके से याद किया जाता है जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत कुछ था, बहुत स्ट्रगल थी, पर फिर भी उन्होंने कभी भी अपने जो कि गोल था उससे गिव अप नहीं किया, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स से कभी गिव अप नहीं किया। और हमें कभी गिव अप करना भी नहीं चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से हार जाते हैं तो फिर नहीं जीत सकते, लेकिन अगर हिम्मत करते हैं और कहते हैं ना कि जब मन में जज्बा हो, मन में एक जुनून हो, एक हिम्मत हो, तो आप आसमां को भी झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन वो हिम्मत चाहिए बस। तो ठीक उसी तरीके से है कि हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। तो आज का दिन उन लोगों के लिए है मेनली कि जो फिर से एक बार अपने गोल के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेट होते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मेंटली एक मजबूती देने के लिए उन्हें आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उन्हें डेडिकेट किया जाता है। सो आज के दिन पर एक प्यारी सी कहानी हमारे पास है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो आइए ये कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कुछ हम इस कहानी से। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था जिसका सपना एक बड़ा चित्रकार बनने का था। उसे एक राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता के लिए महीनों कड़ी मेहनत की और अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग उसने तैयार कर ली। बहुत मेहनत की और पेंटिंग तैयार हो गई, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण उसकी पेंटिंग जो थी वो पूरी तरह ख़राब हो गई। बहुत दुखी हुआ वो और उसे कंपटीशन से भी बाहर निकाल दिया गया। राहुल बुरी तरह टूट चुका था। उसने हमेशा के लिए अपनी ब्रश और रंग छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि उसकी किस्मत में कभी भी अब सक्सेस नहीं होगी, अब सक्सेस उसकी लाइफ से कोसों दूर है, अब वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने स्ट्रगल किया था, मेहनत की थी, वो तो सब दूर हो गया, सब धुल गया, और अब वो कैसे करेगा, अब नहीं कर पाएगा, और अब तो उसे कंपटीशन से भी बाहर निकाल दिया गया है। ठीक उसी समय उसके गांव में एक उसके टीचर थे, उन्होंने राहुल की निराशा को देखा और उसे समझाया कि कोई भी हार होती है लाइफ में, या कोई भी चीज़ अगर हमें हमारी बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल पाती, या हमारा कोई सपना टूट जाता है, लेकिन वो लाइफ का कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो आपकी लाइफ में अंत है, अब इसके आगे लाइफ में कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसे समझाया कि ये एक नई शुरुआत है। अपनी टीचर की बातें सुनकर राहुल को बहुत अच्छा फील हुआ और राहुल ने हार ना मानने के लिए हमेशा ये किया कि वो कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानेगा, और उसने फिर से ब्रश उठाया और पहले की तरह और ज़्यादा अच्छे से, और ज़्यादा डेडिकेशन से, और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ उसने अपनी पेंटिंग्स को बनाना शुरू कर दिया। और अगले साल फिर उसने उसी कंपटीशन में फिर से पार्ट लिया जिसमें वो पिछले साल नहीं ले पाया था, और इस बार उसे फर्स्ट प्राइज मिला। राहुल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं तो पूरी दुनिया हमारी कहीं ना कहीं कद्र करती है, हमारी एफर्ट्स को समझती है। बस ये होता है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम हार मान लेते हैं कि नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमेशा मोटिवेशन चाहिए होती है, हमें कोई समझाने वाला चाहिए होता है। लेकिन हर बार आपकी लाइफ में, जैसे अभी हमने राहुल की स्टोरी में सुना ना कि उसके पास उसके टीचर थे जिन्होंने उसे मोटिवेशन दिया, उसे समझाया कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, लेकिन हर बार शायद हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता है जो हमें समझा सके कि हमें क्या करना चाहिए। उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए। और इसी के साथ एक नज़र चैट बॉक्स में डाल लेते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। तो महेंद्र जी आ चुके हैं जो कि

हमें पूरी तरह तोड़ देता है तो वो हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि वहाँ से हमारा एक नया जन्म होता है, हम एक नए तरीके से बनकर उभरते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, नेवर गिव अप। तो आज है नेवर गिव अप डे, और नेवर गिव अप डे पे बस यही एक मैसेज है प्यारा सा कि दुनिया जो होती है और इस दुनिया में हमारी जो लाइफ होती है ना, वो क्या होती है, क्यों होती है, ये सब आपको बताऊंगी। और एक प्यारा सा मैसेज भी है आपके लिए जो मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आइए चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। इस सॉन्ग को सुन लेते हैं और सॉन्ग के उस पार आऊँगी बाय बोलने के लिए भी, और आपको बताने के लिए भी कि आखिर है क्या है कुछ जो कि आज नेवर गिव अप डे पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्यारा सा मैसेज होगा सभी के लिए। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं सॉन्ग को। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल कुछ कर जाएं, हाले हाले हो गया है प्यार, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और इसी सॉन्ग के साथ वापस आई हूँ बस एक लास्ट वाले मैसेज के साथ कि आज है नेवर गिव अप डे। और उसी के साथ मैं एक मैसेज आप सभी को देना चाहती हूँ कि लाइफ जो होती है ना वो कोई 100 मीटर की रेस नहीं होती है कि हम जल्दी जल्दी से उसे कवर कर लें। लाइफ एक मैराथन होता है और इस मैराथन में अगर आपको जीतना है, आगे जाना है, और कभी एक है ना कि हमें कभी भी किसी मुश्किल से हार नहीं माननी है, तो उसके लिए आपको बेबी स्टेप्स के सहारे चलना चाहिए। बेबी स्टेप्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ेंगे लेकिन लाइफ नाम के इस मैराथन को जीत कर दिखाएंगे। और अगर आप इसे 100 मीटर की रेस की तरह इस जल्दी जल्दी जीतना चाहेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैराथन की तरह अगर छोटे छोटे छोटे छोटे स्टेप्स में जीतेंगे तो हो पाएगा। और याद रखिए नेवर गिव अप, क्योंकि कोई भी मुश्किल, कोई भी तकलीफ हमसे बड़ी नहीं हो सकती। अगर हमारे अंदर जज्बा है कि हम लड़ सकते हैं तो हर तकलीफ हमारे सामने छोटी है। इसलिए हमेशा खुद को तकलीफ़ों को खुद पर नहीं बल्कि अपने आप को उन तकलीफ़ों पर हावी होने देना चाहिए कि मुझ में कितना दम है तुम देखो, मैं तुम्हें खुद पर हावी होने ही नहीं दूंगा। अपने जज्बे को, अपनी हिम्मत को, अपने प्यार को हमेशा जगाए रखिए। सेल्फ लव को, आपके अपने फैमिली से आप जो प्यार करते हैं, उनसे जो आपका एक लगाव है ना उसे, क्योंकि हमारी फैमिली हमारी स्ट्रेंथ होती है और हमेशा हमें ताकत देती है आगे जाने की, आगे बढ़ने की और बेहतर से भी बेहतरीन की तरफ जाने की। इसे प्यारे से मैसेज के साथ आज के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूँगी आपसे कल नहीं, अभी अभी सुन सहेली में, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। स्वागत है आप सभी का रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम भी अलग और अजीब सा लगता है, नाम है काला अजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं कहानी से करना चाहता हूं। टीकन देवी जी, आप तो गांव गांव जाती हैं, क्या आपने कभी कोई ऐसा मामला देखा? वैसे रुकिए रुकिए भाई, मैं तारुफ तो करा दूं। आज हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद है हमारी टीकन भाभी। सो कैसी हैं आप?
2: बहुत ठीक हूँ भैया, आप अपना बताइए कैसे हैं आप?
1: बस भाभी बहुत अच्छा हूँ। आप जिस तरह से जानकारियाँ देती हैं उससे मेरा और हमारे गांव वालों का, हमारे सभी श्रोताओं का बहुत भला होता है, और हमारा बहुत पैसा बच जाता है बीमारियों के खर्च में। लेकिन आज चूंकि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप भाभी गांव-गांव जाती हैं, तो क्या आपने कभी कोई ऐसा काला आजार का मामला देखा है?
2: अरे आरजी भैया, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था, लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ, उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई साया है। महीनों तक इलाज नहीं हुआ, जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ, जान तो बच गई, लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, यानी काला आजार के बाद की बीमारी। आज भी वो घर से कम ही निकलती है, लोग उसे देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजी भैया, अगर समय पर इलाज हो जाता तो आज ये सब ना होता।
1: सच में भाभी ये बहुत दर्दनाक है। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कि काला अजार क्या होता है और ये कैसे होता है, और साथ ही साथ इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। सो टीकन भाभी, सबसे पहले ये बताइए कि काला अजार होता क्या है?
2: देखिए आरजे भैया, काला अजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में भले ही काला अजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीशमैनियासिस है। ये बीमारी एक बहुत ही छोटे कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात ये है कि ये ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब ये रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, प्लीहा यानी तिल्ली और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में हमें ये बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
1: अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन भाभी, इसके लक्षण आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं? लोगों को कैसे पता चले कि ये काला आजार है?
2: बहुत अच्छा सवाल है आरजे भैया। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वो पहले जैसा काम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे पेट भी फूलने लगता है क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है जिससे चेहरा पीला पड़ने लगता है और व्यक्ति बहुत ही कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
1: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में अंदर से बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, क्यों?
2: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो अलग अलग स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है। अगर हम इस काला आजार की बात करें तो ये बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
2: भैया, भारत में ये बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
1: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता का विषय है।
2: हाँ अर्जी भैया, और खास बात ये है कि ये बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहाँ साफ सफाई की कमी होती है और जहाँ पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहाँ ये रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: तो भाभी, अगर किसी को लगे कि ये लक्षण उसे है तो उसे आखिर क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत ही आसान और तेज जांच की सुविधा उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में ये बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं। और सबसे जरूरी बात ये है कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसे की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए।
1: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत राहत की बात है भाभी।
2: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्दी असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
1: बिल्कुल भाभी, अभी आपने बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत वक्त लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
2: अरे नहीं नहीं आरजे भैया, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। पहले के समय में जरूर जांच में थोड़ा समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधा दे दी है कि गांव के पास ही अब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्दी काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसे हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा नाखून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
1: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो सच में बहुत आसान हो गया।
2: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध हैं।
1: लेकिन टीकन भाभी, क्या यह टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद है?
2: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देते हैं और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को पुष्टि की जरूरत लगे तो वो आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्दी शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
1: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है, क्यों?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ कि अगर किसी को 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो बिना सोचे समझे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाएं और टेस्ट कराएं। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। तो क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
2: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वो लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वो आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही बात कही और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों ही गांव के पास उपलब्ध है, क्यों भाभी?
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
1: बिल्कुल, लोगों के बारे में तो आपने बताया कि लोग समय पर कदम उठाएं, पर साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए कुछ कर रही है?
2: जी, सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है। एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस समय, जिसका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और ये NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ये है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में ये लक्ष्य हासिल भी कर लिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: क्या बात है भाभी, ये तो सच में गर्व की बात है।
2: हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है। करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिससे रेत मक्खियाँ खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
1: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं भाभी इससे बचने के लिए?
2: बहुत आसान उपाय हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए, ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, ताकि मक्खियाँ इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचें। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी गंभीर बीमारी से भी खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो टीकन भाभी, एक बात और बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलत फहमियाँ रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर और उसके बारे में सुनी सुनाई बातें बहुत करते हैं। इसको लेकर आप क्या मानती हैं?
2: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे भैया, और यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे गांवों में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत, साया या किसी बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक या ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
2: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि ये बीमारी छूने से फैलती है, इसलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग तो मरीज को अलग कमरे में रखने लगते हैं या उससे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसलिए मरीज से डरने या उसे अलग करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: क्या बात है भाभी, बिल्कुल अच्छी और सच्ची बात कही आपने। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बात और जानना चाहूँगा कि और आखिर कौन कौन सी गलत धारणाएं होती हैं लोगों में काला आजार को लेकर।
2: कई लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो गया तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है और जटिल हो सकती है। और एक बात और, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियाँ पनप रही हैं, तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: अच्छा, तो आखिर इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से आखिर कैसे बाहर आएं?
2: समाधान

0: शो को हम यहीं पर पूरा करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
1: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
1: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
2: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
1: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
2: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
1: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
2: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
1: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
2: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
1: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
2: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फोलिक एसिड की खुराक दी जाती है। और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
3: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
2: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
1: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बारे में जी।
2: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है, तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं। घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नजदीकी सब सेंटर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जाएं, तो वहां हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं, उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
1: जी, तो मैम, जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है?
2: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
3: मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं, उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
2: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
1: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
2: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है, लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए, तो खून की कमी का खतरा, यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
1: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
2: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक ज़रूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
6: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
5: तो भाई, आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है
6: सुन। क्या कहा है आज वो कहते हैं ना, आप अपने यथास्थान पर नहीं।
5: बिखरे बिखरे से कुछ उनके अंदाज नजर आते हैं। बिखरे बिखरे कुछ उनके अंदाज नजर आते हैं। क्या कहूँ जनाब, आजकल कुछ इधर उधर ही नजर आते हैं।
6: वाह,
5: मैं भी कभी शायरी करती थी और मेरी शायरी के दीवाने हुआ करते थे लोग।
6: एक सॉन्ग याद आ गया।
5: कौन सा?
6: हम जो शेर और शायरी करने लगे वजह तुम हो।
5: अच्छा, हाँ,
6: हम जो हर मौसम।
5: नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी वजह कोई और नहीं है, मेरी वजह मेरी खुद की है। मैं खुद भी बहुत अच्छे से शायरी करती थी, तो बट अभी मैंने छोड़ दिया है, तो अब मैं फिर उस अपने काम धंधे पे लौट रही हूँ। तो आइए, आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहेली, एंड प्यारी सी दोपहर के समय एक साथ एक ही फ्रेम में विश करते हैं
6: शुभ दोपहरिया।
5: हाँ जी दोस्तों, और हम लोग आ गए हैं और आज है ट्यूजडे, यानी कि आज है हमारा ट्यूजडे सेगमेंट। ओके, ये चाहिए लो। तो ट्यूजडे है और ट्यूजडे के दिन हम लेकर के आते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी सी क्या कहते हैं, उनकी केयर लेके आते हैं, उनकी छोटी मोटी डिजीज को लेकर के बात करते हैं और उनकी मदर्स के लिए भी हम लेकर के आते हैं बहुत कुछ। तो भाई, आज क्लास होने वाली है उनकी मदर की भी, लेकिन उसके पहले, जैसा कि औपचारिकता है हमारे और अंशिका की, हम चलते हैं आप सभी के लिए और एक बहुत ही प्यारी सी पोयम लेकर के आते हैं, और अंशिका लेके आती है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
6: यस,
5: तो होने वाला है कुछ लाइफ में अच्छा सा, लेकिन उसके पहले हम दोनों बिल्कुल नहीं करेंगे फाइट, क्योंकि कुछ नहीं, चलो तो
7: क्योंकि आरजे समता इज ऑलवेज राइट।
5: ओह माय गॉड, वाओ,
7: हो गई ना। ये होता है देखिए दोस्ती में, ये होता है कि
5: आप राइमिंग बहुत अच्छी थी
7: क्योंकि आपने अधूरा छोड़ा तो हमने पूरा कर दिया।
5: हाँ जी, तो चलें
7: चलें,
5: मुझे रास्ता तो दो।
7: रास्ता रास्ता तो आज मैम ने पहले ही निकाल लिया क्योंकि आते ही इतनी जबरदस्त, मतलब कहते हैं ना कि करेंगे स्वैग से स्वागत, तो स्वैग से स्वागत तो हो गया भाई क्योंकि बहुत ही प्यारी लाइन उन्होंने बोली। तो चलिए उन्हीं की लाइंस में कुछ हम भी जोड़ देते हैं। वो कुछ अलग से नजर आते हैं, वो कुछ अलग से नजर आते हैं, थोड़े परेशान थोड़े परेशान पर थोड़े थोड़े खोए खोए भी नजर आते हैं। रास क्या है ये तो बताइए, रास क्या है ये तो बताइए, जरा अपनी खामोशी से कुछ अच्छा सा जताइए।
5: ओह माय गॉड,
7: रास क्या है ये तो बताइए, जरा अपनी खामोशी से कुछ अच्छा सा जताइए, क्योंकि उनकी खामोशी भी करती है बात, उनकी खामोशी भी करती है बात जब आरजे समता होती है साथ।
5: ओह माय गॉड,
7: तो आइए चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी पोयम उन्हीं से।
5: चले
7: चले
5: चलो,
7: हाईवे तैयार है,
5: हाईवे तैयार है। घर के आंगन में जब बच्चों की किलकारी गूंजती है, शादी हुई नहीं है अभी,
7: घर के आंगन में किलकारी पहले गूंज गई। ये होता ही नहीं, ये आजकल का होता है पता है। जैसे हम कहते नहीं है कि आजकल मम्मी मेरी कभी कभी कहती हैं कि तुम लोगों का रेडीमेड वाला जमाना है ये, कि सब कुछ रेडीमेड वाला होता है, तो मुझे लगता है कुछ ऐसे ही है कि मतलब आजकल सब पहले हो जाता है,
5: सब पहले हो जाता है।
7: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। क्या होता है ना मैम कि कुछ चीजें बताने के बाद ही कह देना होता है कि हम मस्ती कर रहे हैं, वरना तो कोई सीरियस ही समझ ले, पता लगा कुछ का कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
5: पढ़े आगे।
7: हाँ मैम,
5: घर के आंगन में जब बच्चों की किलकारी गूंजती है, हर उदासी मिट जाती है, हर एक मुश्किल भूलती है, इनके आने से घर का हर कोना चहक उठता है, जैसे पतझड़ के मौसम में कोई फूल महक उठता है।
7: वाह,
5: भोली सी सूरत और आंखों में मासूम सा संसार है, इनकी हर एक तोतली बोली में छुपा असीम प्यार है। दुनिया की चालाकियों से ये कोसों दूर रहते हैं, जो दिल में होता है बस वही सच ये कहते हैं। कभी खिलौनों के लिए रूठना तो कभी मान जाना इनका, कभी खिलौनों के लिए रूठना कभी मान जाना इनका, छोटी छोटी बातों पर दुनिया को सिर पर उठाना इनका। इनकी शरारत में भी एक अजीब सा सुकून होता है, खुशियां बिखेरने का इनमें ही तो जुनून होता है। ये बच्चे ही तो हमारे कल का सुनहरा विश्वास है, ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल और सच्चा उपहार है। इन्हें प्यार से सींचे ताकि ये खुशहाल बन सके, आने वाले कल में इस देश की शान बन सके।
7: वाह जबरदस्त। वैसे आज मैंने कुछ नोटिस नहीं किया और देर से नोटिस किया।
5: क्या?
7: तो देर से नोटिस करने के लिए सॉरी, वो भी बड़ा वाला।
5: क्या?
7: कुछ
5: किसमें?
7: काली काली आंखें।
5: अच्छा काली काली आंखें और ना...
7: काली काली आंखें तो मैंने एक एग्जांपल दिया,
5: काली काली आंखों और आईब्रो के बीच में कुछ
7: कुछ नोटिस कर लिया।
5: हाँ
7: अभी मैंने नोटिस।
5: अरे मेरा मन करता है मैं भी सुंदर लगूं, मेरा भी अधिकार है सुंदर।
7: वो तो आपने जो मतलब... किया वो भी नहीं करती तभी लगती, लेकिन मतलब... आज कुछ ज्यादा लग रही है।
5: मतलब मेरा मन करता है कभी कभी मैं भी सुंदर लगूं।
7: नहीं मैम
5: इंसान हूँ, और वैसे भी जब विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम में बैठते हैं तो अपने आप को एक ब्यूटीफुल सा फेस और ब्यूटीफुल सी वॉइस करके बैठना अपना अच्छा लगता है। और गाल भी मतलब जैसे चगी चिप्स
7: छोटे बच्चे वाले।
5: हाँ वैसे वाले है ना,
7: वैसे वाले।
5: चले हो गया तुम्हारा वाला,
7: हो गया मेरा,
5: चलते हैं अब। ठीक है तो आइए सुनते हैं दोस्तों रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे कोई भी फाइट।
7: फाइट तो वैसे भी नहीं होगी, लेकिन चलिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ तो बता देते हैं। तो आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ क्या कहता है चलिए बताते हैं। कहता है मंजिलें, मंजिलें पाना तो चाहते हो पर कोशिश नहीं करना चाहते, मंजिलें पाना तो चाहते हो पर कोशिश नहीं करना चाहते, तो बैठे बैठे नहीं होती है कोई बात, और ना ही बैठे बैठे होती है आपके ज्ञान की बरसात। इसलिए अगर मंजिल को पाना चाहते हैं तो कोशिश करनी चाहिए। ये उनके लिए था कि जिन्हें लगता है कि लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पापा का कोई बिजनेस है और अगर वो बेटे को हैंडओवर कर दिया जाता है तो उसे लगता है कि अरे मुझे तो सब कुछ बना बनाया मिल गया ना, मुझे मेरी मंजिल मिल गई। लेकिन आपने कोशिश नहीं की, तो जिन्हें बिना कोशिशों के मंजिल मिलती है उन्हें कभी उस मंजिल की उस कामयाबी की कद्र नहीं होती, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसने मेहनत का पसीना बहाया हो रोटी की कीमत वही समझता है। तो इसलिए जब भी कुछ हासिल करें तो हमेशा अपनी मेहनत पर हासिल करना चाहिए।
6: जी।
7: So, इसी प्यारी सी बात के साथ आज चलिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं और ये किसी के लिए है।
6: ओके।
7: किसी के लिए है।
6: चलो तो किसी के लिए अगर है तो सुनते हैं फटाफट।
7: किसके लिए?
6: मेरे लिए होगा और किस? ऑब्वियस सी बात है, आपकी जिंदगी में एक होनहार सदस्य मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, मुझे पता रहेगा जब तक कोई और दूसरा मेल आए तब तक मैं ही हूँ। मैं ही ईमेल हूँ तब तक जब तक आपकी जिंदगी में कोई मेल आए।
7: आ जाएगा फिर भी,
6: तब भी ईमेल हम ही बने रहेंगे आपके।
7: जगह कोई किसी की नहीं ले सकता।
6: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के शो को और प्यारे से गाने को सुनते हैं। बस हम यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
3: आरजे अंशिका।
2: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के ब्यूटीफुल से नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है और स्पेशली आज बच्चों को लेकर के है, तो बिना सोचे समझे भी हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। एंड जो अभी अंशिका जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले है ना
3: जी मैम,
2: और एक टॉपिक मेरे पास बहुत ही आज अच्छा है जो कि बच्चों के लिए मुझे लग रहा है कि यूजफुल होने वाला है, तो मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले अभी का टॉपिक।
3: तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि भाई पॉकेट मनी की बचपन से बहुत खुशी होती है। जो भी दिन होता है मैम, जिस दिन पॉकेट मनी मिलने वाली होती है उस दिन हम बहुत खुश होते हैं कि आज हमें पॉकेट मनी मिलेगी। लेकिन आजकल के बच्चों में आप देखें कि पॉकेट मनी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बदल गई है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए भी मिल जाते थे तो बहुत खुशी होती थी। आज पैसे तो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स की एक हैबिट होती है कि वो हर वक्त बच्चों को पैसे देते रहते हैं, वो उन्हें एक तरीके से गलत आदतों की तरफ ले जा रही है। कहीं ना कहीं बच्चे फिर देखिए कहते हैं ना कि हर टाइम अगर कोई इंसान अवेलेबल रहता है या कोई चीज़ अवेलेबल रहती है तो धीरे धीरे हम उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। इसलिए समटाइम्स ऐसे होने चाहिए कि जब

0: इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों को या तो आप पैसे दीजिए ही नहीं, उन्हें खाने की चीजें दीजिए, और या तो फिर इतने दीजिए कि बस वो उनकी जरूरत भर
1: के। बिल्कुल।
0: क्या हुआ? आप शांत क्यों?
1: शांत इसीलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बातों को सुन रही थी और कुछ ऐसे सेगमेंट कह ले या फिर कुछ ऐसे सीन कह ले जो मेरी आंखों के सामने आ गए थे। हमारे घर के आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ऐसे बिगाड़ के रखा हुआ है, मतलब फोन, लैपटॉप, गाड़ी और हर जगह पर अवेलेबल हो जाना पेरेंट्स का कि हाँ ठीक है हम यहाँ चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और वो बच्चे मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ उनके अंदर आ गई है, चिड़चिड़ापन आ गया है कि कहीं ना कहीं उनकी सारी ख्वाहिशों को जब पूरा करो तो वो और ऊपर की ख्वाहिशें करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना? तो मैं ऐसा देख रही हूँ तो वही दिमाग में मेरे आ गया था और बिल्कुल आंखों के सामने वो सीन आ गया था जिनके लिए मैं सोच रही हूँ।
0: क्या होता है ना मैम, शांत हो जाती हूँ मैं, डर जाती हूँ। शांति के पीछे की वजह क्या?
1: शांति के पीछे की आज तो कोई खास हम वजह भी नहीं है। खैर, कभी कभी मूड होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा अंदर अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात वो कि अभी की, तो मैं वही सोच रही थी कि कुछ हम लोग भी क्या कहते हैं 90s किड्स में हैं, बट हम लोगों के टाइम पर कभी ये नहीं होता था कि मतलब जैसे जिसको एक रफ लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि किसी को मतलब हम लोग के पेरेंट्स ने हम लोग को अफराद जिसको कहते हैं ना वर्ड, ये कि अफराद पैसे खर्च नहीं कभी हम लोगों ने किए। हम लोगों ने 1 रुपए से 2 रुपए कैसे बनाए जाते हैं ये वाली टेक्निक से पढ़ाई की है। और आजकल के बच्चे क्या है कि 1 रुपए में मतलब 1 रुपया तो समझ लो कि कुछ अगर किसी, अभी मैं गई थी कहीं पर अभी घूमने के लिए जगह पर, तो मेरे साथ मेरी भतीजी थी, तो जैसे फुटका नहीं होते पर्स में कोई आते हैं ट्रेन में मांगने के लिए, तो 1-2 रुपए ऐसे ही मेरे पास थे, तो मैंने उसको निकाल के मतलब ऐसा तो कभी रेयर होता है कि मैं 1-2 रुपए दूं क्योंकि सच्ची में 1-2 रुपए में अब कुछ नहीं मिलता है। तो मेरे पर्स में कुछ ऐसी चिल्लर रखी हुई थी फुटकर, तो मैंने उठा के उसको देने लगे, तो वो बोलने लगी कि अरे ये क्या दे रही हो, इसमें क्या आता है। और एग्जैक्टली आप 5, 10 रुपए, 20 रुपए मतलब आप किसी को अगर दे भी रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आप 5 रुपए तो 10 रुपए तो आप दो ही दो, क्योंकि वाकई में 1-2 रुपए में कुछ नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो एक जमाना हुआ करता था कि 1 रुपए अगर हम लोगों को जैसे मिलता था, 2 रुपए मिलते थे, 5 रुपए मिलते थे, तो हम लोगों को लगता था कि अरे हम लोग को 200 रुपए मिल गए, तो 1 रुपए से 2 रुपए कैसे करना, मतलब कि हाँ हम लोग ने 1 दिन हम लोग को पॉकेट मनी अगर 2 रुपए मिलती थी तो 2 दिन उसको जमा करके हम लोगों के पास 6 रुपए हो जाते थे। तो लगता था कि अरे मतलब हम लोग के पास आज 6 रुपए हैं। और आज के टाइम पर उनके उन्हों अगर बच्चों को 100 रुपए भी अगर कोई दे रहा है, 50 रुपए भी दे रहा है, तो सब लोग ये कहते हैं कि 50 रुपए में क्या एक डोसा भी नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: कहने वाली बात है ना कि आप तो 70 रुपए का डोसा हो गया है। कहने वाली बात है कि अगर आप किसी अच्छे से किसी अगर आप महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो 200 से 250 रुपए का एक आप डोसा खा लेंगे केवल। तो जैसे जैसे टाइम बदला, चीजों की वैल्यू बढ़ी, पैसों की कीमत ज्यादा होने लगी, तो लेकिन बच्चों के दिमाग की भी जो बातें हैं ना वो भी हाई लेवल की होने लगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम ने काफी आपको इस टॉपिक को लेकर के ब्रीफ कर दिया। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी कि हमेशा देखिए आजकल पेरेंट्स की भी मैम एक थिंकिंग बन गई है कि अगर बच्चों को थोड़ा कहते हैं जैसे कि कहीं जाना है मान लीजिए पेरेंट्स को, और मम्मी है उनके पास खाना बनाने का टाइम मान लीजिए नहीं है, तो खट से बस पर्स से पैसे निकाले और बच्चों को दे दिया, लो बेटा कुछ भी खरीद के खा लेना। तो ये एक हैबिट नहीं होनी चाहिए। आप उनको पैसे तब दीजिए जब उनको उसकी एक्चुअल नीड हो।
1: बिल्कुल।
0: हम लोग आज भी मतलब इतने बड़े हो गए फिर भी अब तो हाँ ये है कि अपने पास रखते हैं, लेकिन पहले जब छोटे थे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर पेंसिल रबर भी लाना होता था, कुछ भी करना होता था, तो मम्मी जरा पैसे दे दो, क्योंकि हमारे पास उतने रखे होते थे जितने की हमें ज़रूरत है और वो हमारे खर्च हो जाते थे। हम इतने नहीं रखते थे कि हमारे पास पैकेज रखा हुआ हो। बच्चों के पास पैसे इसलिए नहीं रखे होने चाहिए क्योंकि जब ज़्यादा होते हैं तो हम जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद लेते हैं। अब अगर बच्चे के पास पैसे पड़े तो मान लो उसने कुछ भी देखा, उसको नीड नहीं है, फिर भी मान लीजिए कोई फ्रेंड उसकी ले रही है, अरे यार तुम भी ले लो ना,
1: और क्या,
0: हाँ मेरे पास रखे हुए हैं चलो ले लिया, लेकिन शायद उसकी नीड नहीं थी जो ले लिया। तो ठीक उसी तरीके से बच्चों को कभी पैसों की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उनमें एक लालच कह लें या ये कह लें कि एक भावना बढ़ती जाती है कि मुझे इससे ऊपर चाहिए, फिर मुझे उससे ऊपर चाहिए, फिर मम्मी अब मुझे आप 500 रुपए दिया करो। कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को उतना दीजिए जितने में उनका काम चल जाए, यानी कि अच्छे से वो अपनी पूरी डे को स्पेंड कर सके। ज्यादा पैसे देना अच्छी बात नहीं है, और मैं तो यही कहूंगी कि खाने की जो भी चीजें वो आपसे मांग रहे हैं वो आप चीजें लाकर दीजिए। हम लोग आज भी है कि पापा से जब बोलते हैं कभी कि पापा ये इस चीज को लाओ, अच्छा मैं मार्केट से ले आती हूँ, तो पापा कहते हैं नहीं तुम रहने दो हम मार्केट से

0: ले आएंगे और दे देंगे। ऐसा नहीं है, बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी कहते हैं ना, बच्चों वाली कुछ आदतें हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे के चेहरे पे मासूमियत होती है, वैसे हमारे पास भी कोई है जिसके चेहरे पे मासूमियत है बच्चों वाली।
1: कौन
0: है कोई?
1: कौन सा?
0: आज उन्होंने ब्लैक कलर की बिंदी भी लगाई।
1: ओह माय गॉड, हम और आज बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम आपसे, आपको देख के हमें डर लगता है।
0: डर लगता है?
1: हाँ, लड़कियां बोल रही थी आज की मैम, मतलब वो अनजान लड़कियां थी, कॉमर्स डिपार्टमेंट की लड़कियां थी, और मैंने ऐसे उनकी क्लास ली आज। तो मतलब क्लास ली मैंने, वो डाट वाली क्लास
0: नहीं, नहीं वो तो
1: मैंने क्लास ली, तो वो लोग आई और मैंने कहा कि आज थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे बारे में बताओ, क्या ओपिनियन है मेरे बारे में आप लोगों का। तो सारे बच्चों ने सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करी कि मैम आपको देख के बड़ा डर लगता है, बट आप जैसी बाहर की दिखती हैं वैसी आप हैं नहीं। सब ने यही बोला,
0: पहली नजर में तो कोई भी यही सोचेगा।
1: पता नहीं कैसे लोग,
0: वैसे मैंने किसी से
1: प्यार हो जाता है, मुझे नहीं पता।
0: नहीं, पहली नजर में प्यार तो हो सकता है मैम, लेकिन पहली नजर में डर भी हो सकता है। मतलब ऐसा मैम को देख के पता नहीं क्यों ऐसा उनका ऑरा है या कुछ भी।
1: हाँ, मेरा ऑरा ही कुछ ऐसा है, और मैं क्या बता दूँ अब, वो तो मेरा गॉड गिफ्ट है, एंड आई एम सो लकी एंड सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि मेरे साथ मेरे ईश्वर ने मुझे ये ऑरा दिया है। थैंक यू।
0: तो हाँ, लगता है डर, लेकिन प्यार वाला डर है।
1: अब तो मैं डरने की जरूरत नहीं है।
0: नहीं, मुझे तो नहीं है, मतलब मैं तो ऐसा कहती हूँ, जैसे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं हम सर चढ़े हो गए, तो मैं अपने लिए यूज कर सकती हूँ कि मैं सर चढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता है। मतलब लगता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा नहीं भी है, थोड़ा सा है भी।
1: रिस्पेक्ट वाला डर है,
0: अच्छा वाला डर है कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारी मैम को बुरा लगे। तो चलिए, फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ नहीं होने वाला है, और जो डर गए ना मैम वो समझ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कुछ लोगों से मैंने सुना है प्यार वाला डांटती है, ऐसा भी सुना है, सुना है मैंने।
1: एग्जैक्टली, यस, ये भी है। ठीक है, तो चले अभी हम चलते हैं एक इस टॉपिक को, फिर अभी हम यही खत्म करते हैं
0: जी।
1: लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज के युग के बच्चों के लिए है, तो जरूर से सुनिए, एंड जो हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उन सभी का थैंक यू तहे दिल से। एंड इसके ब्रेक के बाद में हम सीधे आएंगे पहले चैट बॉक्स में, क्योंकि कल लास्ट टू लास्ट चैट बॉक्स में जितने भी लिसनर्स आए थे उनको उनसे बात करना हमारा रह गया था। तो इस ब्रेक के बाद हम सीधे आएंगे पहले चैट बॉक्स में।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता
6: और साथ में है RJ अंशिका।
5: मतलब हम बोलते हैं RJ समता तो ये बोलती है RJ अंशिका, एक तार सप्तक में तो एक मध्य सप्तक में, है ना?
6: क्या कर सकते हैं।
5: चलिए तो शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ज्यादा आजकल यूथ में देखा गया है। वो इसलिए देखा गया है क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जो बच्चे, कुछ गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो कुछ करना चाहते हैं और करने के लिए उन्हें बाहर जाने की परमिशन अपने घर वालों से लेनी पड़ती है और उसी कारण से उनमें ये एग्रेशन हो जाता है, उनमें ये फीलिंग आ जाती है कि भाई मैं तो ये करना चाहती हूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ, लेकिन पेरेंट्स की मर्जी कुछ और होती है। बच्चे बनना चाहते हैं इंजीनियर, पेरेंट्स की मर्जी होती है कि डॉक्टर, तो इसी में ये एग्रेशन शुरू होता है। सबसे पहले तो वो स्कूल से शुरू होता है, जैसे कि जब वो 10th में होते हैं तो सब्जेक्ट वाइज हो जाता है, 12th में होता है तो ट्यूशंस को लेके होता है, फिर उनकी बुक्स को लेकर के होता है और धीरे धीरे ये अग्रेशन जो होता है ये एक बहुत बड़ा वाला भयंकर रूप ले लेता है।
6: बिल्कुल सही, जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया ऐसा ही होता है। कुकर में जब हम कोई सामान चढ़ाते हैं, मतलब कुछ बनने की चीज़ आप जब कुकर में उसको गैस पे रखते हैं कुकर को, और मान लीजिए कि विसल आपने लगाई है, मतलब विसल आनी है, लेकिन अगर आप उसको विसल ना आने दें तो क्या होगा? अगर हम विसल नहीं आने देंगे तो कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब आप, क्योंकि विसल के थ्रू जो प्रेशर होता है वो बाहर निकल जाता है। यूथ्स की अगर बात करें, बच्चों की बात करें, जिनकी भी 12th हैं और उससे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी हालत कुछ वही हो जाती है, कुकर वाली ही हो जाती है कि विसल तो बन रही है लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस विसल को दबा देते हैं, यानी प्रेशर को बाहर नहीं आने देते।
5: कौन सी प्रेशर, कौन सी विसल?
6: अगर मैं
5: कुकर में, प्रेशर
6: कुकर में, कि अगर आप विसल जो होती है मैम उसके थ्रू सारी जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है, मतलब उसमें जितनी भी प्रेशर बनी होती है, लेकिन अगर हम विसल को ना निकलने दें तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। वही सीन बच्चों के साथ भी होता है कि आप उनके अंदर की बातों को बाहर नहीं आने देते। पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि अभी बच्चा छोटा है ना, अभी वो अपनी लाइफ की डिसीजन नहीं ले सकता है, हमें लेने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो 12th में पढ़ रहा है या उससे बड़ी क्लास में बच्चे हैं या फिर छोटी उम्र के भी हैं, तो आजकल बच्चे इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि उनके लिए ये सही है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरी नॉलेज इस सब्जेक्ट में, तो अगर मैं इससे आगे जाऊँगा तो मेरा करियर ब्राइट है। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है कि हमें डिसीजन लेना चाहिए।
5: हाँ।
6: तो सबसे पहले तो डिसीजन जिसकी लाइफ का है उसी के हाथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ के डिसीजन हम बेहतर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बेहतर नहीं ले सकते हैं, वो तो बहुत बेहतर ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जनरेशन गैप होता है कि आज की जनरेशन को जो थोड़ा सा सही लगता है वो जो हमारे मम्मी पापा है उनको गलत लगता है कि नहीं शायद ये इस तरीके से नहीं हो, इसमें बहुत रिस्क है और बाहर जाके पढ़ोगे तो कैसे रहोगे, कैसे मैनेज करोगे, वो सारी चिंता, सारी फिक्र, सब कुछ सही है। लेकिन हमारा जो आज यूथ है वो ये सोचता है कि बाहर जाएंगे तो मैनेज भी कर लेंगे, रह भी लेंगे, कर भी लेंगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेंगे।
5: एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए अंशिका उन पेरेंट्स को समझना चाहिए ना।
6: हाँ, पेरेंट्स को कहना कि देखिए आप अपनी चिंता की वजह से अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देना चाहते, आपको लगता है जैसे भी रहेगा मेरी आंखों के सामने,
5: खास करके गर्ल्स के लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा मतलब होती है कि उनको लगता है कि हम मेरे सामने रहेंगे बच्चे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उनका करियर भी तो कुछ है।
6: बिल्कुल, देखिए सेफ्टी पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऐसे नहीं होता है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ होना होगा, अगर डरे ही, हम एक अंदर की डर की बात कर ले तो कुछ होना होगा तो इंसान घर के जीने से भी गिरेगा तो चोट लग जाएगी।
5: हाँ।
6: और वैसे तो अगर कुछ नहीं होना होगा तो आप पहाड़ से भी गिरेंगे तो बच जाएंगे।
5: बिल्कुल,
6: ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हम सुनते हैं और रियल लाइफ स्टोरी देखते हैं कि अरे वो तो पहाड़ से गिर पड़ी लेकिन बच गई, थोड़ी चोट आई बट बच गई।
5: हाँ।
6: और कई बार हम सुनते हैं अरे घर के जीने से तो फिसल के गिरी थी और उनके साथ ये हो गया, तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं। हाँ, बाहर जाके रहना, वहाँ स्ट्रगल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़े से भरोसे की जरूरत होती है बच्चे को कि मम्मी आप भरोसा करो, पापा आप भरोसा करो और मैं कर लूंगी। और रही सेफ्टी पॉइंट्स की बात, तो उतना आप उसको मजबूत करके भेजिए कि वो अपने सेफ्टी पॉइंट्स खुद उसको कैरी कर सके।
5: एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये आता है अंशिका कि अगर हम उन्हें जितना भी सेफली और जितना भी हम मजबूत करके उन्हें भेजते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो संस्कार होते हैं ना, ये बचपन से ही उन्हें सिखाए जाते हैं कि तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की हो और तुम्हें हर एक स्ट्रगल को क्रॉस करना है एंड सारी चीज़ों को एक हैंडल करके ही आगे बढ़ना है। तो ये अगर हम मेरे जैसे मेरी बेटी होती और मैं उसे ये बात समझा के उसे अगर रखती, तो कहीं ना कहीं जब वो बाहर पढ़ने जाती है तो उसको ये माइंड में रहता है कि यस स्ट्रगल में मेरी लाइफ में स्ट्रगल है और मैं इसको पार ज़रूर करूँगी और मैं अपनी लाइफ को और अच्छे से उसको बेहतर बना सकती हूँ, तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो चाहे वो बच्चों की तरफ से हो।
6: बिल्कुल,
5: आई थिंक इस पूरे ये जो आज का टॉपिक है उसका कंक्लूजन यही होगा कि हम बच्चों को बाहर तो भेज रहे हैं लेकिन उसे उन्हें उन बच्चों को पूर्ण रूप से तैयार करके नहीं भेज रहे हैं, आपको मेंटली फिजिकली पूरा उन्हें बिल्कुल एक रेडी करके भेजना है। 10th क्लास से ही उन्हें ये पता होता है कि 12th क्रॉस करने के बाद में हम लोगों को बाहर जाना है, जो कि आजकल का ट्रेंड भी बन गया है कि बाहर जाके पढ़ना है, तो क्यों नहीं हम 10th से ही बच्चों को, 4 साल होते हैं 10th फर्स्ट ईयर 12th एंड फर्स्ट ईयर एंड क्या कहते हैं कि 12th, तो मतलब लगता है कि 9th टू 12th जो क्लासेस होती हैं 4 साल की, उन 4 सालों में अपने बच्चों को इतना तैयार कर दें कि ये सारी प्रॉब्लम्स आए ही नहीं।
6: बिल्कुल सही कहा मैम ने, तो वो रेडी वाला होता है कि रेडी एंड गेट सेट गो, वही वाला।
5: हाँ, फिर ये हो जाता है कि हाँ भाई बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई हम लोगों को तो जाना ही जाना है और पेरेंट्स भी ऑलरेडी उन्हें लगता है कि हाँ भाई हमें हमारे बच्चों को इस तरीके से बाहर भेजना है। तो भाई इस टॉपिक से केवल यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, भाई बच्चे सब पढ़ने जा रहे बाहर, तो उन्हें 9th से लेकर के 10th 12th तक उन्हें इतना तैयार कर दें ताकि उनके सामने कोई भी चुनौती आती है तो वो उनका डट के और हंस के सामना करें।
6: बिल्कुल,
5: चैट बॉक्स में आएंगे अंशिका।
6: यस मैम, तो चैट बॉक्स में भाई हो रही है बहुत ही बातें शातें, तो बातें शातों के बीच में चलते हैं और इसी के साथ प्रीति जी आ गई हैं मैम और लिख रही हैं गुड आफ्टरनून आरजेस, गुड आफ्टरनून आपको भी। कमल नयन जी आ गए हैं, महेंद्र जी आ गए हैं और उन्हीं के साथ नाजिया अंसारी जी भी हैं और मैं देख लूँ, हाँ नाजिया अंसारी जी हैं, अगेन महेंद्र जी हैं और सभी गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं और साथ ही साथ लिख रहे हैं, और नाजिया जी लिख रही हैं जी मैम आपने बिल्कुल सही कहा, और गुड आफ्टरनून कमल नयन जी ने भी लिखा है, बहुत सारे हार्ट्स भेजे हैं, तो आप सभी का थैंक यू सो मच हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। तो आइए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम सुन सहेली स्टडी।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता
7: और साथ में है आरजे अंशिका। चलिए अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते। क्या बात है, आज कुछ हो गया है?
6: हमको हंसी इस बात पे आई क्योंकि मैं बोलती हूँ मैं हूँ आरजे समता, तो ये बोलती है धीरे से और मैं हूँ आरजे अंशिका,
7: तो वो
6: बात से पता चलता है।
7: अच्छी बात है ना,
6: एक है बिल्कुल तेज तर्रार तो एक है बिल्कुल मीठी छुरी।
7: मियाओ। ओके
6: जी हाँ, मीठी छुरी।
7: मैं मीठी छुरी हूँ।
6: हाँ, जिसपे वो शहद लगा के काटती है ना। चलो नव्या जी, हेलो हेलो हेलो नव्या जी, कैसी हैं आप? और बहुत दिनों के बाद, यानी कल मेरे ख्याल से आई थी नव्या ना। हेलो, शुभ दोपहर नव्या जी, कैसी हैं? एंड चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक को।
7: जी मैम, तो नया टॉपिक हमारा है कि भाई अभी तक हमने बात कर ली बच्चों के बारे में, अब बात करते हैं उनकी जो हमारे घर में रहते हैं और बच्चों जैसे ही कोमल होते हैं,
6: बिहेव करते हैं
7: लेकिन बच्चे होते नहीं। वो होते हैं हमारे घर के पेट्स, जो कि बहुत प्यारे से होते हैं, क्यूट से होते हैं और थोड़े से केयरिंग भी होते हैं। तो आज उनके लिए बात करते हैं कि इस मौसम में उनके क्या होती है ना, कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अगर उन्हें इग्नोर किया जाए तो और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सो कानों में इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है आजकल पेट्स में। अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग को सबसे ज़्यादा होता है कानों में इन्फेक्शन, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी केयर अच्छे से की जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में डॉग है तो कान में इन्फेक्शन सबसे बड़ी बात होती है। हम कैसे जानेंगे कि कान में इन्फेक्शन हो रहा है? तो उसके लिए कुछ लक्षण होते हैं, और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है जब कान में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नमी ज़्यादा होने का रीज़न होता है कि मान लीजिए आपने नहलाया उसे और ठीक से साफ नहीं किया अगर पानी टॉवल से, तो वो उनके कानों में चला जाता है। इसलिए जब भी आप अपने डॉग को, पेट को, जो भी आपके पास हो, चाहे रैबिट हो, कैट हो, कोई भी हो, तो अगर नहलाने के बाद में आप उनको साफ कर रहे हैं ना कपड़े से, मतलब टॉवल से, तो अच्छे से हाथ कानों में डाल के अंदर तक साफ करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम बाहर बाहर से साफ कर देते हैं और पानी जो अंदर जाता है वो अंदर सोप कर लेता है और फिर इन्फेक्शन होता है नमी की वजह से।
6: बिल्कुल,
7: इसलिए अच्छे से पानी को सुखाना चाहिए। अब आते हैं कि लक्षण क्या होता है। लक्षण ये होता है कि बार बार सिर हिलाना और कानों को बार बार पैरों से ऐसी कोशिश करना, जैसे खुजली होती है तो हम कोशिश करते हैं ना, वैसे ही वो भी बार बार कोशिश करते हैं अपने पैरों से अपने कानों को खुजलाने की, बार बार सिर हिलाना और कानों से हल्का जो है ऐसे, जैसे हम जब लेटते हैं तो मुंह से ऐसी पतली सी लार गिरती है ना, तो हम कहते हैं कि लार छोटे बच्चों को बहुत होती है, वैसे ही उनके कानों से हल्का सा पतला एक पदार्थ कह लीजिए वो गिरने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ इनके कानों में इन्फेक्शन हो रहा है। वो लक्षण होते हैं, उसी से आपको जान जाना है कि इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन इस इन्फेक्शन को होने से हम रोक भी सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया, नमी बिल्कुल भी नहीं आने देनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपके पेट्स ज़्यादा पानी में ना खेलें। जैसे बारिश का मौसम है तो ऐसा होता है ना कि घर में कई बार कई जगहों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पेट्स उसमें खेलने लगते हैं, कई बार वो वही पानी पी भी लेते हैं,
6: बिल्कुल,
7: तो फिर उन्हें प्रॉब्लम।
6: और सबसे एक चीज मैं भी बताना चाहूंगी अंशिका कि इसमें जब हम लोग शौक शौक में, देखो पेट्स तो हम लोग क्या कहते हैं घर में रख लेते हैं, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि उनके बर्तनों को लेकर के बहुत लापरवाही की जाती है। शायद ये चीज हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, दोहरा चुके हैं, पर आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये आप उन पर और एक अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि फंगस और ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये खराब बर्तन में खाना खिलाने, पानी पीने की वजह से भी होता है, जिसके कारण से ये संक्रमण उनके कानों में, उनके दांतों में, उनकी आंखों में ये धीरे धीरे फैलने लगता है।
7: बिल्कुल। सो अभी मैम ने जो पॉइंट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे ध्यान रखें कि बर्तनों को गर्म पानी से साफ करना
6: बिल्कुल
7: चाहिए।
6: और मुझे लग रहा है कि जैसे अभी जैसे धूप हो रही है ना, तो इस मौसम में जैसे थोड़ी सी बारिश होती है फिर धूप होने लगती है, तो करना क्या है आपको इसमें कि जब तेज धूप निकले, जैसे आज निकली है धूप, तो ऐसे ही जब तेज धूप निकले ना, तो आपने अगर नॉर्मल आपको जैसे लगता है कि हम कैसे उसको साफ करें, क्योंकि उसका ब्रश भी अलग होता है आपके जो पेट्स के जो क्या कहते हैं पॉट्स होते हैं, तो क्या करना है कि उसमें से ब्रश से अच्छे से सफाई करके आपने उसको 2 से 3 घंटे अच्छे से, जब आपका पेट नहीं खा रहा हो तो आपने क्या करना है, उनको उन सारे पॉट्स को आपने धूप में रख देना है। धूप में रखने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया उसमें ऐसे होते हैं बर्तनों में जो दिखाई नहीं देते हैं, स्पेशली जानवरों के, तो वो भी धूप के कारण से वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, और वो अगर होंगे भी तो नहीं फिर उसमें बचेंगे, और इससे आपके जो जो पेट्स के बर्तन हैं वो भी अच्छे से साफ सुथरे और बिना किसी मेहनत के साफ सुथरे हो जाएंगे।
7: वाह, मतलब
6: इसको मत कहना कि हाँ, इसीलिए कहते हैं बुजुर्ग एंड ऑल दैट जो भी।
7: नहीं नहीं, मैंने कहा आपने अपने मन से क्यों छोड़ा, मैंने बुजुर्ग कहना बंद कर दिया आपको। अच्छा। अब वो फीलिंग नहीं आती बुजुर्गों वाली। अब मुझे कुछ दिन बाद फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या कहूँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मुझे मैम नहीं कहना होता तो मैं क्या कहती।
6: चलो आगे बढ़े,
7: क्योंकि दीदी भी नहीं कह सकती ना, ये भी बात है।
6: ज्यादा हो रहा है अब तुम्हारा।
7: नहीं, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है।
6: नेक्स्ट
7: तो नेक्स्ट भाई, आपने अभी जान लिया, तो अभी अभी हमने बात की कानों की, अब बात कर लेते हैं जो कानों से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है उनकी, जो कि हमारे कानों से हमारे दांत रिलेटेड होते हैं, होता है ना कभी कभी।
6: हाँ हाँ हाँ
7: जी मैम।
6: और कानों से रिलेटेड सबसे पहला जो होता है ना इन्फेक्शन का कारण होता है गला।
7: हाँ
6: मैं बता दूं आपको, क्योंकि नाक, कान और गला, ये तीनों जो होते हैं ना ये आपस में अटैच होते हैं।
7: बिल्कुल। तो भाई दांतों के लिए इसलिए क्योंकि बहुत मैंने देखा है, मतलब बहुत क्या, मैंने मैक्सिमम घरों में देखा है मैम कि आदत होती है कि सुबह वो पेट्स को जैसे उठाया और सीधे बस पानी दे दिया या खाना दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह आप उनको उठाइए तो जैसे हम ब्रश करते हैं ना, हम क्यों आप सीधा नहीं खा लेते हो, आप सुबह ब्रश करते हो, हम कहते हैं सुबह ब्रश करके तब खाओ। ठीक है, पेट्स को ब्रश कराना इतना आसान नहीं होता है, ऑफकोर्स थोड़ी सी उसमें मेहनत लगती है, लेकिन सुबह ब्रश जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ब्रश करते हैं तो क्यों, क्योंकि मुंह में जो भी कहते हैं ना
6: बैक्टीरिया, 8-9 घंटे जब हमारा मुंह बंद होता है तो बैक्टीरिया हो जाते हैं, जिसके कारण से हमको सुबह ब्रश करके ही खाना होता है, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे अगर पेट में चले जाते हैं तो वो इन्फेक्शन का काम करते हैं।
7: राइट,
6: सिंपल सी बात,
7: सिंपल। और इसीलिए इसका थोड़ा सा डॉग्स के साथ क्या होता है कि उनके मुंह में लार बहुत बनती है और वो लार रह जाती है रात भर, और सुबह जब आप उनको ऐसे ही खिला देंगे तो वो लार अगर उनके पेट में जाती है तो इन्फेक्शन की वजह बनती है, जो उनके दांतों का इन्फेक्शन मसूड़ों में हो जाता है, इसलिए ब्रश सुबह जरूर कराना चाहिए, बहुत जरूरी है। और दूसरा और दूसरा ये कि कई बार क्या होता है ना कि
6: मासी बोला करो मैं आपको,
7: मैंने पढ़ा,
6: मैं उनकी माँ की उम्र थी ना, मासी बोला करो,
7: मतलब मैं तो सब कुछ बोल सकती हूँ, मुझे सब बोलने की आदत है,
6: जैसे आंटी भाभी सब,
7: नहीं आंटी नहीं,
6: भाभी
7: नॉट सूट,
6: भाभी
7: भाभी भी नहीं, कुछ और बोल सकते
6: तो क्या बोलोगी, और फूफी
7: नहीं,
6: फूफा,
7: फूफा तो वो तो कोई और बोल सकता है ना, वो
6: जी, तो क्या बोलेंगी आप मुझे,
7: दीदी सूटेबल है,
6: दीदी ठीक है ना, चलो
7: क्योंकि दीदी है तो फिर जीजू भी होंगे
6: कहीं ना कहीं, तो होंगे
7: कहीं, तो
6: कहीं ना कहीं तो होगा ही, Yes. हो गया तुम्हारा वाला?
7: हाँ, मेरा वाला
6: चलो
7: हो गया।
6: तो पेट्स को लेकर की आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, और अभी हम यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आएंगे आपकी आज की रियल मॉरल स्टोरी, जो कि हमारी बहुत ही अच्छी होती है, बच्चों के लिए होती है और बच्चों से संबंधित ही होती है। तो बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिक।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता
6: और साथ में है आरजे अंशिका।
5: नहीं बोलेंगे ऐसा, नहीं बोलेंगे, मैं हूँ आपकी आरजे समता
6: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
5: ये तो तुम बहुत अच्छे से बोलती हो, उसमें क्यों गैप कर लेती हो भाई?
6: हो जाती है मैम, देर करते नहीं देर।
5: तो अभी शुरू करते हैं फटाफट बिना देर लगाए हुए आज की मॉरल स्टोरी, जो कि हमारे बच्चों के लिए है और इससे सीख भी बहुत ही प्यारी सी मिलने वाली है। वो सीख आप बताएंगे कि क्या सीख मिली हम लोगों को।
6: ओके
5: ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि जिसमें मिंकू और चिंकू दो लोग हैं, मिंकू एंड चीकू दो लोग हैं, ठीक है। एक जंगल में चीकू बंदर और मीकू खरगोश नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन उन्हें एक जादुई पेड़ मिला जिसके

0: परी के रूप में बदल गई और मीकू की इस निस्वार्थ भावना से खुश होकर उससे कहा कि तुम कुछ वर मांगो। अपने दोस्त चीकू के रहने के लिए एक पक्का और सुरक्षित घर मांग लिया। वाह, मतलब ये भी निस्वार्थ। तो मीकू की यह भलाई देखकर परी ने चीकू को आलीशान घर दिया और मीकू की झोली को हमेशा के लिए ढेर सारे उपहारों से भर दिया, जबकि लालची चीकू का सेब सड़ गया और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।
1: यानी कि बहुत ही प्यारी सी कहानी थी सबसे पहले तो मैम, और इस कहानी से
0: जी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, समय समय पर अपनी जो किसी की मदद भी करनी चाहिए, और क्योंकि जो मदद करता है वो आगे चलकर एक ईश्वरीय वरदान की ओर चला जाता है।
1: बिल्कुल, यही हमें शिक्षा मिलती है।
0: यही हमें शिक्षा मिलती है।
1: तो इस शिक्षा तो बहुत प्यारी मिली हमें आज की स्टोरी से, और स्टोरी भी बहुत प्यारी थी। लेकिन क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि हर शिक्षा पर हर कोई अमल नहीं कर पाता, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको अमल करना है।
0: बिल्कुल,
1: जब भी कोई अच्छी चीज सुने या समझे तो उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम हर रोज सुबह सोचते हैं कि आज जागेंगे तो आज ये काम करेंगे, लेकिन हर सुबह वही अपना पुराना रूटीन
0: बिल्कुल
1: फॉलो नहीं कर पाते।
0: फॉलो नहीं कर पाते,
1: ये एक कमी होती है, ह्यूमन बीइंग की कमी होती है कि हम फॉलो नहीं कर पाते। जैसे एक्सरसाइज के लिए ही हो,
0: अरे तुम तो छोड़ ही दो अंशिका, छोड़ दो, अभी मैंने तुम्हारा रूटीन इसीलिए पूछा था कि मुझे कहीं उसमें एक्सरसाइज एंड योगा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसको ऑन एयर बोलूंगी कि अंशिका योगा और एक्सरसाइज कहाँ है।
1: वो ये है मैम कि मैं करती थी, ऐसा नहीं है मैंने इधर
0: थी
1: हाँ ऑफकोर्स थी जी। कुछ मैंने इधर रूटीन में किया है, लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि बंद हो गया, तो मैं फिर उसको रीस्टार्ट करने की सोच रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा नहीं है मैं करती हूँ, क्योंकि काफी फायदा हुआ मुझे जब मैंने अभी बीते दिनों किया। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे छोड़े हुए सिर्फ अभी एक हफ्ता ही हुआ है,
0: तो भैया उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आप अपना अच्छे से फिगर मेंटेन करना चाहती हैं मेरी तरह, तो आप बिल्कुल योग और क्या कहते हैं एक्सरसाइज को ना भूले, क्योंकि योग एक्सरसाइज करने से हमारा सिर्फ और सिर्फ फिगर मेंटेन नहीं होता है, हमारी व्यक्तित्व भी उसमें मेंटेन होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए
1: करेंगे कैसे,
0: करेंगे कैसे, क्यों
1: वो ऐसे
0: करेंगे ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा
1: बताइए।
0: नहीं नहीं आप बताओ,
1: आप बताओ,
0: नहीं आप बताओ, आपके मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा
1: मेरे मुँह से। तो भाई वो ऐसे करना है कि किसी की मधुर आवाज के साथ करना है, जैसे मैं करती थी, जब मैं करती थी तब, अभी तो मैंने एक वीक से छोड़ दिया है। और वो मधुर सी आवाज है आपकी अपनी आरजे क्षमता की। तो भाई उठाइए बढ़िया एप्लीकेशन पे या फ्रीक्वेंसी पे, जिस पे भी आप चाहें, रेडियो गार्डन पे फटाफट से ट्यून करना है ज्ञान असली रेडियो, और उसमें ट्यून करना है योगशाला,
0: योगशाला,
1: और सुनना है योगा, प्यारे प्यारे आसन, प्यारी प्यारी आवाज में, तो सुबह भी हो जाएगी मस्त और हेल्थ तो रहने वाली ही है मस्त। तो हुआ ना डबल फायदा,
0: तो डबल फायदे को आप लीजिए उसका फायदा, और हमें दे अभी इजाजत, हम मिलेंगे दोनों कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: बल्ली कित है?
5: ओ देख, वाहे गुरु।

जिक्र में शामिल। हां जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो कॉलर ट्यून गोंडा में। घड़ी में वक्त हो चला है 3:03 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजमती मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और ऑफकोर्स प्रोग्राम चल रहा है आपके फरमाइशों का कार्यक्रम, फरमाइशों का सिलसिला आज पूरे घंटे यानी कि एक घंटे जारी रहने वाला है आपके 89.6 FM पर। इंतजार किसका, उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393 3164 2 9, आई रिपीट 6 3 9 3 3 1 6 4 2 9, और भेज दीजिए अपनी फरमाइशें हमारे चैट बॉक्स में। एंड उसके अलावा अपनी फरमाइशें हम तक भेजिएगा कॉल कर करके। जो लोग हमसे शिकायत करते हैं कि मैम आप चैट बॉक्स से नहीं लेती हूँ, भैया नहीं ले सकते, रूल्स रूल्स और रूल्स कहते हैं कि कॉल स्क्रीन में आपको करना पड़ेगा कॉल। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ और रिजु जी की फरमाइश को आगे बढ़ाएंगे हम, यानी कि रिजु जी की फरमाइश से आज का शो का शुभारंभ करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं। बेहद ही खूबसूरत गाना उन्होंने फरमाइश की है, रास्त्री से दीवाना कर रहा है जिंदगी से चुरा के। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

शफाकत अली की आवाज में आप सुन रहे हैं रिजु जी की फरमाइश। जिंदगी से चुरा कर राज 3 से इमरान हाशमी पर फिल्माया गया गाना बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था। जीत गंगोली डायरेक्टर हैं ऑफ कोर्स और संजय जीनस के बोल लिखे हुए हैं फिलहाल। तो आइए चलते हैं हमारे चैट बॉक्स की ओर और उसके बाद हम चलेंगे अपनी अगली फरमाइश की तरफ। तो आज के शो में जिनके मैसेजेस आ चुके हैं पहले उनका ले लेते हैं मैसेजेस, उनके पैगाम, उनके टेक्स्ट और उनके विशेस को। तो हमारे साथ जुड़ी हुई है नाजिया अंसारी जी और उन्हीं के साथ एक और मैसेज है महेंद्र दीपन जी का फ्रॉम राजस्थान। लिख रहे हैं नमस्कार आरज्योति मैम जी, नमस्कार आपको भी, कैसे हैं आप। मुस्तफ़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम सऊदी, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। जिसने लिखा है कि थैंक्स मैम फॉर प्लेइंग माई सॉन्ग, ओके थैंक यू वेलकम एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा बहुत ही खूबसूरत गाना आपने फरमाइश की थी। मैम थोड़ा पानी पी लीजिए। अरे क्या बात है भैया, हम भी यही कहने वाले थे कि लिसनर्स आप भी थोड़ा वाटर ब्रेक ले ही लीजिए, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नव्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और उसके अलावा विकास तिवारी फ्रॉम उन्नाव जुड़े हमारे साथ। हेलो डियर आर्चियन, कैसे हो। मैं ठीक हूँ और आपके पूछने के बाद मैं और भी ज़्यादा ठीक हो गई हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। प्रमुख कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और आपका भी स्वागत करते हैं प्रमुख जी आपके अपने वाले शो कॉलर ट्यून गोंडा में। कमल नयन जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। और आज बरेली वाली मैडम आई हैं, कैसे हो मैम। अजी हम ही आएंगे आज से आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। फिलहाल क्या ख्याल है, आगे बढ़ा जाए अगर हाँ तो आइए चलते हैं हमारे कमल नयन जी की फरमाइश की तरफ रुख करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश उन्होंने कर दी है, इतना प्यारा गाना है कि इस गाने के ऊपर 3 से 4 लोगों ने रीमेक वर्जन तक बना डाला है। गाने का नाम है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, बहुत ही प्यारा। आशिकी फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं अनु मलिक के म्यूजिक के साथ, रानी मलिक का बोल, अनुराधा पॉडवाल और कुमार सानू की आवाज़।

क्या बात है भाई, कमल नयन जी ने इतने खूबसूरत गाने की फरमाइश की थी। रानी मलिक के लिखे गए बोल है, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की आवाज है, इतना खूबसूरत गाना आशिकी से आप सुन रहे थे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। एक ऐसा गाना जिसके रीमेक वर्जन आपको जगह जगह देखने को मिल जाते हैं, इवन चाहे वो आपके सीरियल्स हो, कोई सिंगर हो, कोई नया आर्टिस्ट आया हो, और हर अदा में ये गाना उतना ही खूबसूरत नजर आता है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका कॉल ट्यून गोना, आपकी अपनी फरमाइशों का कार्यक्रम जिसमें जुड़ी हुई है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजी नति, और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। एंड इसी के साथ धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फ्रॉम आवाज विकास लिख रहे हैं, उनति जी नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड नमस्ते आपको भी कि आपने अपना गाना भी भेज दिया और हमें आपका गाना मिल भी चुका है, बस थोड़ा इंतजार कीजिएगा। इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, और आप अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं कॉल करके 6393-3564-29 पर। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमारे देवी प्रसाद जी की आई है, और आज देवी प्रसाद जी ने अपने गाने के वॉल्यूम को चेंज कर दिया, ट्यून चेंज कर दिया, सीधे पहुंच गए हैं बॉलीवुड या फिर रोमांटिक सैड गानों से निकल कर सीधे साईं के दरबार में, और आप सुनिए ये प्यारा सा भजन जो हमारे देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर है। हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, क्या पता आपकी अगली फरमाइश हो।

इस भजन के बाद आइए बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ। ये तो थी हमारी फरमाइश देवी प्रसाद जी की आपके अपने डिमांडेड वाले शो कॉलोनी उनगोना में। अगली फरमाइश हमारे पास है किसी और की नहीं, सुनील कुशवाहा जी की। और क्या बात है, अगेन एक राज से फिल्म, राज फिल्म से गाना आया है, राज का पर्दा उठाते हैं और हम आपको सुनाते हैं कि अगर मैं सामने आ भी जाया करूँ तो तुम क्या करोगी, क्या करोगी। चलिए सुन लेते हैं हमारे अभिजीत जी से ही, प्लस अलका जी की आवाज में एंजॉय करते रहिए बिपाशा बासु पर फिल्माया गया गाना राज फिल्म से ये।

और इसी गाने को सुनते सुनते हम आपको एक सवाल देते हैं। सवाल ये है कि बिपाशा बासु को किस नाम से बॉलीवुड में जाना जाता है? आप मुझे टाइटल में जरूर बताइएगा कि उनको कौन सा टाइटल मिल चुका है अपनी मूवीज की वजह से, जो अब इस नाम से भी काफी ज्यादा पॉपुलर चल रही है। फिलहाल मिश्रा ऑप्टिकल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून टू यू। कैसे हैं आप?

हाँ जी भैया, तो आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं अभिजीत और अलका जी की आवाज में मैं अगर सामने आ भी जाया करूं। राज फिल्म से आपने इस गाने को एंजॉय किया और मेरा सवाल आपसे ये था कि बिपाशा बासु को बॉलीवुड में किस टाइटल के नाम से जाना जाता है। आई तो क्या हमको बताया जा रहा है काली बिल्ली? नहीं, काली बिल्ली के नाम से नहीं जाना जाता है, उनको जाना जाता है हॉरर क्वीन के नाम से, क्योंकि उनके नाम पर इतनी सारी फिल्में हैं जो हॉरर है, हॉन्टेड है, और यहाँ तक कि कई फिल्मों में डर भी चुकी है। इसके बाद भी उनकी जो एक्टिंग होती है वो इतनी उम्दा होती है हॉरर फिल्मों के अंदर कि उन्हें लोग अब हॉरर क्वीन के नाम से जानने लगे हैं। ये टाइटल उन्हें खुद उनकी फिल्मों ने दिलाया है। अगर आपको ये बात पता थी तो चैट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा गाना बजी कि ना बजी? बिल्कुल बजेगा मुस्तफ़ा जी। कैसे सवाल कर लेते हैं आप हमसे? थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि सब्र का फल कॉलरट्यून गोना में आपके अपने गाने होते हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। अगली फरमाइश किसी और की नहीं, हमारे रईस साहब की आई है और बहुत ही प्यारा सा गाना उन्होंने फरमाइश कर दी है, हम तुम एक कमरे में बंद हो। ये वो गाना है जो हम अपने बचपन में बड़ा सुना करते थे क्योंकि बहुत मजा आया करता था। फिलहाल आइए अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए कॉलर ट्यून में बेहद ही स्पेशल गाने को एंजॉय करते हैं और हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

बॉबी फिल्म से आप सुन रहे थे हम तुम एक कमरे में बंद हो, रही साहब की फरमाइश थी। और हमारी नाजिया जी कह रही हैं, मैम आप भी छोटी थी। ना ना ना, आपको मैं तो अभी भी छोटी ही हूँ। हालांकि वो अलग बात है कि आप लोग मुझे इतना छोटा समझने लगे हैं कि जो लंबे लंबे लोग हैं वो कहते हैं और कहाँ जा रहे हो, 2.5 फीट के डोरेमोन। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, बढ़ते हैं और हम चलेंगे अपनी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी सभिया जी की है। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, क्या बात है। अक्षय कुमार पर फिल्माया गया गाना कुमार और साधना की आवाज़ में 90s की यादें तरोताज़ा कर देती हैं। कुछ ऐसे गाने, बेहद ही खूबसूरत गाने, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे अगले गाने पर।

सबिया जी की फरमाइश थी, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। कुमार जी और साधना की आवाज़ में आपने इस 90s के गाने को इंजॉय किया, जो कि आपके अक्षय कुमार और अश्विनी जी के ऊपर फिल्माया गया था। नदीम श्रवण का म्यूजिक और बोल लिखे थे हमारे समीर साहब ने। 90s के मेनली गानों के जो बोल हैं वो आपको समीर साहब के द्वारा ही मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आप थोड़े से पीछे जाते हैं, जहां पर आपको मुकेश कुमार और किशोर दा सुनाई पड़ते हैं, वहां अगर आप लिरिक्स की बात करोगे तो मेनली आपको आनंद बख्शी का नाम मिलेगा। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे गाने की तरफ, हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हुए, और हम चलेंगे अपने धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश को ट्यून करने के लिए। आजकल का क्या प्रोग्राम है भैया? मेरा आज का प्रोग्राम तो सेटल है कि कॉलर ट्यून गुना करना है, आपसे ढेरों बातें करनी है, लेकिन आपने मेरा प्रोग्राम नहीं, अजय देवगन जी का प्रोग्राम पूछा है, तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं उनका क्या प्रोग्राम है। इसके बाद हम चलेंगे अपने सऊदी की तरफ, यानी कि मुस्तफा जी की फरमाइश को ट्यून करने के लिए।

ओके, यहाँ पर हो चुकी है पिटाई। किसकी आपको पता है? नहीं पता है, चलिए हमें बता दें, जॉनी लीवर की पिटाई हो चुकी है, क्योंकि भाई काजोल जी गुस्सा में आ चुकी हैं कि पोस्ट ऑफिस से जो पैगाम उनके लिए आया उस पर तो किसी और का नाम था। अभिजीत जी, सुदेश भोसले, शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति, ईश्वरी, श्रद्धा पंडित, श्वेता पंडित, इतने सारे लोगों ने मिलकर इस खूबसूरत से नगमे में अपनी आवाज़ दी थी। आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का गाना था ये, उनका संगीत था। और ऑफ कोर्स आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अब हम बढ़ेंगे अपने सऊदी की तरफ। तो भैया और बहनों, बाबू और बबनी, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि यहाँ से हमारी फ्लाइट उड़ के सीधा सऊदी पहुँचेगी और वहाँ पर जाकर हम ट्यून करेंगे अपने मुस्तफा जी की फरमाइश, आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे कॉलर ट्यून गोंडा, आपके अपने रेडियो कैनस 89.6 FM पर।

मुस्तफा जी की फरमाइश, लता जी की आवाज, शैलेंद्र के बोल और ऑफ कोर्स आपके एस टी वर्मन जी का म्यूजिक। इतना खूबसूरत गाना इतने खूबसूरत आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया है। और हमारी नाजिया जी कह रही हैं कि मरना भी है जीना भी है, क्या बात है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि जीता अक्सर वही है जिसने मौत को देखा हो और मरता वही है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। फिलहाल आइए चलते हैं मेरे इस टंग ट्विस्टर में, मेरे इन पहेलियों में थोड़ा गोल गोल आता तक घूमते रहिए। हम दूसरा गाना प्ले करके आते हैं बिकॉज हमारी गुलफशा सिद्दीकी जी इंतजार गई। गुलफशा सिद्दीकी जी एक्चुअली मुंबई से दिल्ली गई, मुंबई से गोवा भी गए और हम कहीं नहीं गए, हम गोंडा के गोंडा में ही रह गए, बस घर से स्टूडियो चले आए हैं भैया। फिलहाल आप सुनिए कॉलर ट्यून गोंडा, ये है आपका अपना रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अपनी आर्शी मौजूद हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं हमारी गुलफशा सिद्दीकी जी की फरमाइश।

भैया जूही चावला की है इस लाइन को कि कभी ना मिला सजना, वहाँ भी ना मिला सजना, यहाँ भी ना मिला सजना। हमारे सजना को ढूंढने के लिए चैट बॉक्स के सारे प्राणी निकल चुके हैं और सब लोग जूही चावला के लिए सजना ढूंढने में निकल गए। फिलहाल के लिए बता दें, गुलाबता सिद्दीकी जी की फरमाइश थी ये, मुंबई से गई दिल्ली, बॉम्बे से गई पूना। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और आप इंजॉय करने जा रहे हैं अजय मिश्रा जी की फरमाइश, राजा हिंदुस्तानी फिल्म से कोई भी गाना। तो हम आपके लिए पेश करते हैं वो सॉन्ग जो आपको बेहद ही पसंद आने वाला है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। आय हाय हाय, क्या ही खूबसूरत गाना है। अलका जी और उदित जी की आवाज़ में राजा हिंदुस्तानी से इंजॉय करते रहिए। आप सुन रहे कॉल ट्यून गोंडा।

उदित जी और अलका जी की आवाज में आपने एंजॉय कर लिया अजय मिश्रा जी की फरमाइश को राजा हिंदुस्तानी से, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। और इसी के साथ हम चलेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में लिखा गया है बहुत बहुत बहुत नाइस सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। एंड सऊदी से हमें इमोजीज मिल चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, इसके बाद अब हम चलेंगे अगली फरमाइश की तरफ जो कि हमारी उत्तराखंड से आई है, तो फ्लाइट को वापस लाते हैं, उत्तराखंड में ड्रॉप करते हैं और आपको सुनाते हैं हम रीना शर्मा जी की फरमाइश। बहुत ही प्यारा सा गाना, और रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, उमंग को। तो आइए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के हमारे आयान जी, मुमताज अंसारी जी, रमेश कुमार फ्रॉम महाराष्ट्र, विकास तिवारी जी आगरा से, राजू जी और शारदा जी फ्रॉम मथुरा से।

जी हाँ, मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में सुन रहे थे रिकना शर्मा जी की फरमाइश रो का कई बार मैंने दिल की उमंग को। और इसी के साथ हमारे विकास जी पूछ रहे, बताओ उदित नारायण जी कहाँ के रहने वाले हैं? उदित नारायण जी इंडिया के नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा इंडिया के हैं, वो तो बिहार के हैं, उनका जन्म बिहार में हुआ था। अब ये इंडिया में आता है ये अलग बात है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और अगला गाना हमारे अयान जी का है, वो गाना बहुत ही प्यारा है। और अब आपको आने वाला है थोड़ा सा मजा, क्योंकि आप करने वाले हैं थोड़ा सा डिस्को वाला डांस। बिकॉज ऋतिक रोशन पेश है आपके लिए लय करके दिल ना दिया, हमारे बचपन की सुपर हीरो वाली फिल्म जिसको हमने एंजॉय बहुत किया।

और यहीं से अपनी स्पीड को करना पड़ेगा डबल, क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें हैं हमारे पास और वक्त हमें हमेशा की तरह धोखा देने वाला है। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगली गाने की तरफ और हम सुनेंगे हमारे मुमताज जी की फरमाइश, तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तो आइए एंजॉय करते हैं, अभी तक आप एंजॉय कर रहे थे अयान जी की फरमाइश, दिल ना दिया दिल ना लिया, क्रिश फिल्म से। स्टे ट्यून्ड।

मुमताज अंसारी जी की फरमाइश को आप एंजॉय कर रहे थे और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश जो कि हमारे रमेश कुमार जी की है फ्रॉम महाराष्ट्र, और उन्होंने फरमाइश की है बेवफा फिल्म से चूड़ी मजा ना देगी कंगन मजा ना देगा। तो भैया क्या देगा इस सावन में मजा है पायल? हाँ फिलहाल के लिए पायल भी अच्छी होती है, घूंघू की आवाज़ मुझे बड़ी पसंद है। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, हमारी अगली फरमाइश की तरफ। विकास तिवारी जी की फरमाइश आ चुकी है हमारे पास और वो सुनना चाहते हैं मितवा भूल ना जाना। आइए, आपको कैसे भूल सकते हैं, फिलहाल के लिए गाना बहुत ही प्यारा है, एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी गोंडा विद राज 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर।

आपने एंजॉय किया था आगरा से राजू जी की फरमाइश, और वक्त है अगली फरमाइश का, जो कि माई शारदा जी की है। शेषनाग फिल्म से आप एंजॉय करें छेड़ मिलन के गीत, और मुझे लगता है कि आज माई दो फरमाइशें रह जाने वाली हैं। फिलहाल के लिए मैं माफी चाहेंगी, पर कोशिश करूंगी जाने से पहले कंप्लीट करने की।

शारदा जी के गाने को यहीं पर रोकने के लिए माफी चाहेंगे। शेषनाग फिल्म से आप सुन रहे थे छेड़ मिलन के गीत, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश का, जो कि हमारे रामदेव तिवारी जी की है। सुनना चाहते हैं घर आजा परदेसी, और इसी के साथ घड़ी ने भी इशारा कर दिया कि वक्त है आपसे विदा लेने का। फिलहाल के लिए आपसे मैं माफ़ी चाहूंगी मंजू जी, आपके गाने को मैं आज प्ले नहीं कर पाई किसी कारण की वजह से। कारण बस यही था कि मेरे पास वक्त नहीं था। फिलहाल मैं कल आपका गाना ज़रूर से प्ले करूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। एंड इसके अलावा आप लोगों के मैसेजेस बहुत सारे हैं, नाजिया जी, विकास जी एंड क्रिकेट लवर मैम, थोड़ा सा प्लीज़ प्ले कर देना। माफ़ी चाहूंगी, आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन कल मैं ज़रूर प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन हाँ, ये गाना मैं आपको डेडिकेट करते हुए जाती हूँ, मेरे सारे लिसनर्स जिन्होंने आज अपनी फरमाइश हम तक नहीं भेजी है, उन सभी को डेडिकेटेड। घर आजा परदेसी फ्रॉम डी डी एल जे। बाय बाय, टेक केयर। आज का शो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुबह हिट सॉन्ग्स वाला शो ज्ञान स्थली बेस।
2: एक बार पता है मुझे क्या बोलती है?
3: मैं उसे नहीं छोड़ सकती।
2: और मुझे
3: देख, शादी तो मैं उसी से करूंगी, लेकिन हाँ, अगर तू मुझे इतना ही प्यार करता है तो कभी कभी मैं तुझसे भी मिल लूंगी।

तुमने, मुझे किसने लूटा नहीं। मैं किसी कुत्ते का झूठा खा सकता हूँ, जिस्म का झूठा नहीं, जिस्म का झूठा नहीं।

आज किसे होर दी किस्मत है जो कल मेरी किस्मत।

0: ड्राइवर रख लेंगे मैनू, बोल देने ड्राइवर तो रख ले यार। जे तेन खुश रखूगा मैं बहुत ज्यादा खुशी होगी, पर जे तेन दुखी रखूगा मैं होर भी ज्यादा खुशी होगी।
1: हो तेरे नाल प्यार हाय मर दे दम तक, हो तेरे

मुझे कोई रोकने वाले की जरूरत थी बस उस वक्त। थैंक यू माय एंजल।

0: Sir, there is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss.
1: Doctor Ujjav को heel attended. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
0: Sir, there is an emergency case of Mehr Garewal. Accident है.
1: क्या नंबर है?
0: Mehr Garewal.
1: मुझे ले चलो.
0: Come.

फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।

रहते हैं और सारी रात रोते रहते हैं, रुलाते रहते हैं, धक्के लिखे हैं कर्मों में सो खाते रहते हैं, ना कोई हंसाने वाला ना नचाने वाला हमको, तो खुद का हाथ पकड़ के खुद को नचाते रहते हैं हम इतने

0: तेरे जैसे लोग जानी आते रहते हैं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9860 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

तुम्हें जो भी कहना है कह दो, इतना क्यों डरते हो? तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो? मैं अब तो चला गया हूं, अब तो जवाब दो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो?

0: हेलो। एक्सक्यूज मी, डू यू नो हिम?
1: व्हाट डू यू मीन? ही इज माय फियांसे।
0: व्हाट? यू आर सो लकी। एक्चुअली इन्होंने ही मेरी मदद की थी व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड माय बॉयफ्रेंड लेफ्ट मी अलोन। ही वाज द वन हु हेल्प्ड मी थ्रू ऑल दिस। ही इज सच अ नाइस गाय। You're so lucky to have him.

पागल कर देती है और बेहिसाब कर देती है, वो नकाब वालों को बेनकाब कर देती है। मुझे छोड़ने से पहले ये बात याद रखना, एक गलत फहमी बंदे की जिंदगी खराब कर देती है।

0: जल्दी चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम आ रही हो?
1: मैं जाऊं।
0: लगता है रूम में रह गए।

दुआ लेंगे। मुझे लगता है कि एवी बदुआ लेंगे, अपने साफ हाथ गंदे करा लेंगे। मुझे छोड़ के जाने वाले, जा छोड़ दिया तुझको।

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सारी मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती है।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9876 9819176। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सभी का स्वागत है आपके विज्ञान शाला में, जहाँ लर्निंग क्यूरोसिटी की ब्योर होती है, यानी कि जिज्ञासा और ज्ञान दोनों मिलके बनाते हैं विज्ञान। जी हाँ, आज विज्ञान के जो कहते ना शाला, वो पहले आपको थोड़ा सतर्क करने वाला है, यानी कि इबोला वायरस की जो कहते ना कि संख्या है, वो एज कह सकते हैं कि रोग करने के रूप में बढ़ती जा रही है, यानी कि इबोला वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और दुख की बात यह है कि इससे मरने वालों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। और ख़ास जो मतलब बात मैं आपको बताऊं, तो वो यही है कि हम सभी को थोड़ा सा मतलब इस समय जो हालात चल रहे हैं, उसमें जैसे बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण है वो बड़ी आसानी से होता है। तो इस समय तो हमें ज़्यादा अपने आप को क्या करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। तो चलिए आगे बात करेंगे, थोड़ा बहुत इबोला वायरस के बारे में भी बता दूंगी मैं आपको। लेकिन देखिए, जैसा कि नाम है इसका, ये बिना बोले आता है, इबोला। यस, कभी भी किसी भी समय आके हमें ऐसे थप्पा मार देगा और हमें परेशान करके चलता बनेगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को लेके हमें थोड़ा सा और जो कहते हैं ना कि सतर्क होना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कांगो में अभी जल्दी जो है इबोला का जो कहर है वो बढ़ पा रहा है, और मृतकों की संख्या 2000 से ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 2500 पहुँच रही है, और तेज़ी से इसका कहर जो है वो बढ़ रहा है। 16 अगस्त तक 4945 मामलों की पुष्टि हो गई थी वहाँ, ठीक है। संक्रमण का जो सबसे ज़्यादा असर है वो इटूरी प्रांत में देखा जा रहा है, और डीआर कांगो का जो 17वां और अब तक का सबसे बड़ा इबोला प्रकोप माना जा रहा है। मौतों का दर भी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि बीमारी जो हो रही है उसमें पहचान नहीं हो पा रही, मतलब स्टार्टिंग में लग नहीं रहा कि वायरस के मतलब लक्षण है, लक्षण नहीं पहचान पा रहे हैं लोग वहाँ पे। और मरीजों का जो कहते हैं ना इलाज का समय, वो नहीं मिल पा रहा है। वैक्सीन और इलाज, ये दोनों ही बड़ी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि जब आपके बॉडी में संक्रमण ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय मतलब बचाना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे कह रहे हैं कि कांगो से बगल में युगांडा में भी इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा विदेश यात्रा वगैरह आप करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, मास्क वगैरह वियर करें। ऐसा नहीं है कि वायरस जब आके हमें बताए तभी हम इस बात पे गौर फरमाएंगे। और अभी जैसे कि अभी आपको पता है, एक दिन बाद हम लोग वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी मनाने वाले हैं, तो भाई मच्छर भी कम नहीं है, मच्छर बड़ी बीमारियाँ इधर उधर फैलाता है, तो मच्छर के बारे में जानेंगे। लेकिन मच्छर जो है वो अलग अलग का होता है, आज ये बताऊंगी मैं आपको मच्छर की प्रजातियां कौन कौन सी हैं। हमें ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है यार, डेंगू कौन से वाले मच्छर से होता है, और चिकनगुनिया कौन से वाले से होते हैं, मलेरिया कौन से वाले से होता है, इनकी पहचान कैसे करें, घर में मच्छर है तो अगर मतलब हम उसको कैसे बचा सकें, घर में कुछ देसी नुस्खे कैसे कर सकते हैं। तो आज बात तो मच्छरों पर होगी, और मच्छरों पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक दो नहीं कई बीमारियों का संक्रमण करता है मच्छर, तो ऐसे जीव के बारे में स्टडी करना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मच्छर से ही जुड़ा एक गाना सुन लेते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज विज्ञानशाला में आरजे बीना आपके साथ लाइव है, वैसे तो हमेशा मैं ही लाइव होती हूँ विज्ञानशाला में, लेकिन आज कुछ खास लेके आई हूँ, यानी कि मच्छरों के बारे में बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल उसकी प्रजाति कहाँ से बनी, कैसे बनी, तो सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन पहले एक गाना, ठीक है, जो कि मेरा फेवरेट है एंड आप लोग का भी।

लवेरिया हुआ, ये गया यारो इसको लवेरिया हुआ, ये तो बहुत सुना हम लोगों ने, लेकिन हम ये तो सुनना भूल ही जाते हैं कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे लिए हमारा अपना यानी कि मच्छर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भाई वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 तारीख को मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं मच्छर ने कुछ तो बड़े काम किए ही होंगे ना, जिस वजह से आज उसका मतलब इतना सेलिब्रेशन वेशन हो रहा है। वैसे बड़े काम छोड़िए, वो ख़तरनाक काम करने के लिए जाना मना है, तो चलिए आज थोड़ा जानते हैं मच्छर के बारे में, ठीक है, कि मच्छर क्या है, कैसे है, क्यों आया और इसके पीछे जो कहते हैं ना कि इतनी डिस्कशन क्यों है, क्यों इतना मतलब इसके पीछे हम लोग परेशान हैं, तो सारी मॉस्किटो से जुड़ी जो बायोलॉजी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मच्छर जो है वो एक जो ऐसा जानवर है जो छोटे छोटे जीवों में अपना जो जीवन है वो पूरा करता है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस करता है। इसका एक जीवन चक्र होता है और उसमें ये अलग अलग चरण में जीता है, यानी कि सबसे पहले मच्छर एक अंडे के रूप में पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, फिर एक एडल्ट मच्छर बन के तैयार होता है। पानी जहाँ भी जमा होगा वहाँ पर इसके प्यूपा लार्वा आपको आराम से मिल जाएंगे, खुली जगह में अगर आपको पानी दिख रहा है, ठीक है, और यही इसकी जीवन चक्र होता है बेसिकली। अब मॉस्किटो को अगर देखा जाए तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखना ही मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अंडे की बात कर ले, तो अंडा जो होता है मच्छर का वो जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो देती है, और ये पानी में रुके हुए पानी में या ऐसी जगह जहाँ से मतलब कोई छोटे मोटे कीड़े वगैरह इसको ना खा सके, तो ऐसी सुरक्षित जगह में ही अपने अंडों को निकालती है और टेम्परेचर भी देखती है, ऑक्सीजन का लेवल भी देखती है, तब जाके वो वहाँ पे अंडे देती है। कुछ ऐसे भी मच्छर हैं जो बहते हुए पानी में भी अंडे दे सकते हैं, हमने जहाँ तक ये पढ़ा है कि मच्छर हमेशा रुके हुए पानी में अंडे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो बहते पानी में भी दे सकती हैं। और एनोफिलीज नाम का जो मच्छर है वो पानी के अकॉर्डिंग मच्छर जो अंडे है वो देता है, यानी कि उसके मच्छर की अंडे की जो शेप है वो अलग अलग रहती है, जैसा पानी होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप होगी, ऐसा क्यों ये तो यही जाने। इसके अलावा हम कुछ और मच्छरों की बात कर लें, तो सबसे पहले तो मैं मच्छरों के टाइप की बात करती हूँ, कौन कौन से टाइप के मच्छर होते हैं। और मच्छर आपको पता है इंसेक्ट है, और इंसेक्ट है तो अर्थ्रोपोडा से आता है। अर्थ्रोपोडा एक बड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि कक्ष है किंगडम का, और किंगडम यानी कि एनिमल किंगडम का एक ऐसी फाइलम है जिसमें सब छोटे छोटे जो कीटाणु हैं, कीटाणु नहीं कह सकते इनको तो हम जीव कह सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टर्म है, तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले उनके लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो चलिए मॉस्किटो की टाइप्स की बात करते हैं, और इनसे होने वाली बीमारियों की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे पते की चीज़ें उनको हम जानेंगे। तो जो ज़्यादातर कॉमन वैरायटी है वो है एक एडीज, दूसरा है एनोफिलीज और क्यूलेक्स। ये तीन मेन इनकी जो प्रजातियां हैं जो बीमार करती हैं इंसानों को, वैसे तो और भी हैं लेकिन वो अलग अलग जीवों को बीमार करती हैं, तो हम अपने बारे में ज़्यादा पहले फिक्र करेंगे, दूसरे की बाद में करेंगे। तो एडीज मच्छर की बात कर लें, तो सबसे पहले तो इनके शरीर को देखें, अगर एडीज मच्छर आपके हाथ पे बैठेगा तो आपको उसको देखना है ध्यान से और पहचानना है। उसकी बॉडी जो है डार्क होती है, बहुत काली होती है, ठीक है, और उस पर क्लियर सफ़ेद रंग की जो स्ट्राइप्स ऐसे पट्टियाँ टाइप की बनी होती हैं, ठीक है, और ये येलो फीवर कॉज करता है, और इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद ऐसे स्ट्राइप्स सी बनी होती है, पट्टी जैसी बनी होती है। ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिखेगी, अगर नहीं देखेंगे तो फिर नहीं दिखेगी। रहने की जगह अगर बताऊँ तो ये ज़्यादातर जो है एक्टिव होता है डे टाइम में, यानी कि दिन के समय में इधर उधर घूमते हुए काटता है, और रात के समय मस्त चिल करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये भाई स्मॉल कंटेनर, यानी कि कहीं भी पानी किसी मतलब ऐसी जगह जहां कवर हो, आसपास लोग उसको कोई परेशान ना करें, ठीक है, जैसे फ्लावर पॉट में है, मग्गे में पानी है, बकेट में पानी है, तो मस्त अपना वहां रिप्रोडक्शन कर लेता है,
ठीक है, डोमेस्टिक वाटर जो घर घरेलू पानी है उसमें आराम से ये अपना रिप्रोडक्शन करता है। ये बहुत क्वालिटी वालिटी नहीं चेक करता है। बीमारियां भाई सबसे खतरनाक है यार ये डेंगू एडीज से फैला लो, चिकनगुनिया दे दो एडीज को ये भी फैला देगा, जीका वायरस नाम का वायरस ये भी एडीज मच्छर को दे दो भाई मैं ले जाके इधर उधर फैला दूंगा, येलो फीवर इसे भी हमारे एडीज मच्छर को दे दीजिए ये फैला के रख देंगे। तो एडीज जैसा कि नाम है इसका खतरनाक सा, वैसे ही ये चार बड़ी बड़ी बीमारियों को फैलाता है जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर। अब चलते हैं दूसरे मच्छर के पास, एनोफिलीज। ये भी भाई किसी से कम नहीं है, बॉडी इनकी ब्राउन कलर की है, बॉडी तेरी मक्खन जैसी, नहीं नहीं नहीं भाई मक्खन जैसी बिल्कुल नहीं है, ब्राउन कलर की बॉडी है, डार्क ग्रे कलर के छोटे छोटे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। और हैबिटेट अगर इनका देखें, इनके रहने की जगह देखें, तो ये ज्यादा एक्टिव जो है इनको रात में हम देख सकते हैं, रात के समय ये एक्टिव होकर पूरे घर में घूमते मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और ये साफ सुथरे फ्रेश पानी में, जैसे कि तालाब का बहता हुआ पानी है और मार्शेज हैं और जो चावल के खेत हैं जहाँ पानी आपने भरा है, मस्त जाके वहाँ अंडे देता है, ठीक है। हल्का फुल्का पानी बह रहा है तो ये अंडे मस्त दे देगा। बड़ी बीमारियाँ कॉज करता है जैसे कि लिम्फेटिक फाइलेरेसिस और मलेरिया, जैसा कि नाम इसका लंबा चौड़ा है वैसे बीमारियां भी लंबी चौड़ी कॉज करता है। लिम्फेटिक फाइलेरेसिस ये ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक चलती है, कहते हैं कि 14-15 साल तक एक इंसान को अगर हो जाए तो ये आपके बॉडी से सही नहीं होती, ठीक है। और दूसरी मलेरिया, मलेरिया के बारे में तो अभी बात हो चुकी है, ये एनोफिलीज से होता है। आ जाते हैं तीसरे मच्छर के पास जो कि अपने आप में भी भौकाली है, इसकी भी बॉडी ब्राउन से ग्रे कलर में होती है, मीडियम साइज का मच्छर है, कॉमनली घर में जो दिखता है आपको ना वो क्यूलेक्स है, जो आपके घर में नाचता हुआ भिनभिनाता हुआ अभी आजकल दिख रहा है ना हल्का ग्रेइश कलर वाला, वो क्यूलेक्स है। ये ज्यादातर रात में घूमते हैं, दिन के समय कुछ नहीं करते हैं, मस्त सोते हैं, ठीक है। कहां जो गंदी नालियां होती हैं, जहां गंदा पानी दिखा वहीं इनका सेप्टिक टैंक्स होते हैं, मतलब कितनी भी गंदौरी जगह होंगी वहां जाके ये अपने अंडे दे देगा मस्त। पता नहीं क्या इसका सीन है, मेरे को समझ ही नहीं आया, ठीक है। ये वेस्ट नील वायरस को ट्रांसपोर्ट करता है, इधर उधर ले जाता है। इसके अलावा जापानीज एलिफेंटियसिस नाम की बीमारी को कॉज करता है, मतलब ये फैलाता नहीं है, ये जिनसे ये बीमारियां होती उनको ले जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया से बीमारी हो रही तो उसको अपने मुंह में ले जाएगा, दूसरे की बॉडी में जाके छोड़ देगा, खुद इसको बीमारी नहीं होगी, ये दूसरों को बीमारियां फैलाने वाले जो जीव होते हैं उनको इधर उधर पहुंचाता है, यानी कि ये वेक्टर है। वेक्टर मतलब कह सकते हैं कि कारक, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है लेके जा रहा है, नहीं नहीं जिसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं हो रही, ये लेके जा रहा है बस, ये वेक्टर है, माध्यम है, बाकी जो बीमारी है वो आपको बैक्टीरिया वायरस या फिर प्रोटोजोआ वगैरह से हो रही है, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी, मच्छरों से जुड़ी जानकारी मिलने पे तो मतलब अपने आप में ही भौकाल आ जाता है। फिलहाल ये बताइए कि आपके आसपास मच्छर दिख रहा है तो भाई मारिए मत, ठीक है। मच्छर को पहले ध्यान से देखिए, पहचानिए कौन सा वाला है, ऐसा तो नहीं है एनफ्लीज है तो मार डालिए, दूर ले जाके मारिए, अपने शरीर पे मत मारिए। अगर क्यूलेक्स है तो जाने दीजिए, ज़्यादा बीमारियाँ इधर अपने कॉज नहीं करता है, लेकिन हाँ कॉज कर भी सकता है, मच्छर हमेशा ही खतरनाक है, मच्छर पाले नहीं जा सकते हैं, तो भाई घर में आपको मतलब मच्छरों से बचने के लिए छोटे मोटे उपाय जो हैं वो करने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए कुछ बचाव की बात भी कर लेंगे मच्छर से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा आपको म्यूजिकल ब्रेक की ओर ले चलते हैं। अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश में मलेरिया बीमारी मतलब ऐसी फैली थी कि क्या बताऊं। जैसे मलेरिया के लक्षणों को बता दूं, बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और शरीर में दर्द, कुछ गंभीर मामले ऐसे भी आते हैं जिसमें मलेरिया की वजह से मृत्यु भी हो जाती है जब इग्नोर होती है बीमारी। दूसरा चिकनगुनिया, ये एडीज मच्छर से होता है जैसा कि पहले मैंने बताया, इसमें बुखार होता है, जोड़ों का दर्द होता है, यानी कि इसको कहेंगे बोन ब्रेकिंग फीवर, बहुत हड्डी तोड़ बुखार रहता है इसका, ठीक है, बहुत दर्द होता है शरीर में, बहुत दर्द रहेगा। अगला है जापानी इन्फ्लुएंसिस, ये जो है वायरस वाली बीमारी है, ये भारत में हमारे देश में जितने भी गांव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे देखने को मिलती है, क्यूलेक्स मच्छर से होती है, ये मस्तिष्क में सूजन कर देता है, बड़ा खतरनाक होती है बीमारी, बड़ी खतरनाक है ये, एक बार ब्रेन में सूजन हो गई ना तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में न्यूरो से जुड़ी बीमारियाँ आपको और लगने वाली हैं।
तो ये खतरनाक है, ठीक है। तो इसलिए गांव वगैरह में अगर मच्छर हैं तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि क्यूलेक्स ऐसा है जो कॉमनली हमको दिखता है, ठीक है। हमारे घरों में जो दिखने वाला मच्छर है वो मेनली क्यूलेक्स ही है, ठीक है। अगला जीका वायरस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये एडीज मच्छर से फैलता है, इसमें भी हल्का बुखार होता है, दाने हो जाते हैं शरीर में, जोड़ों में दर्द होता है, और अगर गर्भवती महिला को है तो उसके बच्चे को भी हो जाएगा। ये दो कुछ चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आपको एक गाना सुनाती हूँ, फिर आगे ले चलती हूँ, और एक छोटे से कहते ना कि जर्नी पर जहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। लेट्स एंजॉय द ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द बॉलीवुड।

अब बात आ जाती है मच्छरों से बचने की। ये तो वैरायटीज हो गई मच्छरों की। अब सबसे पहले तो बचने से पहले हम मच्छरों को बुलाएं ही ना अगर अपने आसपास, तो सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो सबसे पहली रोकथाम यही है कि मच्छरों को आसपास रिप्रोडक्शन ही ना करने दी, यानी कि वो अपना जो कहते हैं ना कि प्रजनन की प्रक्रिया है वो ना कर पाएं। और प्रजनन को रोकने के लिए आपको आसपास रुके हुए जो पानी के स्रोत हैं, स्पेशली आपके घर पे, छत पे, अब तो बारिश का सीज़न चल रहा है, छत पे पानी जगह जगह इकट्ठा हो रहा होगा। इवन मैं आपको बता दूँ, छत पे कोई छोटा मोटा गड्ढा भी, उसमें भी पानी है ना, तो वहाँ भी मच्छर अपने अंडों को दे सकता है। तो मतलब फूलों के गमले हैं, नालियाँ हैं, पक्षियों के स्नान का स्थान है, वो सभी जो है उनको हटा दें। और आप, आज बारिश का सीज़न है, पक्षियों को पानी मिल जाएगा, तो बिल्कुल पानी मत रखिए, क्योंकि मच्छर जो हैं अभी बहुत तेज़ी से अपना जो रिप्रोडक्शन का काम है वो बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और मच्छर को भगाने वाली जो दवाइयां हैं उनका प्रयोग करें, घर के बाहर छिड़काव कर दें, थोड़ा केरोसिन वगैरह नाली वगैरह में डाल दें, जिससे कि ऊपर जैसे वो तैरेगा तो उस पर मच्छर अंडे नहीं दे पाएगा उसकी खुशबू से, ठीक है। और DEET है, पिकारिडिन है, या लेमन यूक्रेलिक्टस तेल होता है, EPA अनुमोदित एक तेल है जो कि मच्छरों को भगाने वाली दवाइयों में से एक है, इसका छिड़काव करें, ठीक है। इसके अलावा अगर मच्छर हैं, बहुत है, आप उसमें नहीं कुछ कर सकते, तो भाई अपने कपड़े ठीक ठाक पहने, मतलब फुल स्लीव के कपड़े पहन के घर में रहें अगर एक जगह बैठने वाला काम कर रहे हैं। और बचने के लिए लंबी आस्तीन के कपड़े तो पहन ही रहे हैं, पैंट मोज़े ये सब पहने, और हो सके तो घर में सुबह शाम, मतलब आप ये कपूर है, नीम की पत्तियाँ, इनको थोड़ा धुआं इनका कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रेगुलर हम लोग कॉयल ये सब वगैरह यूज़ करेंगे तो वो सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। इसके अलावा घर में जालियाँ ज़रूर लगा के रखें, खिड़कियों को ऐसे खुला मत रखें, हर जगह आपकी जालियाँ लगी होनी चाहिए जिससे मच्छर अंदर आ ही ना पाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो मच्छर का जो एरिया है वो घर के बाहर ही होता है, और हम बार बार अगर खुले स्थान या ऐसे कोई सोर्स रखेंगे जहाँ से मच्छर आ पाएंगे तो वो डेफिनेटली घर में आएंगे और दरवाज़ों से और कहीं से भी आके हमारे यहाँ मतलब जो प्रकोप अपना फैलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मच्छरों वाली जो गाड़ियाँ आती हैं धुएँ वाली, उन सब से मतलब धुआं वगैरह, तो मतलब ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप शाम के समय, और मतलब शाम को ज़्यादा मच्छर एक्टिव, जैसा कि मैंने क्या बताया कि मच्छरों का जो एक्टिव काल कौन सा है वो शाम वाला ही होता है, तो हम शाम के समय ही नीम की पत्तियों को सुखा के अपना रख लें। मतलब कैसे भी नहीं है आपके पास, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो कहें क्या करें, तो नीम की पत्तियों को न्यूज़पेपर में थोड़ा सा प्रेस करके रख दीजिए और उसे थोड़ी देर, मतलब एक दो दिन के लिए रखिए, फिर दूसरे तीसरे दिन जब वो थोड़ा पानी उसका कम हो जाए, प्रेस से जो जिससे कपड़े प्रेस करते हैं उसको ऐसे पेपर पर रख के खूब बढ़िया से प्रेस कर दीजिए, सूख जाएंगी पत्तियाँ सारी। तो नीम की पत्तियाँ हैं, कपूर है, लौंग है, इन सबको एक साथ आप जला दीजिए, ठीक है। इसका धुआं कर दीजिए, धुआं मतलब जैसे आसपास जो भी उपली या कुछ भी दिख जाए उस पर कर दीजिए, तो इससे थोड़ा प्योरीफिकेशन भी होगा हवा का और जो मच्छर है वो भी घर से बाहर निकल जाएंगे। लग रहा है कि घर में बहुत मच्छर हैं, लाइट बंद कर दीजिए, बाहर की लाइट जला दीजिए, ये धुआं कर दीजिए, सारे मच्छर बाहर भाग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, और अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए करनी चाहिए, क्योंकि एक बार बीमार होने के बाद डॉक्टरों के चक्कर लगाना, प्लेटलेट्स घटना और फिर इसको बढ़ाने के लिए दुनिया भर की मशक्कत करना, देखिए तो कहते हैं ना कि हम रोकथाम पहले कर लें, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, मतलब क्योर कराने से अच्छा है कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, सब कुछ कर लें, ठीक है। बारिश का मौसम है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए आजकल, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या कहते हैं, देखिए पहचान तो मैंने बता ही दी अलग अलग मच्छर की, तो आप पहचान भी सकते हैं, पहचान के कर भी क्या लेंगे कि अगर आपके घर में मच्छर आ गया और आपको काट के चला गया। बात तो ये सोचनी है ना कि ये जो मतलब मच्छर अगर आ गया तो आप कर क्या लेंगे अगर उसने काट लिया आपको, तो सबसे पहले तो आपको रोकथाम करनी है। अब मच्छर काट लेता है तो भाई इलाज तो आसपास हैं ही, सब डॉक्टर से आपको बाकायदा बड़े सारे ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे, उसके बाद फिर बाकायदा अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, बकरी का दूध एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो 20 तारीख को हर साल जो है हम मनाते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे, और एक ब्रिटिश चिकित्सक थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस, उन्होंने 1897 में एक ऐसी खोज की थी जिसमें उन्होंने बताया कि मादा एनोफिलीज जो है मच्छर, वो मलेरिया कॉज करती है इंसानों में। और सबसे खास बात नहीं, तीनों मादा ही हैं, तीनों मतलब ऐसा नहीं है पुरुष भी हैं इसमें, लेकिन जो मादा मच्छर है वही बीमारियां कॉज करती है। तो ये थोड़ा सा वो है, अब क्या कहें,
मैं इस बारे में ज़्यादा कहूँगी नहीं कुछ, क्योंकि आप लोग फिर कहेंगे कि देखो लड़कियाँ ही होती हैं ख़राब, वो देखो मच्छर में भी देखो लड़कियाँ ही बीमारियाँ फैला रही हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये दिन जो है सबसे ख़ास तौर पे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी ख़तरनाक बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है। तो हमें जागरूक करके मतलब सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि हम मच्छरों से दूरी बनाएं। ठीक है, और अगर देखा जाए ना पूरी दुनिया के अगर मच्छरों की संख्या अगर कैलकुलेट की जाए ना 110 ट्रिलियन से ज़्यादा, यानी कि 1,10,000 अरब से ज़्यादा मच्छर मौजूद हैं दुनिया में, और इनकी सटीक गिनती करवाना भी असंभव है भाई। दिन भर में हजारों, देखते ही अंडे कैसे हज़ारों के 100 की संख्या में मच्छर अंडे देता है अपनी, तो हम गिन नहीं सकते इनको। और कहते हैं कि पूरी दुनिया में 3,500 से अधिक इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर इनका आवास देखें तो ये अंटार्कटिका को छोड़ के पूरी दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं, हर देश में पाए जाते हैं, मतलब अंटार्कटिका

को मार तो हम सकते नहीं, लेकिन हाँ घर में अगर मच्छर दिखे तो तुरंत एक्टिव हो जाइए। बस ये समझ लीजिए कि मच्छर मतलब बीमारी, आपके दिमाग में ये अलार्म टाइप का बजना चाहिए। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल शाम यानी कि आरजे बिना का आना, ये आपका अलार्म दिमाग में फिक्स है। तो धर्मेश हमारे साथ हैं, कैसे हैं धर्मेश आप और बाकी सारे लोग जो जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मतलब मच्छर है तो मच्छर को लेके हमें जागरूक होना है, मच्छर का नाम आते ही आसपास एकदम अलर्ट हो जाना है, आसपास जो लोग नहीं अलर्ट हैं उनको अलर्ट कर देना है। अगर घर में मच्छर दिख रहा है, आप पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये क्यूलेक्स है, तो तुरंत मतलब एक्टिव हो जाइए। घर में स्प्रे काला हिट विट मतलब हिट वगैरह का प्रयोग कम करें, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे मोटे ऐसे उपचार करें, जालियाँ वगैरह लगाएं, धुआं करके सारे मच्छरों को बाहर कर दें, और वो फास्ट कार्ड वगैरह आते हैं उनको जला के मच्छर बेहोश हो जाते हैं, उनको झाड़ू लगा के इकट्ठा कर लें, उनको बाहर ले जाके मतलब डिस्पोज कर दें, जैसे भी आप कर सकते हैं, बस ये है कि सतर्क रहें। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना और कुछ ही देर में मैं लाइव हो जाऊंगी आपके फेवरेट शो गुंडा मैसी मसाला के साथ, आरजी बीना वाला के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 93.6 FM, ये है गुंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑल्टर्स किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें ऑल्टर्स किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9981 9776। 9206 पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे।

के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैमरा।

क्या आप भी गुंडा से हैं और गुंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गुंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में। यार कभी कभी जानते हैं ना कि जैसे मौसम को टेक्निकल इशू आ जाता है, बारिश नहीं होती, और हवाओं को टेक्निकल इशू आ जाता है, तूफान हो जाता है, तो वैसे ही जो मशीनें हैं वो तो अपने आप में ही टेक्नोलॉजी की देन है, तो इशू तो आते रहेंगे। तो चलिए सब तो चलता रहेगा भाई, बदलाव जरूरी है, तभी तो मज़ा आता है ना।

गाना मैंने आपको कभी सुनाया होगा तो याद होगा आपको, और अगर नहीं याद है तो दोबारा सुन लेते हैं। आज बिना कहाँ जा रही है कहीं, तो चलिए सुनाती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, ऐसे नहीं।

बहुत दिनों पहले मैंने आपको सुनाया था कि जब किसी का इंतजार करो तो कैसे करो, मतलब एक पल भी आपको अपने इंतजार से पलके नहीं हटानी। इंतजार एक टटकी वाला इंतजार, इंतजार कि आपका ऐसा हो कि सामने वाला आने के बाद देरी पे खुद ही शर्मा जाए कि कोई तो मेरा ऐसा इंतजार कर रहा था।

को भटकने की, देता है सजा मुझको, दुश्वार है पहलू में दिल तेरे बिना रखना, राहों पे

है ना। जी हाँ, देखिए जब इश्क में इंतज़ार होता है ना, कुछ ऐसे ही होता है। हर वो जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है, वो पॉसिबल होने लगती है जब इश्क में इंतज़ार होता है। शुक्रिया अनिल जी ने पहचाना कि ये प्यारी सी गज़ल है। येस ऑफकोर्स, ये गज़ल ही है, जैसा कि आपकी पहचान, आपकी पकड़ और आपकी पसंद गज़लों की क्या हर उस बेहतरीन कहते हैं ना कि नगमे से जुड़े हैं आप, जिसने शायद इस दुनिया को अपना दीवाना किसी समय बनाया होगा। और एक बहुत पुराने दौर की गज़ल है जिसके बारे में मैं आपको किस दिन फुर्सत में बताऊंगी। लेकिन हाँ, जब मैंने इसको पढ़ा गाया तो मतलब इसको मैंने अपने सीने में उतारने की कोशिश की। बहुत बड़ी सी गज़ल है, कभी बात होगी तो आपको सुनाया जाएगा। और तो आज जैसे कि मतलब इंतज़ार आपको मेरा करना पड़ा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंतज़ार पे कुछ कह दिया जाए। और जैसा कि हवा की जो रागनी है वो छिड़ चुकी है, शाम का जो एकदम कहते ना वाइब है वो आ चुकी है, और आज लव स्टोरी वाला डे है, तो कुछ अच्छा सा तो मैं आपको सुनाऊंगी ज़रूर। और कहानी की बात करें तो कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो दिल को छू के जाती हैं लेकिन दिल को सहमा भी देती हैं। तो ऐसी कहानी जिनसे हमारा अतीत जुड़ा हो, वो कहानियाँ अगर हमें पता होती हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो बार बार सीख ही दे के जाती हैं। तो चलिए आज इश्क से जुड़ी एक और दास्तां की बात होगी, ना हमारी ना आपकी, फिर से वही मोहब्बत की शुरुआत होगी। तो फ़िलहाल के लिए मैं हाँ ये कहूँगी कि कुछ लोगों का जो कहते हैं ना कि वैसे तो बहुत कहानियाँ इश्क की हमने सुनी, लेकिन हाँ अभी मतलब मैंने जब दीपिका पादुकोण और रणवीर के बारे में पढ़ा, समझा, इन लोग को करीब से जानने की कोशिश की, तो मुझे ये देखा कि दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लॉयल रहे। मतलब जब दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप को इन्होंने कमिट किया तो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन से मुझे दिखी। तो चलिए आज एक और प्यारी सी कहानी की ओर मैं रुख करना चाहूँगी। वैसे तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, जितनी भी सुनाई जाए वो कम होंगी आप लोग को। तो चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर जो आपको आपके अतीत की शायद जो कहते हैं ना कि दुनिया में ले जाएगी।

कहानी मेरे एक लिसनर ने मुझे लिख के भेजी थी, उसके बारे में बताऊंगी। कहानी मानसून से जुड़ी है, कुछ घटाओं की है, कुछ लोगों से मिलने की है और किसी की किसी से मिलाने की है। दीपा लिखती हैं कि कुछ महीनों बाद मानसून आया। इस बार मोहल्ले पानी में नहीं डूबे, हैडपंपों का जल स्तर ऊपर नहीं आया उतना, पार्क हरे तो थे लेकिन गलियां अभी भी सूखी थीं और सरकारों ने भी बड़े प्रयास किए थे जल की आपूर्ति को पूरा करने की। और एक शीर्ष छपा था उस दिन अखबार में, जहां सरकार नहीं पहुंची वहां छात्रों ने व्यवस्था को पहुंचा दिया। विश्वविद्यालय में जल दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी से लौटते हुए राहुल के शब्दों में बेचैनी थी। बचपन से सुन रहे थे, गरीबी हटाओ, जल बचाओ, विकास लाओ, हर साल बाढ़ आती है, कभी गर्मी पड़ती है तो सूखा पड़ता है, बदलता क्या है, बस आंकड़े। रमेश ने राहुल से कहा कि समस्या केवल बारिश की नहीं है, व्यवस्था की भी है। अगर हम पहले से व्यवस्था रखें तो शायद हम किसी भी बड़ी आने वाली आपदा से लड़ सकते हैं। बातें करते करते और उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते मैं भी इन लोग की बातों में खो सी गई कि अगर हम सभी युवा एक जैसे हो जाएं तो आने वाले समय में देश का जो कहते हैं ना कि एक स्मृति है वो नहीं बन सकती है। हम सभी ने मिलके आसपास के गांव और ऐसे क्षेत्रों में कवर करना शुरू किया कि कहाँ ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी हैंडपंप नहीं है, या हैंडपंप है तो उनका जल स्तर नीचे जा चुका है, उनको वापस बोर की ज़रूरत है। और शहरों में और ऐसी जगह जहाँ पे पानी का स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे लोगों को अवेयर करने का सोचा। मैंने भी उनके जो ग्रुप थे उसको ज्वाइन किया, पर क्या कहूँ, परिवार हर उस चीज़ को नहीं करने देता जिसमें हमारा फ़ायदा ना हो। जब मेरे पिताजी को पता चला कि मैं ऐसे छात्रों के साथ मिलके जन सेवा कर रही हूँ, वो भी कि बिना किसी एनजीओ की मदद के, तो मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत डांटा और मुझे कल से कॉलेज जाने की भी हिदायत दे दी कि तुम सिर्फ कॉलेज पढ़ने जाओगी और पढ़ के वापस आ जाओगी। अब आगे क्या होना था, मैंने भी अपने पिता की बात मानी और वापस से पढ़ाई की ओर रुख कर लिया, पर दिल अभी भी राहुल के ख्यालों में था। जी हाँ, ये कहानी है रूही की, जिसके बारे में हमारी एक लिसनर लिख के भेजा। रूही का मन अभी भी राहुल के पास था, भले उसने अपने पिता की बात मान ली थी पर वो अभी भी राहुल के ख्यालों में खोई हुई थी। मुना चाह के भी कॉलेज से खिड़की से बाहर देखती रहती थी कि रोड पे छात्रों का जमावड़ा है तो ज़रूर राहुल होगा उसमें, कभी कैंटीन में तो कभी ग्राउंड में तो कभी लाइब्रेरी में तो कभी साइकोलॉजी लैब में। अक्सर साइकोलॉजी लैब में राहुल से ज़्यादा देर तक बातें होती थी क्योंकि साइकोलॉजी राहुल का भी फेवरेट सब्जेक्ट था। धीरे धीरे सेमेस्टर एग्जाम्स हुए, राहुल रूही के पीछे ही बैठा था और इत्तेफाक से दोनों पेपर होने के बाद साथ में पेपर सॉल्व करते थे। दोनों के बीच में प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक दिन बारिश हो रही थी और राहुल ने पूछा, देखो बारिश की समस्या तो दूर हो गई, चलो अब इसको सेलिब्रेट करते हैं, चलो ना रूही कॉफ़ी पीने चलते हैं। उस दिन लगा कि लग रहा है कि प्यार अब धीरे धीरे परवान पे पहुंच रहा है, पर क्या रूही को राहुल मिलेगा इस मानसून या अगले मानसून, जानने के लिए आप सुनिए पहले ये गाना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कहानी रूही की।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

जी हाँ, इसी गाने को सुनते हुए दोनों ने कॉफ़ी शेयर करना शुरू कर दिया। जी हाँ, रूही और राहुल, साथ में बारिश और ये गाना। लग तो यही रहा था कि दोनों सा प्यारा मासूम दुनिया में कोई नहीं है। एक लड़का सीधा साधा जो प्रकृति से बहुत ज़्यादा स्नेह करता है, और दूसरी ओर वो लड़की जो प्रकृति से स्नेह करती तो है लेकिन राहुल के माध्यम से। अब तो आए दिन का था कि दोनों साथ में उसी कॉफ़ी की दुकान पे कॉफ़ी तो कभी चाय पीने लगे थे। अब तो रूही घर से कुछ ना कुछ दोनों के खाने के लिए बुलाने लगी थी।

एक दिन कैंटीन में कुछ लड़कों ने रूही और राहुल को बोला कि तुम दोनों कमिटेड हो, क्यों नहीं तुम दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हो। पर दोनों ने नजरें चुराई और कुछ नहीं कहा। उस दिन रात में राहुल ने रूही को मैसेज किया और कहा कि क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं कर रहा हूँ, और फिर डिलीट कर दिया। पर क्या करें, जो प्यार राहुल के मन में जागा था वो उससे भी पहले रूही के मन में जागा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे और रूही ने भी एक हार्ट भेज दिया और फिर डिलीट कर दिया। अगले दिन दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे क्योंकि दोनों ने उस डिलीटेड मैसेज को पढ़ लिया था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। फाइनल सेमेस्टर आ गए और कैंपस सिलेक्शन की बात हुई। दोनों को अलग अलग कंपनियों ने सेलेक्ट किया, एक को दिल्ली मिला और एक को बेंगलोर। राहुल ने कहा कि तुम दिल्ली का ऑफर छोड़ दो और मेरे साथ बेंगलोर चलो, मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ एडजस्टमेंट कर दूँगा। पर जब रूही ने अपने घर वालों को बताया तो रूही के घर वालों ने ना तो उसे दिल्ली जाने दिया और ना ही बेंगलोर। रूही ने अपनी माँ से सब कुछ बता दिया था। उसकी माँ ने उसके पिता से बात की पर रूही के पिता कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने सीधे यही कहा कि शायद मैंने तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करा के गलती कर दी। अब तो रूही घर पे बहुत कम समय के लिए राहुल से फोन पे बात कर पाती थी, जब भी वो बाहर निकलती तभी बात कर पाती।

अब रूही को लगने लगा था कि शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। पर राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन राहुल लगभग 7-8 महीने बाद रूही से मिलने आया और उसने कहा कि वो उसके पिता से मिलेगा। रूही से मिलने राहुल रूही के घर पहुंचा जब उसके पिता थे। उसने सीधे तौर पे कहा कि मैं रूही से शादी करना चाहता हूँ, पर रूही के पिता ने गुस्से में आके उसे बहुत कुछ कहा और कहा कि सीधे यहाँ से चले जाओ और तुम भी अगर ज़रा भी मेरी या जिससे तुम प्यार करते हो उसकी इज्जत करते हो तो कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। राहुल ने जाने से बस एक सवाल किया पहले कि आखिर अंकल मुझ में क्या कमी है। रूही के पापा ने आंखों में आंसू भर के जवाब दिया कि बेटा तुम्हें कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। मैंने कई सालों पहले अपने दोस्त को वादा कर दिया था कि तुम्हारे बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और उस वादे को अब मैं तोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है और दोस्ती के मायने प्यार से कहीं बड़े होते हैं। जब रूही ने यह सुना और उसकी पापा की आंखों में आंसू देखे, वो तुरंत अपने प्यार के आगे अपने जितने सपने थे उनको गिरवी रख देती है और कहती है, पापा आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी। दोनों की समझदारी को देख के उसके पिता ने दोनों को गले लगा लिया और दोनों को खुश रहने की दुआएं दी। रूही की शादी रूही के पिता के दोस्त के बेटे के साथ हो गई। रूही खुश थी और हाँ, उसे इस बात का सुकून भी था कि उसके पिता ने दोनों को और दोनों के प्यार को समझा और शायद प्यार का समझना, प्यार के मायने को समझा पाना ही मुझे लगता है एक बड़ी जीत हो सकती है। हर बार हम लड़ के झगड़ के अपनी चीज़ को हासिल तो कर लेते हैं लेकिन उस हासिलियत के बाद सुकून वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? वैसे मुझे तो दोनों की समझदारी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किस्मत अच्छी हो तो प्यार दोबारा मिल जाता है, लेकिन पिता की आंखों में इज्जत शायद बार बार बनाने से नहीं बनती। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और इस प्यारी सी कहानी को कहते हैं बाय बाय।

इरादे मुझे घेरे हुए हैं। क्या तुम मुझे मेरा अतीत भुला सकते हो? मैं जीना नहीं जानती। जीना सिखा सकते हो, प्यार करना नहीं जानती। प्यार सिखा सकते।

तो चलिए हम भी चलते हैं इश्क के दौर को और फिर से एक बार जमा करने। और आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपने भी मानसून में किसी के साथ एक कप चाय पी है प्यार वाली? अगर पी है तो जरा शायरी के साथ बताएं।

फिलहाल लाल चुलरिया नहीं, फिलहाल बारिश वाले गानों के बजने की शाम है, यानी कि मॉनसून स्पेशल शाम है। और चलिए देखते हैं ये मॉनसून हमें कहाँ तक ले जाएगा आपके साथ। किसके यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही थी जब वो शाम को चाय पी रहा था? फिलहाल मैंने जब चाय पी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, जिन्होंने मुझे फील कराया कि ये प्यार वाली तो बारिश जरूर है, किसी का प्यार

चलिए एक और खूबसूरत से एहसास को पलटते हैं और समझते हैं प्यार का एक जाम कैसा है। नव्या, आपका नाम ठीक है लेकिन आगे आपने ये गोंडा लिखना चाहिए था, मुझे लगता है गलती से गुंडा लिख गया। कोई बात नहीं, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं। गुड इवनिंग जुगल जी, और आप लोग के साथ ये शाम सुरीली भी है, सुहानी भी है, और एक और कहानी जारी होने को तैयार भी है। बहुत सालों पहले सब कुछ हुआ था। कहानी है कुछ फूल कभी सूखते नहीं, ये कहानी भी मेरे एक प्यारे से श्रोता की भेजी हुई है। उन्होंने कहीं पढ़ी थी और उन्होंने मुझे भेजी, फिर मैंने सोचा कि जब किसी ने पढ़ी और किसी को अच्छी लगी तो मुझे लगता है मेरे श्रोताओं को भी जाननी चाहिए। बहुत सालों पहले ये सब हुआ था, यकीन नहीं होता, लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं अपनी छत पर पापड़ सुखा रही थी, बगल वाली छत से कीचड़ लगी एक गेंद आकर पापड़ खराब कर गई। मम्मी ने चिल्लाकर पूछा, कौन है, सामने आओ, अभी ठीक करती हूँ। हमने अपनी लाइफ में पापड़ तो जरूर सुखाए होंगे अगर थोड़ा भी घर के कामों में रुचि होगी, और पापड़ बनाना कितना मुश्किल काम है। ऐसा कहते ना कि बड़े पापड़ बेलने पड़े, हाँ भाई पापड़ सच में बड़े मुश्किल काम है, और उस पर किसी की गेंद आ जाए, वो भी कीचड़ लगी, तो क्या होगा। डरते डरते सामने आया एक सीधा साधा लड़का जिसकी हालत ख़राब थी। डर तो मुझे भी लग रहा था कि बेचारा पीटा जाएगा, लेकिन उस लड़के के पीछे खड़ी उसकी मम्मी को देखकर माहौल ही बदल गया। माला तुम यहाँ, मम्मी बाहें फैलाए उसकी ओर दौड़ पड़ी। यही हालत माला आंटी की भी थी। बचपन से ही मेरी माँ और माला आंटी दोनों साथ में एक रिश्ते की तरह थीं, पड़ोसन। नमस्ते आंटी, मेरे बोलते ही उन्होंने टोक दिया, आंटी नहीं मौसी बोलो, हम दोनों सहेलियां नहीं बहनें हैं। जिस समय दोनों सहेलियां खिलखिलाकर पुरानी यादों का हिसाब चुकता कर रही थी, उसी समय एक जोड़ी निगाहें मुझे छुप छुप कर देख रही थी। मुझे भी पता था कि हमारा परिचय हुआ तो पता चला कि हम दोनों एक ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे। माला आंटी इस शहर में साल भर के लिए आई थी। धीरे धीरे दोनों घर एक ही घर बन गए थे। हमारे यहाँ खीर बनती तो वहाँ जाती, वहाँ छोले भटूरे बनते तो हमारे यहाँ भेजे जाते। खाना इधर उधर करते करते कब दोस्ती बढ़ गई पता ही नहीं चला। वो तो भला हो फ्रेंडशिप डे का, जिसके चलते हमारे रिश्ते को एक नाम मिल गया। मेरी सबसे प्यारी दोस्त के लिए आलोक ने कॉलेज जाते समय उसे चुपचाप वो कार्ड पकड़ा दिया था, जिसके जवाब में मैंने घर के बगीचे में एक सफ़ेद गुलाब तोड़कर उसके कमरे में जाकर रख दिया था। अब हमारे बीच रंगों का खेल शुरू हो चुका था। अगली बार मुझे मिला एक गुलाबी गुलाब। उसके बाद दीपावली की रात मैं छत पर दीपक रखने गई, पता नहीं कैसे ठीक उसी वक्त आलोक भी छत पर आ गया था। आज बहुत प्यारी लग रही हो, एक मिनट नहीं रुकना, कहीं जाना नहीं, मुझे वहाँ रोक कर वो अपनी छत पर गया और पल भर में कुछ लेकर वापस आया। क्या है दिखाओ तो, उसने मेरी आँखें बंद कर दी और पल भर में ही गुलाबों की महक मेरे आसपास फैल गई। ये कितना सुंदर है, मैं हैरत से उस गुलदस्ते को देख रही थी जो दिल में आकर एक लाल गुलाब के रूप में समा गया था। मुझे इतना पसंद आया था कि मैं क्या कहूँ। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें पसंद आया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, घर से आती मम्मी की आवाज़ मुझे चौंका गई, मम्मी बुला रही है। मैं गुलदस्ता लेकर सीढ़ी की ओर बढ़ी, तभी अपनी बुद्धि पर तरस आया, तो इसे लेकर घर जाओगी। वापस छत पर आकर एक ड्रम में अंदर छुपा दिया। आलोक की हंसी सुनाई दी, मेरे दिल का तुमने ये हाल किया। किसको पता था कि हम दोनों के दिल का यही हाल होने वाला था। अगली सुबह मम्मी ने पापा को छत पर ले जाकर वो गुलदस्ता दिखाया था। अदालत लगी हुई थी, कटघरे में खड़ी थी मैं। मुझे नहीं पता था किसका है ये, कोई छुपा गया होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई, मम्मी शायद कुछ समझ रही थी, तब तो कुछ नहीं बोली, लेकिन रात में मेरे कमरे में आकर सब कुछ साफ साफ कहती गई। तुम्हें वो गुलदस्ता आलोक ने दिया है ना, तुमको शर्म नहीं आई, माला को मौसी कहती हो और उसके बेटे से।
ये आप क्या कह रही हैं? पहली बात तो हम दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं, दूसरी बात माला आंटी आपकी सहेली हैं, बहन नहीं। विद्रोह का ये स्वर मम्मी के लिए खतरे की घंटी था। उन्होंने हमारे बीच के सारे पुल ध्वस्त कर दिए। हमारा उनके यहाँ आना जाना लगभग बंद हो गया। उनकी माला आंटी से कहा सुनी भी हो गई। हमारी छत के बीच एक ऊंची दीवार भी उठ गई। मुझे याद है जिस दिन उनका सामान यहाँ से जा रहा था, वो आलोक के साथ मिलने आई थी। मुझे रोना आ गया था, लेकिन मम्मी तटस्थ बैठी थी। आलोक ने मम्मी के पैर छुए। मैं माला आंटी के गले लगकर रो पड़ी। जाते समय आलोक ने मुझे एक निगाह भरकर देखा था, वो निगाह कभी भूलती नहीं। अरे एक बात तो मैंने बताई ही नहीं, उस लाल गुलदस्ते को जब मम्मी फेंक रही थी, मैंने एक गुलाब चुरा कर अपने पास रख लिया था। वो अब भी मेरे पास है, अब भी महकता है पहले प्यार की निशानी की तरह, पहले प्यार की निशानी की तरह। क्या आपकी ज़िंदगी में भी प्यार शुरू होते होते रुक गया? अगर हाँ तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे ये अधूरा प्यार काफ़ी दर्द देने वाला लगा, लेकिन मुझे पता है कि ये सच्ची कहानी हो सकती है किसी की। बहुत बार ऐसा होता ही है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ रिश्तों को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं, और शायद उन रिश्तों का कंटिन्यू ना हो पाना ही सही होता है उस समय के लिए। तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

हम कहाँ। बहुत प्यारा सा गाना, चलिए सुनते हैं आप लोग के साथ इस प्यारी सी शाम का प्यारा सा सॉन्ग।

हम थे जिए होठों को सिए, इंतज़ार ऐसा ही होता है। अगर सच में कोई ऐसा इंतज़ार करे तो मुझे लगेगा कि वो इंसान इस प्यार को जी रहा है। मैं वहीं था लेकिन मैं जल्दी निकल गया कीमत पूछकर अपने टीम, मतलब कौन है भाई, नवीन जी हमारे साथ हैं, क्या हाल है नवीन राजपूत जी, मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ हैं फ़िलहाल। ये बताइए MP में बारिश वारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? आप लोग तो मतलब बारिश के साथ साथ बातें भी बड़ी लंबी लंबी कर लेते हैं और आरजे बीना से अपनी बात कहना भूल जाते हैं। फ़िलहाल आप लोग बताइए आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। मैं अगर बता दूँ तो हमारे शहर में थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, जैसे मतलब कहते हैं ना कि एहसासों की बारिश, थोड़ा बहुत दिल खुश करने वाली बारिश। फिलहाल के लिए बारिश कैसी भी हो, हमारे लिए तो बारिश हमेशा खास रहती है। और सबसे खास बात यह है कि हमने इस मौसम को जैसा भी है जो भी है एक्सेप्ट कर लिया। और जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़, तो मुझे लगता है कि उसकी खूबसूरती, उसकी मर्यादा, वो जैसा भी है उसका अपनापन बढ़ जाता है। तो इस अपनेपन के दौर को और बढ़ाएंगे और प्यार के दौर में ऐसे ही दीपक जलाते जाएंगे।

फिलहाल ये बताइए कि आप लोग आज की शाम मेरे साथ अपनी प्यार की कोई दास्तान शेयर करने वाले हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही मतलब बातों ही बातों में ये शाम बिताने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि शाम, मौसम सब अपनी जगह, लेकिन जब बात इंतज़ार की होती है तो इंतज़ार अपनी जगह होता है। फिलहाल के लिए मुझे मेरे लिसनर्स से चाहिए था आंसर कि नहीं हो रही एमपी में बारिश, क्यों? मतलब भगवान ना आजकल पता नहीं क्यों कंजूसी कर दी है, कहीं कहीं पे इतनी बारिश कर रहे हैं और कहीं कहीं पे एकदम जैसे हम लोग को तरसा रहे हैं। अभी कल बारिश हुई है, आज थोड़ी थोड़ी हुई है तो हम लोग थोड़ा सा खुश हैं, लेकिन यहाँ भी वैसा ही है। जुगल जी आप बिल्कुल ये मत सोचिए हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही, बस थोड़ी थोड़ी कभी कभी हो जा रही है, तो मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि संगीत की बारिश तो हो रही है, संगीत है जहाँ वहाँ कुछ और सोचने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक बारिश पे कविता सुनाती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा।

ध्यान से सुनिएगा, मेरी फेवरेट है और आपकी भी। क्यों? क्योंकि इस कविता ने हमें अपना बना लिया था एक जमाने में, और फिलहाल जो बेचैनी है उसको समझा दिया था। तो ध्यान से सुनिएगा।

0: बारिश में भीगते भीगते अब आरजे बीना के जाने का समय हो चुका है। आपको अपनी पसंद के गाने सुनने हैं और इन गानों के साथ मैं आपको बता दूं कि अब फरमाइशी का समय भी हो चुका है और सबसे पहली फरमाइश 7:45 पे आ चुकी है महेंद्र जी की। तो चलिए सुन लीजिए, गाना है बड़ा प्यारा सा।
1: मरने की आदत लगी थी, क्यों जीने को जी।
0: तो गाना है बड़ा प्यारा सा, मोहब्बत इनायत।

बड़ा अच्छा सा गाना सुनने के बाद एकदम मतलब लग रहा है कि हाँ सावन के सच में झूलों ने बुला लिया। और जुगल जी की फरमाइश का गाना है कैसी प्रेम कहानी, क्या बात है।

कैसी प्रेम कहानी और सारी दुनिया प्यारी। सच में अगर पूरी दुनिया को देखे तो एक कहानी की तरह ही है, और बस उसे पढ़ दें तो जुबानी हो जाएगी।

तो श्रोताओं, अब हम सुनेंगे दीपक हथियागढ़ से, हमें बहुत प्यारे लिसनर हैं, रेगुलर सुनते हैं हमें और फरमाइशी के टाइम तो ज़रूर आते हैं, सुनना चाहते हैं गाना अखियां तू मिला ले राजा। क्या बात है,

यहाँ सिर्फ दो ही बातें तो हो सकती हैं। और क्या खूबसूरत सा गीत चुना है आपने आज अनिल वर्मा जी, जो हमको सुनते हैं फैजापुर से। तो दो बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी मिस गीत में जाएंगे।

जी हाँ, और अब चलते हैं अपने अगले फरमाइश की तरफ, गंगा के किनारे। और यह गीत हमको भेजा है रौनक जी ने। जी हाँ, तो रौनक जी की फरमाइश पर गंगा के किनारे।

0: ऐसे हैं बातें, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें,
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
3: The impact of climate change,
4: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
3: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
2: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
5: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई है वहाँ और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई है और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और CBI के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और CCTV रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, OMR शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
7: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अगा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट

0: सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुत प्रशिक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, हॉर्मुज जलडमरु मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जी हाँ भाई, और समाचार अंक का ये संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। इसके साथ ही भाई, नव्या जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। ईश्वर आपको हर वो चीज़ दे जिसकी तमन्ना आपने की हो। और जी हाँ, आपके जन्मदिवस पर ये प्यारा सा गीत रेडियो गणेश 89.6 FM की तरफ से हम

जी हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब चलते हैं निब्बल भाई की तरफ, उनकी फरमाइश है भाई। फिल्म सौतन से बहुत ही प्यारा सा गीत निब्बल भाई जी लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है सौतन, बहन समझो सौतन ना समझो।

0: था बहुत ही प्यारा गीत है निब्बल भाई का। और अब चलते हैं भाई उत्कर्ष जी की तरफ। और गीत है हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज पर्दे पर है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन।
1: ऐसा ना समझो हम बड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा

दिन हम गए जंगल माँ, अरे एक दिन हम गए जंगल माँ, वहाँ मिल गए हम का डाकू ससुरा मिल गए हम।

0: अरे हमने पूछा कितने हो तुम, तब वो बोले दस।
1: हम कहा बस, का कहा बस,
0: ऐसा हाथ जमाया दो गज धरती माँ गए धस धस धस। हम का ऐसा वैसा ना समझो, हम पड़े काम की चीज, हम का ऐसा वैसा।

0: बड़े प्यार से उसने हमका दिया गुलाबी फूल।
1: हम कहा ये का देत हो हमका फूल, का देत हो फूल।
0: हाथ जोड़ कर फिर वो बोली हो गई हमसे फूल।

हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत। अब चलते हैं, तेज साहू जी की फरमाइश है, जैसे भी तू मानेगा मैं मनाऊंगी सऊदिया। जी हाँ, लगता है कोई उठा हुआ है और बिल्कुल इस गीत के बाद तो मान ही जाएगा।

0: जी हाँ भाई, मना लीजिए। और अब चलते हैं मिश्रा ऑप्टिकल्स जी की तरफ। बहुत ही प्यारा सा गीत है और गीत के बोल है माहिया। जी हाँ, आइए सुनते हैं माहिया मिश्रा ऑप्टिकल्स जी की फरमाइश पर।
1: I'm so sorry.
2: अरे मैं कब से रुका हूँ,
1: बस भी करूँगा। चले

0: कभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके हैं और ये 24 घंटे मॉल में कर।
1: जी हाँ, अब बढ़ते हैं क्रिकेट लवर की तरफ। भाई क्रिकेट का शौक है और इसके साथ ही भजन का भी शौक है। आइए संजय जी की आवाज़ में सुनाते हैं आपको, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। जी हाँ बिल्कुल, ईश्वर से प्रेम करना बिल्कुल सही है।

बिल्कुल सही किया भाई। और नागेश्वर धाकर जी और अंसारी जी, हम तो भाई आपका गीत हमको मिला नहीं है ना, आपने कहीं रिक्वेस्ट में भेजा है, जबकि आपने लिखा कि कल आपका गीत नहीं बजा, तो आपका गीत इसलिए नहीं बजा क्योंकि आपने गीत भेजा ही नहीं था, समय है भेज दीजिए। फिलहाल चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे श्रोता इम्तियाज जी की फरमाइश, आइटम, और ये जफर अली की प्यारी सी आवाज़।

जी हाँ, मतलब आइए मनोज मिश्रा खलगु चांदपुर की फरमाइश पर, या और आखिरी फरमाइश है आज के शो की, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बहुत ही प्यारा गीत है मनोज मिश्रा जी की फरमाइश पर।

0: आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9260 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब है आप सभी को। जी हाँ, आप सभी का खैर मकदम है आपकी ही महफिल बहारे गजल। जी और नाजिया जी ने आदाब अर्ज है। जी हाँ बिल्कुल, आपका आदाब हमने स्वीकार किया। और आइए, अभी तक आपके साथ थे गीत आपके नाम से और अब कार्यक्रम बहारे गजल। एक ऐसा वक्त जब आवश्यकता होती है थोड़े से सुकून के पल की, हम चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ जो आपाधापी चल रही है उससे थोड़ी सी निजात मिले, कुछ देर के लिए कुछ सुकून के लम्हात हो। और इन्हीं लम्हात को समेटे हुए मैं उपस्थित हूँ आप सभी के साथ। जी, आप सभी का दोस्त मनु। और आज जिस शायर पर हम चर्चा करने वाले हैं उनका नाम आप सबने सुना होगा। जी हाँ, नव्या जी आपको भी गुड इवनिंग और जन्मदिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अनंत खुशियां दे। और मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से, गुड इवनिंग सर। जी हाँ, आपको भी शाम का सलाम, आप मेरा इस्तकबाल कबूल करें। उन्होंने लिखा कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। शायर हैं कृष्ण बिहारी नूर। नूर मतलब अपने आप में रोशनी। क्या पंक्ति है, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच सच होता है, न थोड़ा सा ज्यादा न थोड़ा सा कम। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इम्तिहा ही नहीं। जिंदगी अब बता कहां जाए, जिंदगी अब बता कहां जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई यता पता ही नहीं। कैसे अवतार कैसे पैगंबर, कैसे अवतार कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अब खुदा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। और अंतिम लाइन बड़ी खूबसूरत सी पंक्तियां हैं। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा कि लिटरेचर नेवर डाइज, साहित्य कभी नहीं मरता। और साहित्य के साथ ही अमर हो जाता है साहित्यकार। उसने लिखा कि अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और वास्तव में अगर आप विचार करें, हम आप मिलकर विचार करें, तो इंसान वास्तव में इतने सारे हिस्सों में बट चुका है। कहीं पिता है, कहीं भाई है, कहीं दोस्त है, कहीं विद्यार्थी है, या हमारी जो नारी शक्ति है वे कहीं बहन है, कहीं माँ है, कभी भाभी है, कभी देवरानी है, कहीं जेठानी है, कहीं सासू माँ है, और कहीं तो भाई। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द दिया गया, कहीं वो माँ है। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो इंसान जिंदगी अपनी जीता है, लेकिन कहने को जिंदगी हम अपनी जीते हैं, लेकिन वास्तव में वो जिंदगी हमारी दूसरों के नाम हो जाती है और वो दूसरे वास्तव में अपने होते हैं। आइए, जब बात ऐसी ही चली है तो एक बहुत ही प्यारी सी गजल से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, शुरुआत एक ऐसी गजल जो कहीं ना कहीं आपके रूह को छू कर जाएगी। सुनिए और सुनकर बताइए कि ये प्यारी सी गजल आपको कैसी लगी। हम इंतजार करेंगे आपके रिएक्शंस का, आपकी प्रतिक्रियाओं का, कि हमारी ये गजल आपके दिल को छुई या नहीं। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों,

जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। बहुत ही प्यारी सी गजल। और कभी आपको मौका मिलेगा तो ये पालकी मूवी देखिएगा, राजेंद्र कुमार के साथ वहीदा रहमान, और इसमें गजलें बहुत प्यारी प्यारी मिलेंगी आपको। हालांकि रफ़ी जी ने और लता जी ने गजलें बहुत कम गाई हैं, लेकिन इस फिल्म में लगभग लगभग सारी गजलें ही गजलें। कोई मौका मिलेगा तो इस फिल्म की कहानी मतलब कहीं ना कहीं आपकी आँख हल्का सा नम कर जाएगी, ऐसा मेरा यकीन है। अब चलते हैं कृष्ण बिहारी नूर साहब की तरफ। उन्होंने कहा कि अपनी पलकों से उसके इशारे उठा, अपनी पलकों से उसके इशारे उठा, उसकी उंगलियों से शरारे उठा। ऐसा लगता है दोहरा रहा हूं मैं कुछ, ऐसा लगता है दोहरा रहा हूं मैं कुछ, जिंदगी के पुराने शुमारे उठा। मतलब जो पुराने कुछ बीत जो बात बीत गई है वो रोशनी का वो कैसा अजब शोर था, रोशनी का वो कैसा अजब शोर था, इस किनारे हुआ उस किनारे उठा, आखिरी है सफर वो सुबुक सर चले। आखिरी है सफर वो सुबुक सर चले, उसके दामन से अपने सितारे उठा। आंख की उस बदन पर लकीरें खींची, हर गजल से नए इस्तियारे उठा। गुफ्तगू मतलब बातचीत, गुफ्तगू मंजरों की तरह खुल के हो, अब न तशबीह और इस्तियारे उठा। तेरा मकसद है क्या मैं समझ जाऊंगा, तेरा मकसद है क्या मैं समझ जाऊंगा, कोई मौसम की ही बात प्यारे उठा। रंग से रंग मिलने न पाए कहीं, रंग से रंग मिलने न पाए कहीं, एक एक करके सारे नजारे उठा। झील पतवार वापस न देगी कभी, झील पतवार वापस न देगी कभी, अपनी कश्ती अब अपने सहारे उठा। आग के एक कलम की सियाही लगा, आग के एक कलम की सियाही लगा, जो धुआं नूर गंगा किनारे उठा। वास्तव में कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थियों ने कहते मैंने पढ़ा कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। कृष्ण का ये एक संभव कैसे हो सकता है। तो विचार किया गया कि हाँ भाई संभव कैसे हो सकता है कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत हो। कोई व्यक्ति तलवार लिए आपकी तरफ आ रहा हो आपको मार डालने के इरादे से, और जज साहब फैसला सुना दें कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। एक पंक्ति तलवारें कम पड़ जाएंगी, कलम में बहुत ताकत है। जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो वास्तव में कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है, और इसलिए अपने बच्चों को कलम से मजबूत बनाइए। मतलब हथियार से वो मजबूत हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उनका उनकी जो लेखनी हो वो एकदम दुष्यंत जी की हमको पंक्तियां याद आ रही हैं कि तेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी को

चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ये तमन्ना नहीं है कि सुरबालाएं मुझे अपने बालों में लगाएं, गहनों में गूथें, सम्राट के शव पर हो मैं या भगवान के मस्तक पर हूँ। दुनिया भगवान के आगे सिर झुकाती है और ईश्वर के ऊपर पुष्प होता है। कवि कहता है कि पुष्प की अभिलाषा क्या है, कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हे बन के मेरे मालिक, मेरे बगिया के मालिक, जिस रास्ते पर माँ भारती के सपूत अपने देश को आज़ाद कराने जा रहे हो, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, उनके कदमों की रज पाकर, उनके कदमों की धूल पाकर मैं ये समझ जाऊँगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। सीधी बात न कह करके इशारों के माध्यम से कवि ने बहुत प्यारा संदेश दिया देशभक्ति का। यही तो शायर की कला है, कवि की कला है कि वो बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह जाता है। हमारे साथ नादिया जी कह रही हैं, जी सर जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। अरे अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं भाई, ये अल्लाह हाफिज़ कहने का अधिकार हमको है जब 10:30 होते हैं। सविता शास्त्री जी मेरे साथ, शुभ संध्या सजी चरण स्पर्श आपको, कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। मेरे साथ नव्या जी भी जुड़ी हुई हैं। अजीत मिश्रा जी हमारे साथ आ चुके हैं भाई, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सज्जन व्यक्ति जी। गुरु जी प्रणाम जी, यशस्वी भैये, आपका यश हो और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके परिवार के प्रति। और पालकी मूवी मैंने देखी है, क्या बात है, क्या बात है भाई, पुराने चावल है। ओके जी, उद्धलक शर्मा जी हैं, हेलो सर जी, हाँ हेलो आपको भी, और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जी हाँ, आइए चलते हैं एक प्यारी सी गज़ल की और रुक करते हैं। जी हाँ, इस गज़ल के बाद फिर आएंगे और आपसे करेंगे ढेर सारी बात, लेकिन फ़िलहाल ये

जी हाँ, और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि गज़लों की दुनिया में अगर लता जी की गज़ल का जवाब कोई दे सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के पास हो सकता है। तो जी हाँ, गज़लों की दुनिया में लता जी आ चुकी हैं, तो आइए गज़लों की दुनिया में ही ले चलते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को। देखते हैं इन दोनों की जोड़ी क्या खूबसूरत रंग लाती है। देने वाले तेरी दुहाई है। और अब चलते हैं भाई, आइए रफ़ी साहब की एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल आपको सुनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये गज़ल आपको पसंद आएगी। लता जी को आपने गज़ल में सुना, अब रफ़ी साहब को आप गज़ल में सुनिए।

जी हाँ, ये गजल सुनने लायक नहीं है, ये गजल देखने लायक है, समझने लायक है और अपने दिल में पिरो देने के लायक है। आपने अगर ये फिल्म देखी है तो जो इसका लास्ट स्टैंजा है कि सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे तन्हाई है, तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जा कि मेरी जान पे बनाई है। और जब ये गीत फिल्माया जा रहा होता है कि अब तो मिल जा कि मेरी जान पे बनाई है, तो अभिनेता मतलब राजेंद्र कुमार और साधना, इन दोनों की आंखों में आंसू को आप एक साथ देखेंगे। कभी अगर आपने इस गीत को देखा है तो अच्छी अच्छी बात है, नहीं तो इस गज़ल को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में दर्द इस सीमा तक हो सकता है कि गज़ल कहने वाला गज़ल सुना रहा है और जो सामने सुन रहा है उसकी भी आंखों में आंसू है, और जो कह रहा है वो ये कह रहा है अब तो मिल जा कि मेरी जान पे बनाई है। सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। कुछ यही बात कृष्ण बिहारी नूर साहब कहते हैं कि अपना पता ना अपनी खबर छोड़ जाऊंगा, अभी जो राजेंद्र कुमार साहब कह रहे थे रफी की आवाज़ में कि अपना पता ना अपनी खबर छोड़ जाऊंगा, बेसमतियों की गर्द सफर छोड़ जाऊंगा, तुझसे अगर बिछड़ भी गया मैं तो याद रख, तुझसे अगर बिछड़ भी गया मैं तो याद रख, चेहरे पे तेरे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। आपने ये पंक्ति किसी गीत में कहीं सुनी होगी, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, ये कृष्ण बिहारी नूर की पंक्ति है कि तुझसे अगर बिछड़ भी गया मैं तो याद रख, चेहरे पे तेरे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, गम दूरियों का दूर ना हो पाएगा कभी, गम दूरियों का दूर ना हो पाएगा कभी, वो अपनी कुर्बतों का असर छोड़ जाऊंगा, कुर्बत मतलब मोहब्बत, गुजरेगी रात रात मेरे ही ख्याल में, गुजरेगी रात रात मेरे ही ख्याल में, मैं तेरे लिए सिर्फ मैं शहर छोड़ जाऊंगा, यानी शाम का समय, और मैं तुझको जीत कर भी कहाँ जीत पाऊंगा, मैं तुझको जीत कर भी कहाँ जीत पाऊंगा, लेकिन मोहब्बतों का हुनर छोड़ जाऊंगा, आंसू मिलेंगे मेरे ना फिर तेरे कह कहे, आंसू मिलेंगे मेरे ना फिर तेरे कह कहे, सुनी हर एक राह गुजर छोड़ जाऊंगा, संसार में अकेला तुझे अगले जन्म तक, संसार में अकेला तुझे अगले जन्म तक, है छोड़ना मुहाल मगर छोड़ जाऊंगा, गम होगा सबको और, गम होगा सबको और, जुदा होगा सबका गम, क्या जाने कितने दीदाए तर छोड़ जाऊंगा, बस तुम ही पा सकोगे कुरेदोगे तुम जरूर, बस तुम ही पा सकोगे कुरेदोगे तुम जरूर, मैं अपनी राख में भी शरर छोड़ जाऊंगा, कुछ देर को निगाह ठहर जाएगी जरूर, कुछ देर को निगाह ठहर जाएगी जरूर, अफसाने में एक ऐसी खंडर छोड़ जाऊंगा, कोई ख्याल तक भी न छू पाएगा तुझे, कोई ख्याल तक भी न छू पाएगा तुझे, ये चारों समत, चारों समत मतलब चारों दिशाएं, ये चारों समत आठों पहर छोड़ जाऊंगा। जी हाँ, हम तो महफिल से चले जाएंगे लेकिन हमारे बाद आप भी खुश नहीं रह पाएंगे, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा और आठों पहर आपको हम याद आते रहेंगे। फिलहाल जब बात महफिल से विदा लेने की हो तो इससे अच्छी गजल और क्या हो सकती है। जी हाँ, देखिए महफिल से रुखसती का वक्त है और रुखसती के वक्त पर लता जी के कंठ से एक प्यारी सी गजल निकलती है। उम्मीद है
रुखसती के वक्त इससे प्यारी गजल, इससे दर्द भरी गजल मैंने फिलहाल अभी तक नहीं सुनी है। अगर आपने सुनी है तो ज़रूर बताइए, लेकिन फिलहाल हमारी पसंद रुखसती पर ये प्यारी सी गजल लत

जी हाँ, और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बाहर गजल में। और कल तो आपका दिन है। जी हाँ, कल है बुधवार, यानी कल प्रोग्राम है। अपने खजाने को निकाल लीजिए और आसमान वाले ने चाहा तो कल आपके स्वर आएंगे और हम सभी सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी। कह ना सके। नीलू ससुराल से मायके महीना भर रहने को आई थी। नीलू यानी नीलोफर की शादी को 2 साल गुजर गए थे। ऐसा लगता था कि कल की ही बात हो। राज के जहन में जो यादें धुंधली पड़ गई थीं, वो एक एक करके सामने आने लगीं। नीलू की शादी में दर्द देने वाले डरावने मंजर धीरे धीरे जिंदा होने लगे थे। ये राज नीलू की अधूरी मोहब्बत का अंजाम था। निगाहों में हर पल बसने वाली नीलोफर को वो आज तक नहीं भूल पाया था। राज अपनी अधूरी मोहब्बत का इल्जाम पूरी तरह नीलू पर नहीं लगा सकता था। अपनी नाकाम मोहब्बत का वो खुद भी जिम्मेदार था। आने वाले तूफान से वो घबरा गया था। चांद सी सूरत वाली नीलोफर राज पर अपनी जान लुटाती थी, पर नीलोफर का पिता अकरम गांव का दबंग शातिर झगड़ालू किस्म का इंसान था। गांव में कहीं भी झगड़ा फसाद राहजनी आगजनी यहां तक कि कई हत्याओं में भी उसका नाम जुड़ा होता था। आधे गांव ने तो अकरम का हुक्का पानी बंद कर रखा था। अकरम और राज के घरों की दीवारें आपस में मिली हुई थीं। बचपन के दिनों में मासूम राज गांव के स्कूल में पढ़ता था। नीलू भी वहीं पढ़ती थी। राज और नीलू घर से साथ साथ ही स्कूल जाते थे और घर आकर अपने घरों के सामने एक साथ खेलते थे। उन दिनों राज शाम के समय अपनी छत पर पतंग भी उड़ाया करता था। उस समय नीलू भी अपने घर की छत पर चढ़ जाया करती थी और राज को पेंच लड़ाने को उकसाया करती थी। जब राज नीलू के कहने पर किसी की पतंग काट देता था तो नीलू उछल उछल कर अपनी खुशी का इजहार किया करती थी। अगर पेंच लड़ाने के मुकाबले में राज की पतंग कट जाती तो वो उदास हो जाती थी। एक दिन राज बड़ी सी पतंग खरीद कर लाया। उसने स्केच पेन से पतंग पर कार्टून बनाकर नीचे शरारत से नीलू का नाम लिख दिया। कार्टून के नीचे अपना नाम लिखा देखकर नीलू गुस्से से भर उठी थी। राज बार बार उड़ती पतंग को नीलू पर झुकाकर उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। अचानक राज की पतंग जरा ज्यादा झुक गई और नीलू के हाथ में आ गई। उसने राज की पतंग दबोच कर धागा खींचा और अपने घर के अंदर भाग गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना, दिलोफर शादी के बाद मायके आई थी। राज जो कभी उससे मोहब्बत करता था पुरानी यादों में खो गया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे बचपन में दोनों साथ साथ खेला करते थे। राज उसको चिढ़ाता था और एक बार जब उसे मौका मिला तो वो राज की पतंग छीन कर नीचे भाग गई। अब आगे नीलू की इस शरारत पर राज को बहुत गुस्सा आया। वो चीखता चिल्लाता हुआ सीधा नीलू के घर पहुंच गया। वो नीलू को उसके घर में ही दबोच कर पीटने लगा। उस समय नीलू के पिता अकरम घर पर ही मौजूद थे। छोटे से राज की इतनी हिम्मत देखकर उन्होंने उसे दो तमाचे मारे और अपने घर से भगा दिया। उस समय राज मात्र 12 साल का था। वो रोता बिलखता अपने घर चला गया और पापा को बताया। राज के पापा रामदयाल शांत स्वभाव के आदमी थे। वो एक स्कूल में टीचर थे। उन्होंने अपराधी अकरम के मुंह लगना ठीक नहीं समझा और राज को ही डांट डपट कर खामोश कर दिया। अब रामदयाल ने राज को जेब खर्च देना बंद कर दिया। इस तरह राज की पतंगबाजी पर रोक लग गई। राज नीलू से बेहद नाराज था। वो नीलू को अकेला देखकर उसे पीटने की फिराक में था। एक दिन स्कूल में खेलकूद का पीरियड चल रहा था। उस समय क्लास के तमाम सहपाठी अपने अपने मनपसंद खेल खेलने में मसरूफ थे। तभी राज ने देखा कि नीलू नल से पानी पीकर अकेली आ रही है। उसी समय राज ने नीलू को लपक कर उसका एक बाजू पकड़ा और गुर्राया, परसों शाम को मेरी पतंग पकड़कर क्यों खींची थी? वो पतंग मैं 2 रुपए की खरीद कर लाया था जिसकी तूने ऐसी की तैसी कर दी। उस पर तो मेरा नाम लिखा था इसलिए मैंने अपनी पतंग ले ली, तुम दूसरी पतंग उड़ा लेते। नीलू बोली, मैं तेरे दोनों हाथ और मुंह तोड़ दूंगा, तुझे बचाने इस समय कोई नहीं आएगा। राज चिल्लाया, लो मारो मुझे, मेरे दोनों हाथ तोड़ दो, सामने पड़ी ईंट उठाकर मेरे मुंह पर दे मारो। अगर मुझे मारने से तुम्हारी पतंग जुड़ जाए तो अपने मन की इच्छा पूरी कर लो, नीलू ने कहा। मगर राज का हाथ नीलू पर नहीं उठा। राज ने चेतावनी देते हुए नीलू को छोड़ दिया। 4-5 दिनों तक नीलू से उसकी कोई बात नहीं हुई। अब उसने घर जाना बंद कर दिया। उसे अपने पापा का डर भी था। सालाना इम्तिहान सिर पर आ गए थे। वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। एक दिन शाम के समय नीलू अपनी माँ के साथ राज के घर आई। उन दिनों नीलू के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। नीलू की माँ उसके परिवार को शादी में शामिल होने का न्योता देने आई थी। नीलू सबसे नजरें बचाकर राज के कमरे में आ गई और उससे पूछने लगी कि वो अब पतंग क्यों नहीं उड़ाता। राज ने उदास मन से बताया कि अब उसे जेब खर्च नहीं मिलता। इतना सुनते ही नीलू ने छुपा कर लाई एक छोटी सी पोटली राज की तरफ उछाल दी और पतंग उड़ाने को कहकर चली गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना, नीलू मायके आई थी और राज को उसकी और अपनी दोस्ती की बचपन की बातें याद आ रही थीं। अब आगे राज ने पोटली खोली तो उसके चेहरे पर बेशुमार खुशियों के भाव चमक उठे। उसके सामने सिक्कों का अंबार सा लगा था। शायद नीलू ने अपनी गुल्लक खाली कर दी थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। प्यार भरी शरारतें कब चाहत में बदल गईं, उन दोनों को पता ही नहीं चला। वो दोनों पल भर भी एक दूसरे से दूर होने पर परेशान हो जाते थे। अकरम को इस इश्क की भनक लग गई। वो दोनों प्रेमियों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। वो किसी भी सूरत में अपनी बेटी को गैर जात में ब्याहना नहीं चाहता था। उसने अनन फानन बेटी निलोफर यानी नीलू का रिश्ता दूसरे गांव के गुलेमान के साथ पक्का कर दिया। अकरम अपनी बेटी को जल्दी ब्याह कर ससुराल भेजना चाहता था, पर उसे डर भी था कि कहीं निलोफर बगावत न कर दे। जल्दबाजी में शादी की तारीख भी तय कर दी गई। 2-4 दिन बाद अकरम 4-5 बदमाश लेकर रामदयाल मास्टर के घर पहुंचा और धमकी दे आया कि वो अपने बेटे को समझा कर रखें, वरना पूरे परिवार को इसी घर में बंद करके आग लगा देगा। राज के पापा लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते थे। उन्होंने प्यार से अपने बेटे पर दबाव डाला कि वो नीलू को भूल जाए। राज ने मन ही मन अपने पापा का कहना मानने का मन बना लिया, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक दिन राज दोपहर के समय गांव के बाहर नीलू से मिला। नीलू ने उलाहना देते हुए ना मिलने की वजह पूछी तो राज खामोश रहा। नीलू ने अपनी बात पर जोर देते हुए दोबारा पूछा, पर राज को कुछ भी बताना मुनासिब नहीं लग रहा था। राज की खामोशी देख नीलू ने राज का कॉलर पकड़ते हुए सारा माजरा गुस्से से पूछा। राज ने आखिरकार दुखी मन से सारी बातें नीलू को बता दी। नीलू गरजते हुए बोली कि उसे अपने निजी मामलों में पिता की दखलअंदाजी बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। राज ने नीलू को जिद ना करने की सलाह दी। ये भी समझाया कि अगर उन दोनों ने गलत कदम उठाया तो उसका अपराधी पिता उसके परिवार की हत्या कर देगा। मगर नीलू सारी बात सुनकर भी अपनी जिद पर ही अड़ी रही। कुछ देर सोचने के बाद नीलू ने एक सलाह दी तो राज सोच में पड़ गया। नीलू बोली, हम दोनों इस जालिम जमाने से बहुत दूर भाग चलते हैं, जहां हमारे प्यार का कोई दुश्मन ना हो। जब काफी समय बीत जाएगा तब पापा का गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर राज डर गया और बोला, नहीं नहीं नीलू, ये रास्ता बदनामी और तबाही की तरफ जाता है। ऐसा करने से हमारे परिवारों की बदनामी तो होगी ही, तुम्हारे पिता मेरे परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना, जब नीलू मायके आई तो राज को पुरानी बातें याद आने लगीं कि किस तरह

दिखाया तो नीलू सहम गई। नीलू बोली, सोच लो राज, आया समय एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। हिम्मत और कोशिश करने से हमारी समस्या का हल हो सकता है। मगर राज को अकरम का डर था, वो जल्लाद से कम नहीं था। राज अपने माँ बाप और बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का मन बना लिया। उस दिन के बाद से वो नीलू से नहीं मिला। मगर नीलू को दिल से भुलाना इतना आसान कहाँ था। अकरम ने हफ्ते भर में ही नीलू की शादी कर उसे ससुराल भेज दिया। आज जब राज को पता चला कि नीलू अपने मायके आई है, उसका दिल मिलने को मचल उठा। मिलने की चाहत लिए राज धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ नीलू के घर पहुंच गया। घर का मेन गेट अंदर से बंद था। उसने नीलू के घर का गेट खटखटाया तो वो खुल गया। सामने उसकी प्यारी नीलू ही खड़ी थी, शायद नहाकर निकली थी। पानी के मोती उसके काले लंबे बालों से गिर रहे थे। अरे राज, कैसे हो? अंदर आओ ना। राज को देखते ही नीलू खुशी से चहक उठी। अपनी क्या हालत बना ली है तुमने? अपने आप को संभालो राज। नीलू, जो मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, उनका यही अंजाम होता है। लेकिन तुम मेरी हालत पर मत जाओ, अपनी सुनाओ, राज ने कांपती आवाज में पूछा। नीलू को लगा कि हालात से घबरा कर राज उससे दूर तो हो गया, मगर अपनी महबूबा को भूल नहीं पाया। मैं खुश हूं या नहीं, इसका कोई मायने नहीं है। जब तुमने ही अपनी हालत से घबराकर मेरा कहा मानने से इनकार कर दिया, तो मुझे हालात से समझौता करना ही था। मगर आज तुम्हारी ये हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अधूरी मोहब्बत की आग में पूरी तरह झुलस रहे हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कहते हुए नीलू ने राज के दोनों हाथ थाम लिए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना नीलू और राज एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नीलू के पिता अकरम काफी दबंग स्वभाव के थे और उन दोनों की दोस्ती के बारे में पता लगने पर उन्होंने राज के परिवार को धमकाया और नीलू की जबरदस्ती जल्दी से शादी कर दी। शादी के बाद नीलू मायके आई थी, राज उससे मिलने गया। राज की हालत देखकर नीलू का मन दुखी हो गया। वो समझ गई कि वो नीलू के साथ रहने की हिम्मत तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बिना जी भी नहीं पा रहा था। अब आगे, नीलू, मैं जो देखना और महसूस करना चाहता था वो सब देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरी कुर्बानी कामयाब हो गई है। मैं जिंदगी भर तुम्हारी यादों को अपने दिल में सहेज कर रखूंगा। तुम खुशहाल रहोगी तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, राज ने कहा। नहीं राज, तुम मुझे कभी अपने से अलग मत समझना। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, जहां चाहे ले चलो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी। कहते हुए नीलू ने राज के हाथ कस कर पकड़ लिए। नहीं नीलू, मेरी वजह से कोई तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाए ये मैं कभी सह नहीं पाऊंगा, राज ने कहा। नीलू बोली, अब पता नहीं दोबारा कब आ सकूंगी। थोड़ी देर अंदर आओ, अपने मन की बात मैं तुम्हारे सामने रखना चाहती हूं। इतना कहकर नीलू ने राज का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाना चाहा। नहीं नीलू, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर राज उल्टे कदमों से गेट से बाहर आ गया। नीलू राज को रोकना तो चाहती थी, मगर उसे रोक नहीं सकी।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: तेरा नाम लूं तो सुकून आ जाता है, जैसे भीड़ में कोई अपना मिल जाता है। सोचूं जब भी तेरे साथ की बातें, दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। तू साथ हो तो मुश्किल भी आसान लगे, तेरे बिना हर खुशी भी सुनसान लगे। ये दिल सिर्फ तुझसे जुड़ना चाहता है, बाकी दुनिया तो सब मेहमान लगे।
3: तेरी यादों का मौसम दिल पे छाया है, हर ख्वाब में बस तेरा ही साया है। कोई पूछे प्यार क्या होता है मुझसे, मैं कहूँ जो तूने मुझ में जगाया है। न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे। बात ना हो तो दिल नहीं लगता जरा, तू सामने हो तो वक्त रुक जाता है, और दूर हो तो हर पल लगे जैसे सजा।
2: जी हाँ दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत में आज हम लेकर के आए हैं वैलेंटाइन स्पेशल, यानी प्यार के नगमों को एक साथ लेकर के। आपकी आज ये गुमसुम एंड आपकी आज ये ख्वाहिश। तो आज जो सफर शुरू करने जा रही हैं, उसमें कई मुसीबतें, जी हाँ, इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्यार एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी कड़ी है, जिसमें मुसीबतें ना हो तो प्यार को पाना आसान कहाँ लगता है। सबसे पहले हम उस सिंगर की बात करेंगे जो कि अपने आप में एक कहते हैं ना कि पूर्ण विराम हम नहीं कह सकते हैं, पूर्ण है। क्यों आरजे गुमसुम?
3: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, वो जो अपने में पूरी है, वो जिनकी आवाज जो भी सुनता है वो उनकी आवाज का मुरीद हो जाता है,
2: और आवाज के मुरीद होने के साथ साथ में उनके व्यक्तित्व, उनके चलन, उनकी बोली, उनका व्यवहार, शायद ये प्यार में कम नहीं होता है, ये प्यार को और पूर्ण बनाता है। बहुत सारे नगमों के साथ में जब उन्होंने गीतों को सुना, गाया और उनको जिया, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्यार की बेमिसाल मूरत हमारी लता जी। उनके नगमों में से एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ।
3: इकरार से याद आया, बहुत ही बेहतरीन गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ। कहते हैं ना कि प्यार तो यूं ही हो जाता है, लेकिन जब इकरार करना होता है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है। हम सोचते हैं ना, अच्छा चलो कह देते हैं, फिर रुक जाते हैं। सामने वाले को बुरा लग गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, फिर रुक जाते हैं। लेकिन ये ऐसा एहसास है कि कहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता।
2: तो भाई ये तो मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अगर हमने कुछ मुंह में खाया हुआ है तो ना निगला जाए ना उगला जाए, कुछ ऐसा ही हो गया। पर मैं बताऊं कि वैलेंटाइन वीक जो ऐसा होता है जिसमें प्यार का इजहार करने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तो आइए इस प्यार के इजहार को हम करते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: अगले सिंगर जिनकी आवाज में जादू तो था ही, शायद हम उनको ये भी कह सकते हैं कि उनकी आवाज इतनी वर्सटाइल थी कि हर कोई आवाज पहचान जाता था और हर एक हीरो की आवाज में फिट होने वाले हमारे मोहम्मद रफी जी। दिलीप कुमार का दर्द हो या फिर शम्मी कपूर की मस्ती, देवानंद का रोमांस हो, सब पर उनकी आवाज फिट हो जाती थी। लेकिन कहा जाता है मोहम्मद रफी की आवाज नगमे और उनके गीतों की जो एक प्यारी सी एक मिसाल हुआ करती थी, वो लव सॉन्ग्स पर ज्यादा फिट हुआ करती थी।
1: बिल्कुल, मोहम्मद रफी जिनकी आवाज को कहा ही जाता है कि उनकी आवाज में एक रूहानियत थी। रूहानियत ऐसी कि जो भी उनके नगमे सुनता था वो खो जाया करता था। कोई भी गाना हो, कोई भी शैली हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दर्द हो, खुशी हो या फिर बहारों की खुशबू, हर किसी को, हर किसी एहसास को अपनी आवाज में बहुत ही बेहतरी से कैसे निखारा जाता है, ये मोहम्मद रफी जी बहुत ही अच्छे से जानते थे।
0: बिल्कुल, और मोहम्मद रफी जी ने तो बहुत सारे ऐसे गानों को अपनी एक मिसाल दे दी, जैसे रोमांटिक हो, फिर दर्द भरे हो, कव्वाली हो, भजन हो, देशभक्ति, कॉमेडी सॉन्ग्स, ऐसा कोई भी अंदाज हो, जिन्होंने इन सारे सॉन्ग्स को छोड़ा ही नहीं था। बेहद विनम्र इंसान, उनकी शोहरत के बावजूद बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इंडस्ट्री में जो लोग उन्हें सबसे अच्छे और प्यारे व्यवहार के लिए जानते थे, इंडस्ट्री में लोग उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए भी याद करते थे और वो जाने जाते थे। दिल ढल गया ये दुनिया ये महफिल, तूने ये क्या कर दिया, सीधे दिल पर उतर जाने वाले सॉन्ग्स थे। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी आरजे गुमसुम से कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत, क्या आपने ये गाना सुना है?
1: जी आरजे ख्वाहिश, बिल्कुल सुना है। और इतना प्यारा गाना, इतना प्यारा गीत, जिसकी कहे है ना कि कोई सार ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं।
0: ओके, तो चलिए अब हम लिसनर्स को सुना देते हैं इस प्यारे से नगमे को, जो कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की

0: अगले जिस सिंगर की हम बात करने वाले हैं, उनकी आवाज में मस्ती है, कुछ नयापन है, पर इस नएपन के साथ साथ अपनी आवाज में सभी गीतों को बड़ी ही खूबसूरती से संवारते हैं वो। और उनका गाना आते जाते खूबसूरत, इन आवारा सड़कों पर, और ऐसे ही बहुत सारे गीत जो कि आपको याद दिलाते हैं मस्ती, याद दिलाते हैं खुशी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी। अपनी गानों के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, पर साथ ही साथ में जाने जाते हैं अपने व्यक्तित्व के लिए। उनका व्यक्तित्व जो बहुत ही सादा और सौम्य है। कहते हैं कि हम जितने बड़े पद पर होते हैं उतना ही हमारा व्यक्तित्व सौम्य होता है। इसकी बहुत ही बेहतरीन मिसाल है किशोर कुमार जी।
1: मल्टी टैलेंटेड जीनियस, ये भी नाम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मिला। किशोर कुमार गायक ही नहीं बल्कि एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। इतनी सारी प्रतिभाएं एक ही इंसान में कब मिलती हैं, जब उनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा होता है। दूसरों के प्रति सम्मान, एक प्यार भरा होने के कारण ये सारी खूबियां होती हैं। आवाज जो दिल से निकली थी, उनकी आवाज में एक नेचुरल खुशी और शरारत हुआ करती थी। रोमांटिक गाने हो या फिर मस्ती भरे, वो उन गानों को गाते नहीं थे, वो उन गानों को जीते थे। मस्ती के बादशाह, एक चतुर नार, पान खाए सैया हमार जैसे ये मस्ती वाले गाने जब उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, जब उन्होंने गाए थे, तो सारे लोगों ने उनके लिए बस एक ही कहा था, अरे वाह, अब तो बात किशोर कुमार की है। तो आइए उनकी ही आवाज में एक प्यार भरे नगमों के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, जो कि है हमें तुमसे प्यार।

0: अरे ये कौन सा गीत है और किसके लिए गाया जा रहा है?
1: मैं गा तो नहीं रही थी, मैं गुनगुना रही थी और सिर्फ मैं सोच रही थी आंखें बंद करके कि काश ये गाना भी मैं किसी के लिए गाऊं। और इतना प्यारा गीत है ना, जो कि उनकी आवाज, और आप सभी को पता है कि जिसने इस गीत को गाया है वो हम सबकी प्यारी आशा भोसले जी। बिल्कुल, आशा भोसले के जो गीत होते हैं वो हमेशा से एक ना रोमांटिक सॉन्ग्स को लेकर के क्लासिकल, पॉप, गजल, और वो हर तरह के गानों को जीती हैं, हर गानों को गाती हैं। उनकी आवाज में वो हर मूड भी ढलसा जाता है, चाहे वो ओपी नैयर साहब जी हो, चाहे आजी बर्मन साहब जी के साथ हो। वो हर एक जादू को अपने साथ में इस तरीके से पिरो लेती हैं कि हर युग में उनके गानों को एक यादगार के रूप में ले ही लिया जाता है। मस्ती और अदा की पहचान, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी कहने जा रही हूँ, पिया अब तो तू आजा। इतने बेहतरीन सारे सॉन्ग और जो कि रोमांटिक सॉन्ग्स को दिया है वो ही हमारी आशा भोसले जी हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने गीत सुना दीवाना हुआ बादल, तो देखा प्यार में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कल्पना देखिए प्यार के लिए कि बादल भी दीवाना हो सकता है, यानी वो भी दीवानगी कर सकता है, प्यार में पड़ सकता है। और दूसरा बहुत ही बेहतरीन गाना जो कि है पिया तू अब तो आजा, तो बिल्कुल इन दोनों ही गीतों में प्यार है बेशुमार। तो आज जैसा कि हम प्यार को ही बता रहे हैं, उसी को आपके सामने रख रहे हैं, तो आइए सुनते हैं प्यार भरे ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

जिनकी आवाज में एक सच्चाई और टूटन थी। अब आप सोचेंगे टूटन का क्या मतलब होता है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जब दिल टूटते हैं तो उस टूटन की कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन प्यार भरों को जोड़ना, प्यार भरे दिल को जोड़ना जो सीधे दिल तक पहुंचती थी, उनके गाने सुनकर लगता है जैसे कोई अपना पुराना दर्द सुना रहा हो। उन्हें अक्सर राज कपूर की आवाज कहा जाता था, आवारा हूं और मेरा जूता है जापानी, जीना यहां मरना हुआ। ऐसे गानों की कई जोड़ियों को अपनी आवाज दिया और उन गानों को अमर बना दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जिनकी आवाज के लिए हम बात कर रहे हैं वो है हमारे मुकेश दाजी, जिनकी आवाज में दर्द तो था ही, इसी के कारण उन्हें आवाज के बेताज बादशाह भी कहा जाता है और उनके गाने आज भी हम सभी बड़े ही शौक से और बड़े ही दिल से सुनते हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उनकी ही प्यार भरे गीतों को हम कैसे भुला सकते हैं? चाहे वो आज के जुगल जोड़ी क्यों न हो, चाहे वो पुरानी ही जोड़ी क्यों न हो, सभी के दिलों में आज के ये जो गीत हैं, ये पुराने मिक्स करके भी आज हम सभी लोगों को सुनने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं।

0: युगल जोड़ी।
1: महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग जो कि मुकेश जी की आवाज में गाया गया। आप देखिए इस गीत में कि कितनी बेहतरी से बताया है कि महबूब मेरे, यानी ये गीत ये बताता है कि तुम हो तो पूरी दुनिया है, सब कुछ है, और तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। प्यार कुछ ऐसा ही होता है, अगर आपके पास आपका हमदर्द, कोई आपका हमराज है तो दुनिया बेहद खूबसूरत लगती है, और वो नहीं है तो मन करता है कि कुछ भी नहीं। ऐसा ही होता है प्यार, फिर चाहे वो आप उसे किसी भी रिश्ते में ले लीजिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपका माता पिता से आपका रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, जब कोई हमारे दिल के बहुत करीब होता है तो हमें यही लगता है कि तुम हमेशा हमारे पास रहो, बस कहीं दूर मत जाओ। इसी एहसास को, इन्हीं बातों को, इन्हीं भावनाओं को बहुत बेहतरी से अपनी आवाज के साथ उन्होंने निखारा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में उन्हीं का ये बेहतरीन गीत, महबूब मेरे तू है तो।

0: ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत की थी तो उनके गानों की सुरों की गहराई में परफेक्शन साफ झलकती थी। बिल्कुल, जिनकी ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत में की गई है तो उनकी नींव भी उतनी ही मजबूत होती है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। जो कि हमारे अगले सिंगर हैं मन्ना डे, जिनकी आवाज को आज भी हम बड़े ही अच्छे वाले मूड में सुनते हैं। मुश्किल धुनों के बादशाह, ऐसे गाने जो दूसरे गायक मुश्किल समझते थे, वो मन्ना डे साहब ने बड़ी ही आसानी से गा लेते थे। जैसे लागा चुनरी में दाग, पूछो न कैसे मैंने, हर मूड में फिट और हर अदा में फिट, उनकी आवाज को बड़े ही शौक से और बड़े ही चाह से हम सुनते हैं। क्लासिकल ही नहीं, उन्होंने मस्ती भरे रोमांटिक और दार्शनिक गाने भी गाए। तो क्या आरजे गुमसुम, आप उनके गानों के बारे में कुछ जानती हैं?
1: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, तो चलिए बताते हैं आपको उनके बहुत ही बेहतरीन गाने, जो कि है मस्ती भरा है समा। जब आप थोड़े दुखी हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया हो और मन हो कि थोड़ा मस्ती करनी है, तो सुनिए मन्ना डे का ये गाना। क्योंकि मस्ती भरा है समा जब आप सुनेंगे ना, तो आपका मूड यूं बदल जाएगा। और साथ ही साथ इनका दूसरा गीत है तू प्यार का सागर है। बिल्कुल, तू प्यार का सागर है ये गीत आप जानते हैं कि मन्ना डे ने किसे संबोधित किया है? उनका कहना है कि तू प्यार का सागर है ये उन्होंने डेडिकेट किया है अपनी माँ, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके लिए उनकी माँ ही प्यार का सागर है।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं